0: गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण ना जाय, धोती टिका दे जब माली धान मले खाई, अंतर पूजा पड़े करते बा संजम तुरका पाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला।
1: मांस खाने करे निवार छुरी बगायन तिन गलताग, तेन कर ब्राह्मण पूरे ना दियो ना पे आवे ओ साध, कुड़ी रास कुड़ा वापार कूड़ बोन करे आहार,
2: शर्म तर्म का डेरा।

झूठे झूठे मुख से नित नित हुए कुआर सोचे ना आखिए बहन जी पिंड तो ए सोचे से नानक जिन मन वस्या सोए पड़।

हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे। 9870 किलो हर्ट्स। तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते बि ॿुधी सघंदा आहियो। असांजो प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीति आहिनि। सभ खां अवल तव्हां भगत कंवरराम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा। तंहिं खां पोइ तबसिरो पेश कयो वेंदो। 6:40 ते भजन ॿुधंदा। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। अचो त हींअर भगत कंवरराम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

तवां भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज में कलाम बुधी रहा हुआ। तवां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधी रहा आयो। हियर पेश आहे तबसिरो। भारत खे दुनिया जी फार्मेसी तौर सुन्यातो वन्ये थो। कोविड 19 जे वबा जे जवाब में भारत जो किरदार ए दवा तशखीस ए वैक्सीन जी आलमी घुर्ज के पूरो करण में भारत जे हिस्से के सुठी तरह जानायो वन्ये थो। इहो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जे परबवसियतर नजरिए आत्मनिर्भर भारत जो शानदार मुजाहिरो हो। एक खुद मुख्तियार भारत जेको आलमी फराहमी में हिस्सो दिए थो, खास करे जरूरी सामान में एक अहड़ो ठाहींदड़ जैते दुनिया भरोसो करे सके थी। वबा जे जवाब में घरेलू सतह ते भारत वायरस जे पखड़जण जे शुरुआती मरहलन खां सरगम रहयो। भारत वबा जे 55 ॾींहं ते जड़े तस्दीक थियल केस तकरीबन 600 हुआ, मुकम्मिल लॉकडाउन ॾांहुं वधियो। ॿिया मुल्क मुकम्मिल लॉकडाउन सिर्फ़ तॾहिं शुरू कया जॾहिं केसनि जी तइदाद घणनि हज़ारनि खां वधी हुई। मुल्क में लॉकडाउन जे बावजूद ज़रूरी ख़िदमतुनि जे मुसलसल बरक़रार रखियो वियो ऐं उन मुदे दौरान भारत जे रिमोट इलाइक़नि में बि ज़रूरी सामान पहुचायो वियो। लॉकडाउन ऐं डेटा जे वजह मशाहिदे हिंदुस्तान के कोविड लाइ वक्फ थियल अस्पतालुन अलग ए आईसीयू बेस्ड जे आईसीयू बेड्स जे लिहाज सां पंहिंजे सलाहियत वधाइण में मदद कई। ॿियनि मुल्कनि सां दवाऊं शेयर कंदे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नोट कयो त हिंदुस्तान दुनिया खे हिक खानदान जे तौर ते ॾिसण जी पंहिंजी तइलीम ते अमल करण जी कोशिश कई आहे। पंहिंजे वेझे पाड़ेसरी में गडियल जवाब जी हिकमत अमली ठाही ए ज़रूरतमंद मुल्कनि में खास मदद फराहम कई। गडोगड हिंदुस्तान जी पंहिंजी वॾी आबादी बि पिण हिफ़ाज़त कई। हिंदुस्तान वबा जे इन अहम मरहले दौरान ज़रूरी दवाउनि जी फराहमी खे यकीनी बणायो। परडे॒ही सेक्रेटरी चयो त उन्हनि दवाउनि जी फराहमी असांजे साख खे दुनिया जे दवाखाना ए आलमी सिहत जे सप्लाई चेन्स में हिक ज़िमेवार स्टेक होल्डर तौर मज़बूत कयो। भारत जे दवाउनि जी सनअत, जंहिंखे अक्सर दुनिया जी फार्मेसी चयो वेंदो आहे, वॉल्यूम जे लिहाज़ खां आलमी सतह ते टी वॾी ऐं क़ीमत जे लिहाज़ खां 14 नंबर ते आहे ऐं माली साल 2025 में उन जी क़ीमत तक़रीबन अमरीकी 55 अरब डॉलर आहे।

भारत आलमी जेनरिक दवाओं जी वॉल्यूम जो 20% फराहम करे थो। अमेरिका खा बाहर एफडीए मुताबिक सब का वधिक प्लांट्स रखंदो आहे। ए वैक्सीन्स जेनरिक ए वधंदड़ तौर ते बायोलॉजिक्स जरिए वाद के हथी डे थो। भारत आलमी सतह ते जेनरिक दवाओं जो सब खा वडो फराहम कंदड़ आहे। भारत जो फार्मा सनत एक वडो आलमी प्लेयर आहे। आला मयार सस्ती दवाओं मुहैया कंदे भारत जी जीडीपी में तकरीबन 1.5-7% जो हिस्सो विझे थी। भारत 200 खां वधीक मुल्क ना दवाओं बरामद करे थो। जिन जे बरामदात जी कीमत माली साल 2025-26 में अमरीकी 31.5-11 अरब डॉलर आहे। भारत जो आलमी बाजार उम्मीद आहे त अहम वाद जोगी हुंदो। ईंदड़ डहाके में इहो शायद अमरीकी 120-130 अरब डॉलर ताईं पहुची सघे थो। भारत वटि हिकु तमाम मज़बूत बरामद मार्केट आहे। भारत दवाऊं 200 खां वधीक मुल्कनि ॾांहुं बरामद कयूं। बिशमोल अमरीका यूरोप जापान ऐं ऑस्ट्रेलिया जी सख़्त जाप्ते वारनि मार्केटनि वॾियूं भारतीय फार्मा कंपनियूं उत्तरी अमरीका में तरक़ी पज़ीर जनरल स्पेस में सभ खां मुक़ाबले वारनि मां हिकु तौरु उभरी आयूं आहिनि ऐं उन्हीअ मैदान में हिकु बेमिसाल प्लेटफॉर्म ठाहे छॾियो आहे। भारतीय कंपनियूं दुनिया जे उभरंदड़ मार्केटनि में पिण पंहिंजो वजूद महसूस कराए रहियूं आहिनि। खास तौर ते एंटी इन्फेक्टो एंड एंटी वायरल में मजबूत पोर्टफोलियो सां वॾियूं घरू फार्मा कंपनियूं मुसलसल वधियूं आहिनि। भारतीय मार्केटनि में केतिरनि इलाज ऐं शाबी में अॻुवाणी जा मुक़ाम इख़्तियार कंदे ऐं मज़बूत बिन अल अक़वामी बरामद रीढ़ पिण ठाहे रहियूं आहिनि। 500 खां वधीक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडियंट्स API पैदा कंदड़ ऐं मज़बूत ठाहींदड़ हुब ख़ासि तौर ते हिमाचल प्रदेश ऐं उत्तराखंड में हुन सेक्टर खे सपोर्ट कनि था। भारत दुनिया जो मेडिकल हब तौर ज़ाहिर थियो आहे। जदीद टेक्नोलॉजी सां घट क़ीमत वारो इलाज फराहम कंदे जेका सिहत जे सेक्टर में केतिरनि ई इनकलाबी इस्लाहात ऐं इख़्तियारात जी मदद सां मुमकिन थी आहे। भारत में सस्ती HIV इलाज ताईं रसाई दवाउनि जी दुनिया में सभ खां वॾी कामयाबी जी कहाणियुनि मां हिकु आहे। भारत घटि क़ीमत वारो HIV दवाउनि जी सभ खां वॾो फराहम कंदड़ देश आहे। भारत सभिनि खां वॾी कामयाबी आहे। घटि क़ीमत वारनि दवाउनि जी सभ खां वॾनि फराहम कंदड़ देशनि मां हिकु थी हिन पंहिंजो नालो कमायो आहे। अहिड़ी तरह भारतीय फार्मा कंपनियुनि खे आलमी मयार मुताबिक़ ठहियल दवाऊं ऐं ठाहिण में वॾी क़िस्म जो तजुर्बो आहे। भारतीय मार्केट में सख़्त मुक़ाबिलो भारतीय कंपनियुनि खे मुख़्तलिफ़ तरतीबनि वारी दवाऊं ठाहिण में तजुर्बेकार बणाए थो, जेको उन्हनि जे ऑपरेशन में उन्हनि खे काराइतो ऐं मुक़ाबले ताक़तवर बणाए थो। भारत जी दवा साज़ी जो मार्केट मेच्योर आहे। जेनरिक दवाउनि जी तयारी में ॾहाकनि जो तजुर्बो रखंदे जेका आम आबादी जे ज़रूरतनि खे पूरो करे थी, उन्हनि कंपनियुनि वटि तजुर्बे ऐं ॼाण आहे त इहे आला मयार जूं दवाऊं नतीजाइती आला मयार ऐं क़ीमती लिहाज़ खां मौसर तरीक़े सां तयार कनि। बग़ैर कंहिं पहलू ते समझौतो करण जूं केतिरियूं कंपनियूं आहिनि जेके ऑनकोलॉजी एड्स ऐं ॿियनि पेचीदे इलाज लाइ दवाऊं ठाहीन थियूं। हुकूमत केतिरी पॉलिसी इनिशिएटिव खयां आहिनि ऐं दवा साज़ी वारे सेक्टर में तहक़ीक़ ऐं तरक़ी खे मज़बूत कयो वञे थो। जहिड़ोक सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिटनि लाइ माली मुराद में नई दवा मॉलिक्यूल्स जी तरक़ी क्लिनिकल तहक़ीक़ ऐं नई दवा जी फराहमी निज़ाम जे हवाले सां तरीक़नि खे हमवार करणु, जंहिं करे असुल दरियाफ़्त जे सेक्टर मां नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीटअप क़ाइम थिया। तव्हां तबसिरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: तंहिं खां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: हींअर अचो ॿुधूं मीरा देवीअ जो भॼनु।

तवा टेऊंराम साहब जो भजन मीरा देवी जी आवाज में बुधी रहा हुआ। हाणे अचो बुधू था गुलाब साधवानी जन के।

तवां कमला झंगियानी जी के बुधी रहा हुआ हाणे बुधू था तवां हाणे बुधू था कमला झंगियानी जी के तवां गुलाब साधवानी जन के बुधी रहा हुआ।

हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। ईरान जे ड्रोन हमले खां पोइ यूएई जे फ्यूज़राजी ऑयल फैसिलिटी में वॾी बाहि लॻी वई। यूएई अहिड़ी तरह जे ख़तरनाक छिकताण ऐं आलमी कानून जी भनेकिरीअ जी सख़्त निंदा कई आहे। इंडोनेशिया ऐं जापान बचाव हुनर, ह्यूमन डेवलपमेंट ऐं कुदरती आपदाउनि जे मुक़ाबले लाइ रिश्तनि खे मज़बूत बणाइण लाइ बचाव सहकार इक़रारनामो सही कयो आहे। यूक्रेन में खैरकिप इलाइक़े में रशियन मिसाइल हमले खां पोइ 5 माण्हू मारिजी विया ऐं 18 ज़ख़्मी थी विया। एशिया पैसिफिक मुल्कनि में क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन तयार करण लाइ एशियन डेवलपमेंट बैंक माली सहूलियत शुरू कई आहे। आईपीएल क्रिकेट मैच में मुंबई में मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स खे 6 विकेटनि सां मात ॾिनी। अॼु दिल्ली कैपिटल्स जो मुक़ाबलो मेज़बान चेन्नई सुपर किंग्स सां थींदो।

तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 बजे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाई गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जालूकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिल त्रगावेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम ने 47 सीटें जीती। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथुत सीट से हार गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन तिरुपुर जिले के अविनाशी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में टीवीके की कमाली एस से हार गए। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें अपने नाम की हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुद्दुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। एन रंगास्वामी की पार्टी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुद्दुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया

संगीतिका के अंतर्गत जसलीन कौर द्वारा गाए शब्द। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 7:29:10 हो चुके हैं। आइए हम आपको अब आगे की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी से अवगत करा दें। अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, जिसमें आप सुनेंगे खूबसूरत फिल्मी गीत। 8:45 का वक्त रहेगा स्वर गंगा का, जिसमें आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। 9:15 पर आप सुनेंगे विज्ञान पत्रिका और 9:30 का वक्त रहेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 7:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उठ जाइए, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि एक और खूबसूरत दिन आपका इंतजार कर रहा है। और कहते हैं ना, उस खूबसूरत दिन को लेकर हम आ गए हैं आपके साथ। और अगर आपकी नींद अभी भी नहीं उठी है, नहीं खुली है, तो कोई बात नहीं, फोन उठाइए, हमारा शो सुनिए, नींद खुद भाग जाएगी। कैसे हैं आप सब? किसी का अलार्म आज भी धोखा दे गया क्या? या फिर वो क्लासिक डायलॉग कि बस पांच मिनट और ना जाने वो 5 मिनट जो है वो 50 मिनट में कब बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। खैर कोई बात नहीं, हर सुबह एक नई शुरुआत है और आज की सुबह तो खास है क्योंकि आप आज हमारे साथ हैं।

जी हाँ, कोई तुमसा नहीं, आप जैसा भी कोई नहीं है और हमारे शो जैसा भी कोई नहीं है, क्योंकि हम लेकर आते हैं खूबसूरत गीत आप सभी श्रोताओं के लिए और खूबसूरत सी बातें। तो चलिए, आज का एक मोटिवेशनल जो थॉट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ परफेक्ट जरूर होता है। तो आज उस छोटी सी खुशी को ढूंढिए, चाहे वो एक कप गर्म चाय हो या फिर मम्मी की डांट में छुपा हुआ प्यार, या फिर दोस्तों की बेकार सी बातें जो दिल को खुश कर देती है। और हाँ, आज आपका मूड अगर थोड़ा ऑफ है तो आईने में खुद को देखिए और बोलिए, भाई तू बहुत शानदार है यार, मूड को ऑफ ना कर। देखना मूड खुद ब खुद कैसे सेट हो जाता है।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आज इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:42 और पूरे 50 सेकेंड्स।

जी हाँ दोस्तों, हवा के झोंकों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश नोटबुक जैसा होता है, जिसमें हम जो चाहे लिख सकते हैं, खुशियां, अपने गोल्स, या फिर आज से पढ़ाई शुरू करनी है वाली कहानी, या फिर कोई बुरी आदत छोड़नी है वाली कहानी। लेकिन सच में हर सुबह हमें एक नया मौका देती है कल की टेंशन को बाय बोलने का और आज को हेलो कहने का। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं आप, ये सोचकर अपने दिन की शुरुआत करें।

जी हाँ, आप सभी के घर से निकलने का भी वक्त हो चुका होगा। जितना आप सोचते हैं ना दोस्तों, उससे कहीं ज्यादा जो है ना वो दिन की शुरुआत आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आप खुद पे विश्वास रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं। कभी कभी लगता है सब कुछ मुश्किल है, पढ़ाई, काम, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ, पर यकीन मानिए आप हर सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हैं। और हाँ, अगर आपका मूड आज थोड़ा सा लो है तो खुद पर ज्यादा सख्त मत बनिएगा, थोड़ा खुद को समझिए, क्योंकि दोस्त हम मशीन नहीं है, हम इंसान है। चलिए अब अपने मूड को थोड़ा सा और हल्का करते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

जी हाँ, हमारे जो जिया का दाव है वो भी आप सबका हो गया है, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है और हमारा यहाँ से जाने के लिए इशारा कर रहा है कि आप अब यहाँ से फौरन रुखसत लीजिए और इस कार्यक्रम को अलविदा कीजिए। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन को खूब खूब खूब अमेजिंग बनाते रहिए, और इस वादे के साथ और इस आशा के साथ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और इस वादे के साथ कि अब से दोबारा आपसे जब भी मुलाकात होगी जल्द ही होगी, और ऐसे ही खूबसूरत गीत और ऐसी ही खूबसूरत बातों के साथ जल्द हाजिर होंगी मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, इस क्योंकि यहां से प्रसारित होते हैं बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं के लिए। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में टीवीके 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपर हिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्यभर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता

0: स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआई एम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहां आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

0: आया है। एक रिपोर्ट।
1: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की ये खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, यह आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो ऐसा यार की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI। मौसम के मिजाज पर ये है नवभारत टाइम्स के शब्द।
0: धन्यवाद मुनीष। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इकतदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस के जेर कयादत यूडीएफ फिर से इकतदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाजे अक्सरियत नहीं मिली है। टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में 2 महाजों पर तारीख रकम हुई है। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ने वाली तमिलगा वेतरी कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इधर दीगर असेंबली इंतखाबात में आसाम और पुदुचेरी में अवाम ने फिर से हुक्मरान पार्टियों में एतमाद का इजहार किया है, जबकि केरलम में लोगों ने तब्दीली के हक में राय जाहिर की है। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर असेंबली में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की है। इस तरह तृणमूल कांग्रेस का 15 साल से जारी दौरे हुकूमत खत्म हो गया है। तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली हैं, जबकि 1 सीट पर उसे सबकत हासिल है। 293 असेंबली सीटों में से 292 हलकों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआईएम 1 सीट पर कामयाब हुई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मगरबी बंगाल में बीजेपी ने तकरीबन 45.84% वोटों के साथ 206 सीटें जीती हैं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस का वोट तकरीबन 8% कम होकर 40.8% रह गया, जबकि उसने 2021 के इंतखाबात में 48.5% वोट हासिल किए थे। तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े रहनुमाओं को हार का सामना करना पड़ा है। इस इलेक्शन में बीजेपी ने न सिर्फ शिमाली बंगाल में बड़ी कामयाबी हासिल की, बल्कि तकरीबन पूरे जनूबी बंगाल में भी अपनी मजबूत गिरफ्त बना ली। ममता बनर्जी को अपने भवानीपुर हलके में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अधिकारी ने नंदीग्राम सीट भी जीती है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी तमिलगा वेतरी कड़गम टीवीके ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। पार्टी की तश्कील के बाद पहले चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और वो वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के सरबराह जोसफ विजय पिरम्बूर और तिरुची ईस्ट दोनों हलकों से चुनाव जीत गए हैं। 234 रुकनी असेंबली में हुक्मरान डीएमके पार्टी को 59 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी हरीफ पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 47 सीटों पर कामयाब हुई है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि टीवी के पार्टी के सरबराह जोसफ विजय जल्द ही तमिलनाडु के नए वजीर आला की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, जो सरकार बनाने की खातिर अक्सरियत के लिए दरकार 10 सीटें कम हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय का सुपरहिट आगाज हुआ है और उनकी पार्टी रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। थलाइवा, जननायकन, मरसल और सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हीरो रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में वजीर आला का रोल निभाने जा रहे हैं और उनके सामने वोटरों के ख्वाब पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। 51 साल के विजय को आज उनकी पार्टी के एमएलए अपना रहनुमा चुन सकते हैं। पार्टी मखलूत इत्तेहाद की सरकार बनाने को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है और विजय के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज सरकार बनाने और उसे बेहतर तरीके से चलाने

0: का होगा क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। खबरनामे के लिए चेन्नई से सुशील चंद्र तिवारी।
1: आसाम में हुक्मरा बीजेपी के जेर कयादत एनडीए ने 126 रुकनी असेंबली में 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी मुद्दत के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की है। पार्टी की इत्तेहादी आसाम गण परिषद को 9 सीटें मिली हैं, जबकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, जबकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और राइजोर दल ने 2-2 सीटें जीती हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिली है। केरलम में कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ ने फैसलाकुन कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी आईयूएमएल को 22 सीटें मिली हैं। इस तरह इस इत्तेहाद को रियासत में बालादस्ती हासिल हो गई है। यूडीएफ के करीब करीब सभी सरकर्दा रहनुमा वाज़े अक्सरियत से मुंतखब हो गए हैं। इधर हुक्मरा एलडीएफ की तरफ से सीपीआईएम को 26, सीपीआई को 8 और आरजेडी को 1 सीट मिली है। बीजेपी को इस मरतबा 3 सीटें मिली हैं, जबकि अभी तक असेंबली में पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। पार्टी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में नेमम हल्के से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। पुदुचेरी में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने 30 रुकनी ऐवान में 18 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है और इख्तदार बरकरार रखा है। इत्तेहादी पार्टियों में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है, जबकि 3 सीटें आजाद उम्मीदवारों के हक में गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को तारीखी और बेमिसाल करार दिया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के अवाम और पार्टी कारकुनों के तहत तशक्कुर का इजहार किया है। चुनाव नतीजों के बाद कल शाम दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकारें 20 से ज्यादा रियासतों में इकतदार में हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी का मंत्र है अवाम भगवान है और पार्टी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि इसीलिए लोग पार्टी में और ज्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं।
2: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के लिए एक नई सुबह का आगाज हुआ है और अवाम ने मुल्क की अजीम जमहूरियत और कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है।
2: ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: इधर बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने भी बीजेपी और एनडीए में फिर से अपने एतमाद का इजहार करने पर चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के अवाम के तहत तशक्कुर का इजहार किया। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में पार्टी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। जनाब अमित शाह ने मगरबी बंगाल में पार्टी की जीत को डर, खौफ, खुशनूदी और दरअंदाजों को पनाह देने वालों के खिलाफ अवाम के जवाब से ताबीर किया। उन्होंने लगातार तीसरी बार पार्टी में एतमाद का इजहार करने पर आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल के सनअती इदारों और तिजारती अंजुमनों ने बीजेपी की शानदार कामयाबी का खैर मकदम किया है। कारोबारी रहनुमाओं ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार रियासत की मईशत में नई जान डालने के लिए सनअतकारी बुनियादी ढांचे के फरोग और सरमायाकारों के लिए साजगार पॉलिसियों के एक नए दौर का आगाज करेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरान से किए गए एक ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई। पिछले महीने नाफिज की गई जंगबंदी के बाद से मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके में यह इस तरह का पहला हमला है जिससे काफी नुकसान हुआ। वहां के हुकाम ने यह जानकारी दी है। मालूम हुआ है कि इस वाकये में 3 भारतीय शहरियों को कुछ जख्म आए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अबूजबी में भारतीय सिफारतखाने ने बताया है कि वो मुतासिर अफराद की खैर आफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी हुकाम के साथ राब्ता कायम किए हुए है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की है कि कल वहां आने वाले 4 ड्रोन और 3 क्रूज मिजाइलों का पता लगाया गया और उन्हें बीच में ही मार गिराया गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: कल के हमलों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद से कायम निस्बतन पुरसकून माहौल का सिलसिला टूट गया है। 8 अप्रैल को ये जंगबंदी नाफिज हुई थी। अमरीका के सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि अमरीकी फोर्सेज आबनाए हुरमुस से फंसे हुए कमर्शियल बहरी जहाजों को बहिफाजत बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू करेगा, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया और कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरान ने यह वार्निंग दी है कि इस आबी गुजरगाह में दाखिल होने वाले गैर मुल्की फौजी फोर्सेज पर हमला किया जाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने जमैका के अपने हम मनसब कामिना जॉनसन और उनकी काबीना के दीगर वजरा के साथ एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के दरमियान शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने तालीम, सेहत, जरात, डिजिटल सियाहत, खेल, तफरी, बुनियादी ढांचे, सलाहियत साजी और कसीर जहती उमूर के सिलसिले में ताल्लुकात को आगे ले जाने के बारे में तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने जमैका के सनती और कारोबारी रहनुमाओं के साथ बातचीत भी की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो रियासत में पीने के पानी की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हर जिले के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की हिदायत दी ताकि पानी की फराहमी के निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। कल सेक्रेटरिएट में एक जायजा मीटिंग के दौरान जनाब नायडू ने गाड़ियों के इंदराज के अमल को आसान बनाने के लिए इकदामात को भी मंजूरी दी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मुल्क के कई हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के साथ साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। इधर शिमाली रियासतों के बाद हिस्सों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई भी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से दिए गए 229 रन के निशाने को मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर्स और 4 गेंदों में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 228 रन बनाए थे। रयान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
4: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारात ने 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नतायज से मुतालिक खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस सिलसिले में शहसुर्खी है, बंगाल में बीजेपी की तारीखी जीत, आसाम में भी वापसी। अखबार प्रताप की सुर्खी है, बंगाल, तमिलनाडु और केरला में इकतदार के किले ढह गए। अखबारात ने नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में वजीर आजम के कारकुनों से खिताब को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बंगाल की जीत के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल की हुक्मरानी। अखबारात ने भारत और कनाडा के दरमियान एफटीए मुजाकरात का दूसरा दौर शुरू होने की खबर को भी अहमियत दी है। तकनीकी दौर में मुस्तकबिल के लिए तहकीक और सरप्राइज इंतहाई जरूरी। अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को कौमी सफे पर जगह दी है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इकतदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस के जेर क्यादत यूडीएफ फिर से इकतदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाजह अक्सरियत नहीं मिली है। टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। مغربی بنگال کے صنعتی اداروں اور تجارتی انجمنوں نے بی جے پی کی کامیابی کا خیر مقدم کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات

में ईरान के ड्रोन हमलों में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे विश्वजीत रॉय चौधरी द्वारा सरोद पर बजाया राग राग अलहैया बिलावल। विलंबित रचना तीन ताल एवं द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।

इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा यहीं संपन्न होता है। इसके अंतर्गत अभी आप आनंद उठा रहे थे विश्वजीत रॉय चौधरी द्वारा सरोद पर बजाया राग अलहिया बिलावल का। विलंबित रचना तीन ताल एवं द्रुत तीन ताल में निबद्ध थी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:15 होने को है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में परिवर्तन हो रहा है। मार्च महीने में ही हम लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के अन्य भागों में भी इसका अनुभव किया है। विस्तृत जानकारी के लिए आइए सुनते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक सिंह से कमल किशोर बड़ाई की ये बातचीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कमल किशोर बड़ाई का नमस्कार। साथियों, जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम के पैटर्न में दशकों से या सदियों से होता चला आ रहा है और यह दीर्घकालिक बदलाव भी है, जिसका मुख्य कारण हो सकता है कि जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, गैस, तेल, इनके जलने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ये मानवीय गतिविधियां तापमान वृद्धि, ग्लेशियर के पिघलने, समुद्र स्तर में वृद्धि और सूखा बाढ़ जैसी चरम घटनाओं के कारण यानी कि अति ज्यादा घटनाओं के कारण हो रही है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विज्ञान प्रसार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक सिंह जी को। डॉक्टर विवेक सिंह जी, आपका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार सर, धन्यवाद।
0: डॉक्टर विवेक सिंह जी, जब भी कुछ बात होती है, जब भी कहीं गर्मी होती है, जब भी कहीं ज्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ के हालात हो जाते हैं या फिर ग्लेशियर पिघलने की बात होती है, तो हम कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो सकते हैं,
1: ये बताना चाहूंगा कि मौसम और जो क्लाइमेट है उनमें फर्क क्या होता है। मौसम आप किसी भी एक नियत स्थान की जो डेली के टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो वेदर पैटर्न चेंजेस होते हैं, उनको हम लोग मौसम बोलते हैं। और क्लाइमेट जो वर्ड है, जो शब्द है, वो किसी भी जगह की पिछले लगभग 30 साल की जो जैसी मौसम की घटनाएं थी उनका जो एवरेज निकालते हैं हम लोग उनके वहां का क्लाइमेट बोलते हैं
0: जी।
1: तो अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, तो इसका मतलब ये कि किसी भी जगह का तापमान, जो औसत पिछले 30 साल का तापमान था, उसमें से अब इतना चेंजेस घट रहा है, कोई चीज बढ़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज।
0: जगह जगह पर कुछ अलग हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज कई कारणों से होता है। एक तो कई प्राकृतिक कारण भी होते हैं। प्राकृतिक कारण जैसे कि ग्लेशियर्स का पिघलना हो गया, मानव जनित जो कारण है उसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे, तो जैसे मानव बहुत ही ज्यादा वनों की कटाई करते हैं और बहुत ही ज्यादा जीवाश्म ईंधन का गाड़ियां चलती हैं, ये जो मानव जनित कारण है ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कई बार, और ये पोर्शन ज्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन का, और प्राकृतिक कारण से कम होता है थोड़ा सा क्लाइमेट।
0: जहाँ तक जीवाश्म ईंधन का जो दहन होता है, निकलता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी गैसें होती
1: हैं? देखिए, जो उसमें कई हानिकारक गैसेस निकलती हैं, तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। तो ये गैसें जब भी हमारे तापमान में उत्सर्जित होती हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैस नामक एक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है कि जो पृथ्वी के सतह से लगभग 10 किलोमीटर की हाइट तक जो ट्रोपोस्फीयर, हम लोग पृथ्वी का एक मंडल होता है उसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, ये गैसेज उसमें ट्रैप हो जाती हैं। तो ट्रैप होने की वजह से जो इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन रहेगा, सनलाइट हम अर्थ पे गिरती है और वापस कुछ पोर्शन चली जाती है, सनलाइट वापस कई बार नहीं जा पाती है, इन गैसेस की वजह से ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से तापमान बढ़ने लगता है, इसी प्रभाव को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं।
0: तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव ज्यादा बढ़ते रहता है, तो उसी प्रकार से क्या अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, उनका भी प्रभाव हमारे पास यानी कि हमारे पृथ्वी पर ज्यादा पड़ता है?
1: हाँ, कह सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट का तो डायरेक्ट जो प्रभाव होता है तो ओजोन परत के डिपेंड करता है कि जब भी हमारा अगर वो ओजोन जो लेयर है अगर वो डिप्लीट रहेगी, तो अल्ट्रा वायलेट सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर ज्यादा आएंगी और वो विभिन्न प्रकार की रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे खासतौर पर स्किन कैंसर। तो जब हमारा वातावरण बहुत ही प्रदूषित है, तो उससे क्या होता है कि कई बार ओजोन की जो परत है उसमें भी काफी मतलब गिरावट आती है, उसकी क्षय होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हमारा जो ट्रोपोस्फीयर है या जो अर्थ सर्फेस है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है सन के लिए, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो उनके आने के चांसेस और प्रायिकता ज्यादा रहती है, और इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी और समस्याएं भी हो सकती
0: है। जी डॉक्टर विवेक सिंह जी, अभी आपने कहा कि एयर पोल्यूशन, और मुझे लगता है कि आप एयर पोल्यूशन से आप ज्यादा करीब से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप उसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं, उनके विषय में आर्टिकल्स आप लिखते भी हैं, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे कि ये हमारे जलवायु परिवर्तन में कितने हद तक प्रभावी होते हैं?
1: देखिए, एयर पोल्यूशन का जलवायु परिवर्तन में बहुत ही ज्यादा रोल है। एयर पोल्यूशन बेसिकली होता है कि जब भी हवा में हमारे जो माइन्यूट पार्टिकल हैं, जिनको हम लोग पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 बोलते हैं, जो मेन पार्टिकुलेट मैटर हैं, जब भी हवा में उपस्थित हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर वहां का तापमान बढ़ेगा और कई श्वास संबंधी बीमारियां रहती हैं। ये जो मनुष्यों द्वारा सर्जी जो PM2.5 PM10 हो गया, जो मुख्यतया स्टबल बर्निंग से होती हैं, गाड़ियों के धुएं से होती हैं, तो ये किसी भी जगह का वातावरण अगर गर्म करेंगे वहां पे मुख्यतया वहां पे पक्का बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां का जलवायु परिवर्तन रहेगा। तो इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। ये सिर्फ स्वास्थ्य को नहीं डायरेक्टली प्रभावित करती है, ये उस जगह के क्लाइमेट चेंज को भी डायरेक्टली

0: प्रभावित करती हैं। अतः हमको एयर पोल्यूशन को भी बहुत ही अच्छे से स्टडी करके और जो फ्यूचर के पॉलिसीज होनी चाहिए गवर्नमेंट को उसके बारे में डिसाइड करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर विवेक जी, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि जब भी एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो धुएं की बात होती है, और धुएं से अगर हम आगे निकलते हैं शहरों की बात करते हैं या फिर रोड में चलते हुए हम देखते हैं कि उसमें धूल उड़ते हैं, तो क्या ये भी एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारक हो सकता है?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि नॉर्मली जो लोग सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन सिर्फ
1: धुएं से
0: होता है या गाड़ियों से होता है, बट एयर पोल्यूशन कई बार प्राकृतिक कारणों से होता है। राजस्थान के बारे में बात करें और जो तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई हो गया इधर साइड में और गुजरात के कुछ रीजन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उधर गल्फ कंट्रीज से कई बार चलने वाली ये देखा गया जो हवाएं रहती है वो अपने साथ धूल लेके आते, तो इन धूल के कणों की वजह से भी कई बार एयर पोल्यूशन बढ़ता है, और इन धूल के कणों से होने से वातावरण में कई बार बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि विजिबिलिटी कम हो जाएगी और जितनी हमारी उड़ाने वो भी डिले रहता है। जो धूल के कण है ये एक बहुत ही बड़ा कह लीजिए कि प्राकृतिक कारण है एयर पोल्यूशन का।
1: अभी आपने जिक्र किया कि जो तटीय इलाके हैं या फिर जो राजस्थान इलाके हैं, जो डेजर्ट इलाके हैं, उन सब एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण ये एयर पोल्यूशन भी हो सकता है?
0: हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे बोल रहे कि धूल के कण साइज में रिलेटिवली बड़े होते हैं, जैसे PM2.5 PM10 से ये कई बार ऊष्मा को अवशोषित कर लेते, वहाँ का तापमान न तो जल्दी पहली बात तो गर्म नहीं होगा, गर्म हो जाएगा तो जल्दी से कूल नहीं रहेगा।
1: जी
0: एक कारण ये भी रहता है कि धूल के कण जिसकी वजह से वहाँ तापमान जो है, अगर आप इन जनरल देखें एवरेज लें तो चूरू मुझे लगता है पूरे भारत का सबसे गर्म क्षेत्र रहता है, लगभग 50-48 रहता है, हमेशा न्यूज में आता रहता है, तो इसका एक कारण वही है क्योंकि वहाँ पे भी गर्मी खूब अच्छी पड़ती है, उधर डस्ट के जो पार्टिकल्स वो भी आते रहते हैं, मिल के सारे प्रभाव एक दूसरे को संपूरित करते हैं।
1: जी जी, जैसे कि अभी आपने शुरुआत में ये कहा कि स्टबर्न है, या फिर हम लोगों के मन में, लोगों के आम पब्लिक के मन में तो यही रहता है कि ये जो एयर पोल्यूशन है वो धुएं की बात होती है, और बहुत आगे बढ़ जाए तो वो धूल की बात होती है, लेकिन कई जगह देखें शहरों में या फिर कई जगह जो औद्योगिक जो कल कारखाने हैं उसकी वजह से भी कह सकते हैं कि जो पोल्यूशन है या फिर जो क्लाइमेट चेंज है वो भी बहुत प्रभावी होता है।
0: बिल्कुल, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, जब भी कोई उद्योग स्थापित होंगे तो वो अपने साथ वहाँ के जो जमीनी स्तर पे परिवर्तन लाएगा, वहाँ के जो जलीय स्तर पे भी परिवर्तन लाएगा, और वहाँ के जो वायु के पर्यावरण के उस पर भी परिवर्तन लाएगा। तो जब भी ये देखा गया है इन जनरल कि जहाँ पे भी औद्योगिकरण बहुत तेजी से हुआ है उन सब जगहों पे एयर पोल्यूशन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। पास्ट में अगर आप बात करें तो लंदन स्मॉग के नाम से एक फिनोमेना हुई थी 1954 में, कई दिनों तक तो सनलाइट दिखी नहीं 10 दिन तक, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन वो तो ये सब कहीं ना कहीं इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत ही तेजी से औद्योगिकरण हुआ बिना किसी प्लानिंग के, और कह लीजिए कि मनुष्य एक हमेशा कुछ ज्यादा करने की कोशिश करता है,
1: प्रकृति के साथ में ज्यादा छेड़छाड़ हो गई, वनों की कटाई ज्यादा हो गई, या फिर वहां पर जो औद्योगिक जो कल कारखाने हैं वो ज्यादा बस गए हो गए हैं, जिसकी वजह से
0: क्योंकि धरती हमारी माता की क्षमता है, वो हमारी धरती माता उद्योगों को ऐसा नहीं कि वो विरोध करती, लेकिन हर चीज एक सीमित लेवल तक रहेगा, तो हमारी प्रकृति इतनी अच्छी है कि वो हमारे सारे चीजों का टेक केयर करती है।
1: जी वैसे कहा जाता है, हम देख भी रहे हैं कि आजकल सूखा ज्यादा पड़ने लगा, या फिर कहीं कहीं ज्यादा बारिश होने लगी है, यानी कि जलस्तर कम भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है, तो ग्लेशियर्स के पिघलने से जलस्तर में क्या बढ़ोतरी हो रही है?
0: हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स जो कई लाखों सालों से नहीं पिघल रहे थे, अगर साइंस की बात करें तो रिसेंट स्टडीज दिखा रही कि वो अगले 10-20 सालों में उनका और मतलब प्रेडिक्शन जो है पिघलने का है, तो जैसे ही वो पिघलेंगे तो उससे एक नुकसान क्या रहेगा जो तटीय क्षेत्र में, जैसे सपोज भारत में हो गया मुंबई या उसके जो भी तमिलनाडु क्षेत्र में रीजन है, ये इनके जलमग्न होने के प्रायिकता जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक ग्लोबल वाटर कन्वेयर बेल्ट चलता है, जो वहां से जो वाटर पिघलेगा तो कहीं ना कहीं की वजह से वो जल का स्तर बढ़ेगा। और रही बात जमीनी स्तर के जल में कमी की, तो वो कहीं ना कहीं अंधाधुंध खनन हुआ है, जैसे कई सिटीज में से आप अगर प्रायतः देखते होंगे कि जो चेन्नई में जो ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है,
1: दिल्ली में भी उसी प्रकार की हालत हो।
0: हाँ आप ये समझिए कि चक्रीय प्रक्रम है, तो क्लाइमेट चेंज एक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत चलता है, इसमें सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं अगर एयर पोल्यूटेड रहता है तो कहीं ना कहीं वाटर को पोल्यूट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एयर जो है वाटर में मिक्स रहेगा, वाटर पोल्यूट करेगा कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूटेड रहेगा, सॉइल पोल्यूटेड रहेगा तो हमारा खाना पोल्यूटेड रहेगा, मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, फिर जनघनत्व बिगड़ेगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन,
1: यानी कि सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए, जिसकी वजह से हमारे जो क्लाइमेट चेंज होता है उसमें प्रभाव पड़ता है। जी और वैसे जब क्लाइमेट चेंज होता है तो जैसे अभी आपने कहा कि हमारे शरीर पर यानी कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसके और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं?
0: क्लाइमेट चेंज में अभी रिसेंट की जो स्टडीज हैं ये बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का सिर्फ श्वसन संबंधी इस पे नहीं प्रभाव पड़ता है, अगर एयर पोल्यूशन वगैरह के बारे में बात करें, अभी ये देखा जा रहा है कि मलेरिया जैसे डिजीजेस भी क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी जो आवृत्ति वो बढ़ गई है, ये पहले ऐसा नहीं था, मतलब जब ये आज से 15 साल पहले ऐसा नहीं था कि क्लाइमेट चेंज से स्वास्थ्य में मलेरिया जैसे रोगों में वृद्धि हो रही हो, तो क्लाइमेट चेंज से और एयर पोल्यूशन की वजह से जैसे अभी श्वसन संबंधी तो बीमारियां ही, इसके अलावा वजह से कि जो शहरों का

0: वहाँ ऐसे ये देखा गया आमतौर पर किसी कैंसर के फेफड़ों के कैंसर होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपका जो यूवी रेज अगर आ रही है वो आपके अगर स्किन में डायरेक्टली पहुंच जा रही है हानिकारक वाली यूवी रेज, तो उससे स्किन कैंसर बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाह्य रूप से भी वो कर रही है, मानव शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, और अंदर भी ढेर सारे नए नए रोगों को और नए नए वायरसेस को या ये कह लीजिए मतलब नए नए टाइप के रोगों को भी जनरेट कर रही है।
1: जी, तो वन्य जीवन पर, जीव जंतुओं पर तो पड़ ही रहा है, फसलों पर, वन्य जीवन पर, पेड़ पौधों पर किस प्रकार से ये हानिकारक साबित हो रहा है?
0: देखिए, अब पेड़ पौधों से जलवायु परिवर्तन का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई एक पेड़ है, जैसे उसको हमको पता है कि ये नियत ताप पर ही ये पेड़ उगेगा, या कोई कृषि है जो नियत ताप पर उगेगी, अब वहां पे अगर मान लीजिए हीट वेव किसी साल हो गया तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। ये देखा है कि हाल के समय में ओले वगैरह की जो आवृत्ति वो ज्यादा बढ़ गई। पहले भी ओले पड़ते थे लेकिन इनकी तीव्रता और आवृत्ति इतनी ज्यादा नहीं थी। वो पड़ते थे, कभी कभार पड़ते थे और इतनी तीव्र नहीं होते थे। ये सारी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत
1: तेजी से हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, एयर पोल्यूशन का असर पानी पर भी पड़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समुद्री जीव है उन पर भी असर जरूर होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, एक्वा कल्चर है जो हमारे जो मरीन लाइफ है, जो प्रकृति ने बैक्टीरिया और क्लोरोफिल और जो पूरा एक सिस्टम है एक्वाटिक लाइफ रहता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एयर पोल्यूशन का इफेक्ट जो मरीन कोरल रीफ्स हो गया या जो अंदर के जीव जंतु हैं उस पे भी पड़ रहा है, और कई जीव जंतु उसकी वजह से मर जा रहे हैं कई बार।
1: यानी कि जो मानवीय गतिविधियां हैं उनसे तो होता ही होता है, उसके अलावा जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं उनसे भी ये सब चीजें बहुत खराब हो जाती
0: है। क्योंकि प्रकृति जो गतिविधियां करती है वो कंट्रोल वे में करती है
1: जी,
0: वो उसका कह लीजिए कि वो क्लीनिंग मैकेनिज्म है। मेरा मानना है कि वो प्रकृति अपने हिसाब से वो बैलेंस करती है, वो मानव के हित में रहती है। समस्या वहां पर आती है जहां पे मनुष्य का लालच जो सीमा से परे हो जाता है और वो प्रकृति के साथ सीमा के परे जो है खिलवाड़ करता है, उसकी वजह से ज्यादा ये जलवायु परिवर्तन।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति के अगेंस्ट में के उलट जो भी काम कर रहे हैं मानव जाति कर रही है उससे तो एयर पोल्यूशन होगा ही, और जो प्राकृतिक जो संतुलन है
0: वो
1: बिगड़ेगा। ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐसी कोई योजनाएं बन रही है?
0: जो शहरी क्षेत्रों की नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है एनकैप हो गया, उस तरह के कई मानक जो रहती है भारत सरकार लेती है कि आपको जैसे ग्रेप लग जाता है कई बार दिल्ली जैसे शहरों में, और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक आधा करने का हमारी सरकार ने सोच रखा है, प्लान कर रखा है। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जिससे कि हमारे तापमान में संतुलन बना रहे और जो जलवायु परिवर्तन है कंट्रोल वे में रहे।
1: डॉक्टर विवेक सिंह जी, अपने श्रोताओं को आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप प्रकृति के साथ कदम से कदम मिला के चलें, और जो भी आप अपने स्तर पे जितनी भी चीजों को जो हमारे संसाधन है सीमित रूप से प्रयोग करें जहां पे जरूरत हो। प्रकृति अपना खुद का ही जो बैलेंस वो खुद से कर लेती है, तो बस थोड़ा सा हमको प्रयास चाहिए कि हमको अपने चीजों को लिमिटेड फॉर्म में कंट्रोल वे में यूटिलाइज करना है।
1: जी डॉक्टर विवेक सिंह जी, आप आए, जलवायु वृद्धि के कारणों का, प्रभावों का हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जो प्रकृति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने इतनी सारी जानकारी, बहुत सारी आपने बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।

जलवायु परिवर्तन और बदलता मौसम, कारण और निदान के उपाय। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का था और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम मिट्टी दी महक। जी हाँ, पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनते हैं आप।

आदाब अर्ज है। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की पहली मजलिस का अब आगाज होता है। आइए हम नजर डालें इस मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद सुबह ही प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में आप भजन सुन सकेंगे। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम होगा। खबरें नश्र की जाएंगी 9:50 पर और 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम में सुनिएगा गैर फिल्मी गजलें। 10:30 पर आप सुन सकते हैं पूर्वोत्तर डायरी। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में सुनिएगा फिल्मी नगमे। 11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे मौसिकार नौशाद पर फीचर, आफताबी मौसिकी नौशाद अली। फीचर का पहला हिस्सा आप 11:30 पर सुनेंगे। दिन में 12 बजे खबरें नश्र की जाएंगी और 12:10 से आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम होगा। आज का मौजू है अलबरूनी। दिन में 1 बजे आलमी खबरें नश्र की जाएंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस का वक्त खत्म हो जाएगा। ये थी एक नजर आज की मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबह का ही। आज के प्रोग्राम में समात फरमाइए सुरेश वाडकर की आवाज में भजन।

0: सुबह का ही प्रोग्राम में अभी आपने सुरेश वाडकर की आवाज में भजन सुने। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: आज 5 मई है दोस्तों, तो अब चलते हैं जरा इतिहास के पन्नों में और जानते हैं कि क्या है वो खास बातें जो इस तारीख को बना देती हैं कुछ और खास। और दोस्तों सन 1835 में यही थी वो तारीख यानी 5 मई, जब महाद्वीपीय यूरोप में पहली रेलवे लाइन बेल्जियम में ब्रसल्स और मैकलेन के बीच शुरू की गई, जबकि 1930 में इसी तारीख को ब्रिटिश पायलट एमी जॉनसन ने लंदन के क्राइडन से उड़ान भरी और इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक अकेले उड़ान भरने वाली बन गई वो पहली महिला। 1955 में 5 मई की तारीख को संघीय गणराज्य जर्मनी ने पूर्ण संप्रभुता प्राप्त की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों का कब्जा आधिकारिक रूप से तब समाप्त हो गया। और 2010 में यही थी वो तारीख यानी 5 मई, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि किसी व्यक्ति की सहमति के बगैर नार्को एनालिसिस

पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग परीक्षण करना असंवैधानिक है। और दोस्तों, आइए अब याद करते हैं उन महान व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और दोस्तों, आज है जयंती प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, गायक और व्यवसायी गुलशन कुमार की, जिनका पूरा नाम था दरअसल गुलशन कुमार धुआ। टी सीरीज कंपनी के संस्थापक गुलशन कुमार का नाम फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शुमार है जिन्होंने काफी कम समय में शोहरत की बुलंदियों को हासिल किया। और उन्होंने टी सीरीज कैसेट्स के जरिए देवी देवताओं के भजन और फिल्मों के संगीत को आम जनता के बीच बहुत ही किफायती दरों पर उपलब्ध कराया था, इसके लिए उन्हें याद किया जाता है। बहुत से उन्होंने भक्ति गीत जो है वो भी बनाए और कई बार ऐसे गीतों में वो खुद भी काफी नजर आते थे। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी ही भक्ति रचना का ये छोटा सा अंश।

और दोस्तों आज जयंती है बंगाल की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी प्रीति लता वादेदार की। वो एक प्रतिभावान छात्रा थी। प्रीति लता वादेदार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की। चटगांव शस्त्रागार कांड की घटना से प्रभावित होकर उन्होंने क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन के दल की सदस्यता ली और फिर 24 सितंबर 1932 को प्रीति लता वादेदार ने ही सूर्य सेन के साथ मिलकर यूरोपीय क्लब पर हमला किया था। और दोस्तों आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार नौशाद को। नौशाद अली हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध संगीतकार। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने साज का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने सिर्फ 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता दरअसल संख्या बल से कहीं आगे होती है। नौशाद के संगीत का ये जादू था कि मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन और संजोग जैसी कई फिल्मों को न केवल उनके संगीत ने हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। फिल्म बैजू बावरा की सफलता से नौशाद को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। संगीत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए फाल्के अवार्ड, लता अलंकरण तथा 1992 में पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया। आइए सुनते हैं कुछ उनके ऐसे ही महान गीतों की एक छोटी सी झलक।

आपने सुना प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इक्तदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ फिर से इक्तदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाज अक्सरियत नहीं मिली है। टीवी के पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तिजारती अंजुमनों ने बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में 2 महाजों पर तारीख रकम हुई है। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पहली मरतबा जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ने वाली तमिलगा वैतरी कसगम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इधर दीगर असेंबली इंतखाबात में आसाम और पुदुचेरी में अवाम ने फिर से हुक्मरान पार्टियों में एतमाद का इजहार किया है, जबकि केरलम में लोगों ने तब्दीली के हक में राय जाहिर की है। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर असेंबली में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की है। इस तरह तृणमूल कांग्रेस का 15 साल से जारी दौरे हुकूमत खत्म हो गया है। तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट पर उसे सबकत हासिल है। 293 असेंबली सीटों में से 292 हलकों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआईएम एक सीट पर कामयाब हुई है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी तमिलगा वैत्री कसगम टीवीके ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। पार्टी की तश्कील के बाद पहले चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और वो वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय पिरम्बूर और तिरुचि ईस्ट दोनों हलकों से चुनाव जीत गए हैं। 234 रुकनी असेंबली में हुक्मरान डीएमके पार्टी को 59 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी हरीफ पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 47 सीटों पर कामयाब हुई है। टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, जो सरकार बनाने की खातिर अक्सरियत के लिए दरकार 10 सीटें कम हैं। असम में हुक्मरान बीजेपी के जेर कयादत एनडीए ने 126 रुकनी असेंबली में 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी मुद्दत के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की है। पार्टी की इत्यादी आसाम गण परिषद को 9 सीटें मिली हैं, जबकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, जबकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल ने 2-2 सीटें जीती हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिली है। केरलम में कांग्रेस के जेर कयादत यूडीएफ ने फैसलाकुन कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी इत्यादी पार्टी आईयूएमएल को 22 सीटें मिली हैं। इस तरह इस इत्तेहाद को रियासत में बालादस्ती हासिल हो गई है। यूडीएफ के करीब करीब सभी सरकर्दा रहनुमा वाज़े अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं। इधर हुक्मरान एलडीएफ की तरफ से सीपीआईएम को 26, सीपीआई को 8 और आरजेडी को 1 सीट मिली है। बीजेपी को इस मरतबा 3 सीटें मिली हैं, जबकि अभी तक असेंबली में पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। पार्टी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में नेमम हलके से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। पुदुचेरी में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने 30 रुकनी ऐवान में 18 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है और इक्तदार बरकरार रखा है। इत्तेहादी पार्टियों में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है, जबकि 3 सीटें आजाद उम्मीदवार के हक में गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को तारीखी और बेमिसाल करार दिया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के अवाम और पार्टी कारकुनों के तहत तशक्कुर का इजहार किया है। चुनाव नतीजों के बाद कल शाम दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकारें 20 से ज्यादा रियासतों में इकतदार में हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी का मंत्र है

इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और डी

0: फ्रीडिश पर आप हमारी नशरियात से लुत्फंदोज हो रहे हैं। अब पेश है प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी,
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूँ कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी,
2: श्रोताओं, भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और सरकार की विभिन्न विकास की योजनाओं से हमें ये परिवर्तन बीते कुछ वर्षों में देखने को भी मिला है। बीते सप्ताह यानी 27 और 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्किम यात्रा भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सिक्किम की इस यात्रा में जहां एक तरफ सिक्किम को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 50वें स्थापना समारोह के समापन दिवस पर हिस्सा भी लिया और इस समारोह के अवसर पर जनता को संबोधित भी किया। तो हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम की शुरुआत में ये विशेष रिपोर्ट सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें हमने प्रधानमंत्री की इस यात्रा के संबंध में चर्चा की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और जिससे सिक्किम की विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है, उन परियोजनाओं का भी हमने विस्तार से इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया है। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
3: नरेंद्र मोदी ने 27 और 28 अप्रैल को सिक्किम की यात्रा की। वे 27 अप्रैल को दोपहर करीब 3 बजे गंगटोक पहुंचे। 28 अप्रैल को सुबह करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री ने गंगटोक के आर्किडोरियम का दौरा किया। यहां राज्य की प्राकृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए स्वर्ण जयंती मैत्री मंजरी पार्क को एक आधुनिक ऑर्किड अनुभव केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री ने गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना वर्ष समारोह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 30 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं सड़क संपर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी है। इनका उद्देश्य सिक्किम के समग्र और समावेशी विकास को तेज करना है।
4: पूरब का स्वर्ग सिक्किम, ऑर्किड का गार्डन सिक्किम, इसका अप्रतिम सौंदर्य, यहाँ की शांति, यहाँ का आध्यात्मिक आनंद, ये अनुभूति बड़े सौभाग्य से मिलती है। आज मैं यहाँ के ऑर्किड्स को भी देखने गया था। मेरे लिए जितना समय तय हुआ था, मैं ज्यादा ही समय वहाँ बिता रहा था और मैं देश भर के प्रकृति प्रेमी टूरिस्टों को, अगर उन्होंने सिक्किम का ये ऑर्किड नहीं देखा है तो कुछ भी नहीं देखा है। और मुझे विश्वास है कि इस बार टूरिस्ट सिक्किम के टूरिज्म के सारे आंकड़े इस बार पार कर देंगे।
3: स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने नामची जिले के यांगयांग में 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल की आधारशिला रखी। साथ ही एनआईटी देवराली में 30 बिस्तरों वाले एकीकृत सोवा रिंगपा अस्पताल का उद्घाटन किया। इससे राज्य में पारंपरिक चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी। शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने यांगयांग में सिक्किम यूनिवर्सिटी के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। इसके अलावा चांगकुंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस के प्रशासनिक भवन, गंगटोक जिले के सोचेगांग में हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज, ग्यालशिंग जिले के डेंटम प्रोफेशनल कॉलेज, ही क्यांगतांग के मॉडल आवासीय विद्यालय, मंगन जिले के मंगशीला में नए मॉडल डिग्री कॉलेज और नामची जिले के बुमतार गुम्पा में मठ छात्रावास और कक्षा भवन का उद्घाटन किया गया। राज्य के 160 स्कूलों में आईटी आधारित शिक्षा परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई। सड़क संपर्क बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री ने तिस्ता नदी पर सिरवानी और लोअर सामदोंग में

0: दो डबल लेन स्टील आर्च पुलों की आधारशिला रखी। इससे नामची और गंगटोक जिलों के बीच संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने बिरधांग में से नामची तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना का भी उद्घाटन किया। इससे लोगों और सामान की आवाजाही आसान होगी।
1: हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट पास का संकल्प भी लिया है और इसलिए एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट आज भी यहाँ हजारों करोड़ रुपए की सेजा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें रोड, पावर, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, हर तरह के प्रोजेक्ट शामिल है।
0: बिजली क्षेत्र में गंगटोक के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के उन्नयन परियोजना का उद्घाटन किया गया, जिससे बिजली आपूर्ति अधिक मजबूत होगी। शहरी विकास के तहत लुमसी में जन सेवा सचिवालय, गंगटोक में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, लिंगडिंग में सिक्किम अर्बन गरीब आवास योजना, पुलिस कर्मियों के लिए आवास और SP पांगथांग में ग्रेड सी क्वार्टर का उद्घाटन किया गया। MG मार्ग में सद्भाव मंडप की आधारशिला भी रखी गई। पर्यावरण संरक्षण के तहत सिंगतम में शहर में सीवरेज सिस्टम सुधार परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। गंगटोक के जोन 3 में रानीचो नदी प्रदूषण नियंत्रण योजना का भी उद्घाटन किया गया। पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगटोक के रिज क्षेत्र के पुनर्विकास, सोरिंग के डोडक में इको टूरिज्म सुविधाओं, कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी सुविधाओं, नामफिंग में यात्री निवास और ग्यालछिंग जिले के सिलनोन में इको पिलग्रिमेज कॉम्प्लेक्स परियोजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने सिक्किम में इफको प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को फायदा होगा। पाक्योंग जिले के रंगपो में इंडोर क्रिकेट सुविधाओं का भी उद्घाटन किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छता, सांस्कृतिक विविधता और लोगों का स्नेह उन्हें हमेशा प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि राज्य के 21 समुदायों की सांस्कृतिक झलक देश की एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की अष्टलक्ष्मी है और यहाँ तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं।
1: हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़क, रेल और पर्यटन सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने सेवोक रांगपो रेलवे लाइन और बागडोगरा गंगटोक एक्सप्रेसवे जैसे परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम जैविक खेती के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, कीवी और एवोकाडो जैसे उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रोसेसिंग सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने राज्य में खेल प्रतिभाओं की भी सराहना की और कहा कि फुटबॉल, बॉक्सिंग और तीरंदाजी जैसे खेलों में सिक्किम के युवा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्रों और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज जैसे योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सिक्किम के लोगों की भी सराहना की और एक पेड़ माँ के नाम तथा मेरो रुख मेरो संतति जैसे अभियानों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सिक्किम के विकास के लिए लगातार काम करती रहेगी और राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री की यात्रा सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना वर्ष के अवसर पर काफी महत्वपूर्ण रही और इससे राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं वैष्णवी।

0: श्रोताओं, हाल ही में मनाए गए विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर अगरतला में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में किस तरह से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और चर्चाओं का क्या केंद्र बिंदु रहा और ये किस तरह का उत्सव था, इस संबंध में हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने अगरतला से हमें ये रिपोर्ट भेजी है। आइए सुनते हैं।
1: किताबें ज्ञान, कल्पना और प्रेरणा का अनंत खजाना। इस अमूल्य धरोहर का उत्सव मनाने के लिए हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है।

0: जो विलियम शेक्सपियर की जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इसी भावना को जीवित रखते हुए रविवार 26 अप्रैल को अगरतला प्रेस क्लब में एक विशेष साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन त्रिपुरा के प्रमुख प्रकाशन संस्थानों में से एक अक्षर पब्लिकेशन ने किया। इस मौके पर मुलात नामक एक अनियमित साहित्यिक पत्रिका का लोकार्पण किया गया। नई और पुरानी किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई। पुस्तक पढ़ना, पुस्तक संस्कृति और किताबों पर बातचीत विषय पर चर्चा हुई और लेखकों, पाठकों तथा प्रकाशकों का एक उत्साहपूर्ण संगम देखने को मिला। किताबें हमारे जीवन की साथी होती हैं, जैसे हमारी पहचान का हिस्सा। वे चुपचाप हमारे भीतर बस जाती हैं और हमें गढ़ती हैं, क्योंकि किताबें कभी धोखा नहीं देती। वे हमेशा हमें समृद्ध बनाती हैं और अपना सारा ज्ञान हमें देती हैं। किताबें खरीदना या उधार लेना आम बात है, लेकिन असली किताब प्रेमी कभी कभी इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। मजाक में तो किताब चुराने को भी एक पवित्र आदत कहा जाता है। ज्ञान के प्रेमियों के लिए पढ़ने का जुनून इतना गहरा होता है कि वे नियमों की परवाह नहीं करते और हंसी मजाक में ऐसे चोरों को माफ भी कर दिया जाता है। कभी कभी तो उन्हें और किताबें भी मिल जाती हैं। किताबों के प्रति यही प्यार अप्रैल के आखिरी रविवार को अगरतला प्रेस क्लब में विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर साफ दिखाई दिया। इस चर्चा का नेतृत्व अक्षर पब्लिकेशन के प्रमुख सुब्रवत देव ने किया, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है।
1: Is the only organization in the state who is observing World Book Day every year in a befitting manner. And since last 3.5 years, we are doing the same. And this year also, actually to promote the reading habit, you know, the reading habit is declining nowadays. And because of this electronic gadget and for all this, the traditional book, printed form book is kind of under threat. And mainstream Bengali publication also doing some horror and some thriller book, which is not actually good for any reader. So we should stick on our basic. We should be honest on the publishing.
0: समय के साथ पढ़ने, लिखने और प्रकाशन के तरीकों में बदलाव आना जरूरी नहीं कि बुरा हो या अक्सर प्रगति का संकेत होता है, लेकिन आज के तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में किताबों और लेखन के भविष्य को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। इन चिंताओं पर कोलकाता से आए प्रसिद्ध कवि, लेखक और भारतीय साहित्य अकादमी के पूर्व पूर्वी क्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर अरुणांशु कर ने सकारात्मक विचार रखे। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक को सहायक के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, न कि रचनात्मकता का विकल्प बनना चाहिए।
2: दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट अक्षर पब्लिकेशंस इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड बुक डे, विश्व पुस्तक दिवस, बिकॉज अल्टीमेटली बुक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट इन वन्स लाइफ एंड बुक्स नेवर बिट्रे अस। बुक्स आर मोस्ट डिपेंडेबल फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड. And that is why, you know, to celebrate life, ultimately, we need to celebrate books. I mean, after 50 years, what will happen, I don't know. But I don't think that right now there is any serious threat to books. Of course, AI might change things a lot. And the poets, the novelists, they will, you know, be going through a very tough time, because it could be that they might be absolutely redundant, because AI will start writing novels and poems. It could be so, might be in 10 years or so. So that is something that we need to think about, how to combat AI as authors. But even then, I don't think that AI also is kind of a threat to books, because AI is ultimately not a replacement for books. Technology, I think, will not be able to do great damage to books. Books will ultimately survive.
0: जहाँ कई तरह की लत चिंता का कारण बनती है, वहीं पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना चाहिए, अब पहले से भी ज्यादा। त्रिपुरा में पुस्तक मेलों ने एक नई ऊर्जा पैदा की है, जिससे नए प्रकाशकों की एक पीढ़ी सामने आई है। आज किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं दे रही, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही हैं। वे मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की प्रगति में योगदान दे रही हैं। विश्व पुस्तक दिवस हमें याद दिलाता है कि किताबें मानवता की सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है, जो हमारे विचारों, संस्कृति और भविष्य को आकार देती हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ करिश्मा राय।

0: अरुणाचल प्रदेश में असम सहित एक संयुक्त सीमा सर्वेक्षण की शुरुआत हुई और सर्वे ऑफ इंडिया और अरुणाचल सरकार के द्वारा ये एक अंतर्राज्यीय सीमा सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो इस सीमा सर्वेक्षण का क्या महत्व है, इस संबंध में हमारे संवाददाता मनोज की रिपोर्ट में हम विस्तार से सुनते हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश असम सीमा सहित राज्य के सीमा मामले विभाग द्वारा संयुक्त अंतर्राज्यीय सीमा सर्वेक्षण लोअर सियांग और ईस्ट सियांग जिले में शुरू कर दिए गए हैं। ये सर्वेक्षण असम सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया के समन्वय से किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा कहा गया है कि ये सर्वेक्षण चरणबद्ध और स्ट्रेच वाइज तरीके से किए जा रहे हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश के संबंधित जिलों को असम के उनके समकक्ष जिलों धेमाजी और तिनसुकिया के साथ जोड़ा गया है। ये प्रक्रिया अंतर्राज्यीय सीमा के चिन्हित हिस्सों को कवर करती है, जिसका उद्देश्य जियोस्पेशियल के आधार पर सीमा का सौहार्दपूर्ण वैज्ञानिक और जमीनी स्तर पर स्पष्ट निर्धारण करना है। ईस्ट सियांग जिले के संयुक्त सर्वेक्षण ओयांग जामपानी क्षेत्र में ईस्ट सियांग और धेमाजी की टीमों द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान किसी भी पक्ष से कोई समस्या या विवाद सामने नहीं आया। इसी तरह लोअर सियांग जिले में भी सर्वेक्षण स्वीकृति योजना के अनुसार शुरू किया गया है। वहीं लोअर दिबांग वैली जिले में भी तिनसुकिया प्रशासन के सहयोग से सर्वे कार्य जारी है। सीमा मामले विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मार्च 2026 में पाकिस्तान सेक्टर में संयुक्त अंतर्राज्यीय सीमा सर्वेक्षण किया गया था। उसके बाद अप्रैल 2026 तक उस सर्वेक्षण के तहत स्थापित सभी सीमा स्तंभों को सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दोनों राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश के अधिकारियों की उपस्थिति में जमीन स्तर पर पुनर्निरीक्षण पूरा कर लिया गया। पुनर्निरीक्षण की सफलतापूर्वक पूर्णता इस सेक्टर में सीमा के जमीनी निर्धारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। विभाग ने आम जनता, विशेषकर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले गांवों के निवासी से अपील की है कि वे संयुक्त सर्वेक्षण टीमों को पूरा सहयोग दें, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू और सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
0: श्रोताओं, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री के सिक्किम दौरे की बात की थी और हमने जिक्र भी किया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एक और महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री द्वारा इस यात्रा में शुरू की गई, बीसीसीआई की 6 क्रिकेट अकादमियों की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की और माना जा रहा है कि बीसीसीआई की इन क्रिकेट अकादमीज के उद्घाटन से, इनकी शुरुआत से पूर्वोत्तर भारत में क्रिकेट की प्रतिभाओं को सामने लाने में मदद मिलेगी और खासतौर पर जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ प्रतिभाओं को मुख्य धारा में जोड़ने में इससे और मदद मिलेगी। तो आइए हम अपने सहयोगी विशेष की इस रिपोर्ट में इस बारे में और विस्तार से सुनते हैं।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीसीसीआई की 6 इंडोर क्रिकेट अकादमियों का उद्घाटन किया। बीसीसीआई द्वारा विकसित ये अत्याधुनिक अकादमियां सिक्किम के रंगपो, अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख, मणिपुर के इम्फाल, मेघालय के मदन कुरकलांग, मिजोरम के आइजोल और नागालैंड के दीमापुर में स्थापित की गई है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इन सुविधाओं का उद्घाटन किया। यह पहल पूर्वी क्षेत्र की क्षमता को सामने लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की प्रतिभा की सराहना की।
3: यहाँ के युवाओं ने फुटबॉल, बॉक्सिंग, आर्चरी, इन खेलों में यहाँ से निकले खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता और प्रतिभा को बड़े बड़े मंचों पर साबित किया है।
2: इन अकादमियों को उच्च प्रदर्शन केंद्र के रूप में तैयार किया गया है, जहां इंडोर प्रैक्टिस एरिया, आधुनिक जिम, तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल और समर्पित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे खिलाड़ियों को पूरे वर्ष अभ्यास का अवसर मिलेगा, खासकर लंबे मानसून के दौरान भी। कार्यक्रम में आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह सहित बीसीसीआई के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बीसीसीआई के अनुसार इस परियोजना की शुरुआत 2024 में की गई थी, जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्व में क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। उत्तर पूर्वी भारत के खिलाड़ी पहले ही कई खेलों में देश का नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन क्रिकेट में यहां से खिलाड़ियों की संख्या अभी भी कम है। ऐसे में बीसीसीआई की इन नई अकादमियों से आने वाले समय में क्रिकेटरों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशेष शुक्ला।
0: श्रोताओं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हमने प्रधानमंत्री के संबोधन में पूर्वोत्तर भारत की जो एक विरासत, एक संपदा है बांस, इसके बारे में उनके वक्तव्य में हमने सुना था। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने बांस को प्रोत्साहन देने के संबंध में मन की बात कार्यक्रम में क्या कहा था।
4: साल 2017 में कानून में बदलाव करके हमने बैम्बू को पेड़ की कैटेगरी से बाहर किया। त्रिपुरा के गोमती डिस्ट्रिक्ट के विजय सूत्रधार और साउथ त्रिपुरा के प्रदीप चक्रवर्ती, इन्होंने नए कानूनों को अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा, अपने काम को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। आज वे पहले से कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा बांस के उत्पाद बना रहे हैं।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश करता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण वहां की संस्कृति से मिलता है। विभिन्न जनजातियों में महिलाओं को समाज में हमेशा से ही प्राथमिकता दी जाती रही है। और इसके अलावा हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों से महिलाओं ने हमेशा से ही अपनी अलग मिसाल पेश की है। और वास्तव में भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा महिला सशक्तिकरण का एक नायाब उदाहरण है। इसका उदाहरण हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि महिलाएं पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहती हैं और अपनी आजीविका के लिए अपनी आर्थिक निर्भरता से अपनी आजीविका कमाती हैं। और इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा महिला सशक्तिकरण के लिहाज से एक बहुत अहम उदाहरण है। आइए सुनते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
5: के पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ के सामाजिक ताने बाने में महिलाओं को वरीयता दी जाती है। खेल कूद में पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। इस क्षेत्र की विविधता और जनजातीय समाज की खासियत ने महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत में कई जनजातियां मातृ सत्तात्मक प्रणाली का पालन करती हैं, जहां संपत्ति और वंश मातृ पक्ष से चलता है। मेघालय की खासी, जयंतिया और गारो जनजातियां इस प्रणाली का प्रमुख उदाहरण है। इन समुदायों में परिवार की संपत्ति सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती है और पुरुष विवाह के बाद पत्नी के घर में रहते हैं। ये प्रणाली महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से समाज में ऊपर रखती है, जिससे वे परिवार और समुदाय में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मणिपुर में इमा मार्केट या मदर मार्केट एक प्रमुख उदाहरण है, जहां लगभग 5000 महिलाएं व्यापार करती हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा ऐसा बाजार है जिसे महिलाएं संचालित करती हैं। ये बाजार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। इस बाजार में महिलाएं हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और वस्त्र जैसी कई वस्तुओं का व्यापार करती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर त्योहारों के संदर्भ में बात की जाए तो मणिपुर का थाबल चोंगबा एक प्रमुख उत्सव है, जहां महिलाएं नृत्य और संगीत में सक्रिय भागीदारी करती हैं, जो उनके सांस्कृतिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। इसी प्रकार नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता है, जहां वे पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं।

खेलकूद के क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही हैं। मणिपुर की मैरी कॉम मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन बनी है, जो इस क्षेत्र की महिलाओं की क्षमता और दृढ़ता का प्रतीक है। उनकी सफलता ने न केवल मणिपुर

इसके अलावा असम की हिमा दास ने एथलेटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है, जिससे क्षेत्र की अन्य महिलाओं को खेल कूद में करियर बनाने की प्रेरणा मिली है। उद्यमिता के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए असम में असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं अग्रणी हैं। मिजोरम में महिला साक्षरता दर 90% तक पहुंच रही है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इस साक्षरता दर से महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रही हैं।

श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। वो उत्तर डायरी।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब पेश खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के प्रोग्राम में सामईन हम आपको सुनवा रहे हैं

जिस शख्स ने हमारी हिंदुस्तानी फिल्म सनत को कहना चाहिए कि ऐसी धुनें थी, लाजवाब धुनें थी, जिनके बारे में हम जितना जिक्र करें कम होगा, कभी उसी नौशाद अली को अपने ख्वाबों की कीमत घर छोड़कर चुकानी पड़ी थी। वालिद साहब ने साफ कह दिया था, अगर मौसीकी चुनोगे तो ये घर छोड़ना होगा। बस फिर क्या था, दिल में सुरों का जुनून लिए नौशाद अली साहब मुंबई पहुंच गए थे लखनऊ छोड़कर, लेकिन इस जादू नगरी ने उन्हें खुले दिल से नहीं अपनाया। कभी फुटपाथ पर रातें गुजारनी पड़ी तो कभी पेट भरने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। जद्दोजहद के दरमियान एक दिन वही नौशाद अली इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन गए। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प किस्सा तो तब हुआ जब उनके निकाह में जब बैंड बाजे से बारात जा रही थी तो लाउड स्पीकर पर उनका अपना ही गाना बज रहा था और उनके ससुर साहब जो थे वो काफी नाराज हो गए थे। नई पीढ़ी को बिगाड़ने वाला बता दिया था उनको, लेकिन नौशाद ने भी कह दिया था या सोच लिया था कि जब मौसीकी से उन्होंने मोहब्बत की है तो फिर डरने की जरूरत नहीं, यानी प्यार किया तो डरना क्या।

तो जनाब आज जो है वो यौम वफात है नौशाद अली साहब का, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। खूबसूरत नगमे भी आपके सुनवाए, लीडर फिल्म का नगमा आपने सुना था। और 25 दिसंबर को उनका पैदाइश यौम पैदाइश होता है। लखनऊ में आप पैदा हुए थे और उस वक्त जो हमारा मुल्क था वो आजादी की जद्दोजहद से गुजर रहा था, जो

आंदोलन थे, तरह तरह की तहरीकें थी आज़ादी के हवाले से, पूरे उरूज पर थी। और उनके जो वालिद थे वाहिद अली, वो अदालत में मुंशी थे और उनकी जो फैमिली थी वो मौसीकी को, संगीत को अच्छी नज़र से नहीं देखा करती थी। बचपन में नौशाद साहब को चूंकि इससे दिलचस्पी थी, संगीत से, मौसीकी से बहुत ज्यादा, तो वो देवा शरीफ की जो दरगाह है वहां पर कव्वालियां सुनकर अक्सर मदहोश हो जाया करते थे, महव हो जाया करते थे और घंटों वहां पर वक्त बिताया करते थे। उन्होंने लखनऊ में गुरबत अली, यूसुफ अली और बब्बन साहब जैसे असातिज़ा से, जो मौसीकी है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है हमारा, उसकी शिक्षा ली, उसकी तालीम हासिल की और उनका ये जो जुनून था मौसीकी के तई वो बढ़ता रहा। बाद में जब वो मुंबई की तरफ उन्होंने रुख किया तो रॉयल थिएटर्स में से मुंसलिक हो गए थे और वहां साइलेंट फिल्मों के लिए मौसीकी तैयार करने वाली जो टीम थी उसके साथ उन्होंने काफी अरसे तक काम किया और यहीं से बाकायदा उनकी जो मौसीकी की जो तालीम थी वो शुरू हुई, असल तालीम जिसे हम कह सकते हैं। हारमोनियम के ऊपर काफी ज्यादा कमांड थी उनको, हारमोनियम दुरुस्त करने का काम भी किया कभी किसी जमाने में। बाद में वो इंडियन स्टार थिएटर कंपनी के साथ मुंसलिक हो गए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के दौरे पर भी गए जहां उन्होंने जो इलाकाई हमारे लोक संगीत होते हैं, लोक मौसीकी की जो विरासत होती है उस पर भी काफी कमांड हासिल की और इसमें भी महारत हासिल की। और फिर उनकी जो महारत थी वो हमें नजर आई फिल्मों में जब उन्होंने म्यूजिक दिया। अभी हमने आपको जो नगमा सुनवाया था लीडर फिल्म से और अब एक बहुत ही क्लासिक नगमा सुनवाएंगे हम आपको उमा देवी की आवाज में, अफसाना लिख रही हूँ, आइए सुने। फिल्म का नाम क्या है आप ही बता दीजिएगा जनाब।

अफसाना लिख रही हूँ, किसी ने तो बता ही दिया है दर्द फिल्म का नगमा था जनाब। अच्छा एक बात है कि हमारे सुनने वाले जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी भी प्रोग्रामों में शमूलियत हो। एक शमूलियत तो उनकी हो जाती है जब वो तामिल इरशाद प्रोग्राम सुनते हैं और वहां पर उनके ईमेल्स शामिल होते हैं। मेरी बात जरा सा गौर से सुनिएगा। लेकिन बीच बीच में क्या है कि उर्दू सर्विस कुछ नए प्रोग्राम तरतीब दे रही है और ओकेजनली वो प्रोग्राम होते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों में हमने बुद्ध पूर्णिमा में के लिए प्रोग्राम दिया था, उससे पहले हमने दिया था रामनवमी पर प्रोग्राम, ईद का भी एक खसूसी प्रोग्राम दिया था, विमेंस डे पर यानी यौम खवातीन पर भी हमने एक नया प्रोग्राम तरतीब दिया था। लेटेस्ट जो था वो था बुद्ध पूर्णिमा के हवाले से, जो कि दिन में 11:30 बजे नष्ट हुआ था। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में भी हम ये चाहते हैं, हमारे अफसरान ये चाहते हैं कि आप अपनी ईमेल्स भेजें हमें और अपनी राय और मशवरे दें कि आप किस तरह के प्रोग्राम सुनना चाहते हैं या फिर किस तरह के प्रोग्राम

0: आप मिस कर रहे हैं या कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि उर्दू सर्विस नष्ट करे। अगर आप हमें ईमेल्स करते हैं, हमारे अफसरान तक वो आपकी बातें पहुंचती हैं, एक नई टीम के साथ काम शुरू करने की फिर से तवक्को है, तो फिर आप हमें उसी ईमेल पर ईमेल्स कीजिए जो कि आप तामील इरशाद के लिए भेजते हैं। सिर्फ आपको करना इतना होगा कि जैसे वहां पर आप लिखते हैं प्रोग्राम तामील इरशाद, वहां पर ये ना लिखकर उसी ईमेल आईडी पर आप भेजिए प्रोग्राम इंचार्ज उर्दू सर्विस, और उसके बाद अपनी पूरी बात लिखिए और हमें ईमेल कर दीजिए। हम आपके ईमेल्स के मुंतजर हैं। आपका फीडबैक उर्दू सर्विस को कुछ अच्छे नए प्रोग्राम तरतीब देने में मुआविन हो सकता है। और आज जो उर्दू सर्विस खराज अकीदत पेश कर रही है नौशाद साहब को, अगला नगमा सुनिए, जरा मस्त सा है, एक बिंदास स्टाइल का।
1: लागा गोरी गुजरिया से

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मुज़क़्क़र आज़म नौशाद अली के यौम वफ़ात पर अब पेश है फीचर आफताबी मौसिकी नौशाद अली, तहरीर जनाब ताबेर मिर्जा की है। इस फीचर का पहला हिस्सा इस वक्त आपकी नजर है।

0: ने कहा था कि आज रोया है बहुत, गीत सुनाने वाला, अपनी बातों से जमाने को हंसाने वाला। इसके राह में ये कौन सी मंजिल आई, आने वाला कोई मिलता है न जाने वाला।
1: फिल्मी मौसिकी के बेताज बादशाह नौशाद अली का ताल्लुक लखनऊ के एक ऐसे खानदान से था जिसमें उस दौर के दीगर मुस्लिम खानदानों की तरह मौसिकी से परहेज लाजमी तसव्वुर किया जाता था। लेकिन खानदानी रिवायत के बरखिलाफ नौशाद बचपन से ही मौसिकी के आशिक थे।

0: नौशाद को हारमोनियम मिला तो उन्हें लगा हफ्त अकलीम की दौलत उन्हें मिल गई, मौसिकी उनका ओढ़ना बिछोना बन गई थी।
1: घर वालों की नाराजगी मोल लेते हुए नौशाद ने लखनऊ के उस्ताद मौसीकारों की सोबत में उठना बैठना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने उस्ताद बब्बन अली और उस्ताद यूसुफ अली जैसे असातजाए फन से कस्बे शौक करना शुरू कर दिया।

0: बन जा।
1: याद रहे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से पहले वो उस्ताद आमिर अली खान साहब और पंडित डीवी प्लस्कर जैसे माहिरीन फन को फिल्म बेजो बावरा में पहले ही गाना गवा चुके थे। क्लासिकी मौसिकी के ये वो चांद सूरज थे जो फिल्मी मौसिकी का तस्करा भी बेइज्जती गर्दानते थे, लेकिन नौशाद की सलाहियतों के सामने उन्होंने भी सरे तस्लीम खम किया।
2: नौशाद पहले ऐसे फनकार हैं जिन्होंने फिल्मी मौसिकी को वकार और एतबार बख्शा और फिल्मी गानों में क्लासिकी मौसिकी के इस्तेमाल की खुशगवार रिवायत की बुनियाद डाली, इसे परवान चढ़ाया और इंतहाई उरूज बख्शा।

नौशाद का कोई एक नगमा ऐसा नहीं है जो किसी न किसी राग रागनी पर मबनी ना हो। सच तो ये है कि अपने नगमों से जिस कदर मकबूलियत और जो अवामी पजीराई और मकाम इफ्तिखार क्लासिकी मौसिकी को नौशाद ने दिलवाया, वो किसी और तरीके से मुमकिन नहीं था।

0: इंसाफ की बात यह है कि ये नौशाद ही की आला जर्फी थी कि उन्होंने हमेशा अपनी बेपनाह तख्लीकी सलाहियतों की कामयाबी का सेहरा क्लासिकी मौसीकी की अजमत के सर बांधा।
1: नौशाद ने जिस लखनऊ में आंखें खोली थी वो नवाब वाजिद अली शाह का परवरदा लखनऊ था, जहां रिवायती मुस्लिम तहजीब की नफासतें, कदीम हिंदू अलामतें सकाफत से गले मिलती थी। यही वजह है कि नौशाद की मौसिकी में अवधी भाषा और पूर्वी लहजे के इम्तिजाज के साथ साथ भक्ति संगीत का जितना खूबसूरत इजहार मिलता है वो किसी दूसरे मौसिकार की मीरास कभी ना बन सका।

इस तरह उस्ताद लड्डन और कल्लन वगैरह की मार्फत नौशाद को फिल्मों में मौसीकी की जरूरियात का अंदाजा हुआ। यही वो जमाना था जब नौशाद ने लखनऊ में विंडसर एंटरटेनर्स के नाम से मौसीकारों का एक बड़ा ग्रुप कायम किया और पंजाब, राजस्थान से लेकर गुजरात तक के दूर दराज के इलाकों का सफर किया और जहां जहां वो जाते थे उस इलाके की लोक धुनें, वहां के मकामी मौसीकी का आवामी सरमाया उनके तख्लीकी सरमाए का हिस्सा बनता जाता था। बाद के दौर में क्लासिकी मौसीकी और लोक संगीत का यही जमील इम्तिजाज उनके तख्लीकी खमीर की पहचान बना।

0: अब आइए एक नजर उस दौर की उनकी निजी जिंदगी पर भी डालते हैं। मस्कूरा हालात और असरात के पेश नजर मौसिकी के लिए एक तरफ तो नौशाद का जौक और शौक जुनून की सरहदों को छूता जा रहा था, दूसरी तरफ उनके घर वालों की नाराजगी भी बतदरीज बढ़ती जा रही थी। एक दिन नौशाद के वालिद वाहिद अली साहब ने गुरबत अली का दिया हुआ हारमोनियम घर के बाहर फेंक दिया और दो टोक अल्फाज में साफ साफ कह दिया कि खानदान की इज्जत या ढोल मजीरे में से किसी एक का साथ चुन लो।
1: नौशाद ने बिना किसी चूं चरा के खामोशी से अपना हारमोनियम उठाया और मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गए।
2: मेरे वालदैन मौसीकी के खिलाफ थे, तो एक रोज ऐसा दिन आया कि उन्होंने कहा वालिद साहब ने कि आज फैसला करो कि मौसीकी चाहिए या घर चाहिए। तो मैंने कहा घर आपको मुबारक, मौसीकी मुझे दे दीजिए। तो मैंने घर छोड़ दिया था, 17 बरस की उम्र थी मेरी।
0: मुंबई आने के बाद नौशाद को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। वो पहले उस्ताद झंडे खां और फिर बाद में मौसिकार रफीक अजनबी के मुआविन बने। कई कई वक्त फाका किया, यहाँ तक के फुटपाथ पर भी सोए। बाद के दौर में रफ्ता रफ्ता लगातार मेहनत और लगन से अपनी जगह बनाई और आखिरकार खेम चंद प्रकाश के मुआविन के तौर पर अपना पहला भजन कंपोज किया।

0: आखिरकार आजमाइशों के दौर का इख्तिताम खुश आइंद उम्मीदों की बहार लेकर तब आया जब एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर नौशाद की पहली फिल्म प्रेम नगर सन 1938 में आई। इसके बाद नई दुनिया, माला, शारदा, दर्शन और स्टेशन मास्टर जैसी फिल्में मंजरेआम पर आईं।
1: नौशाद को पहली बड़ी कामयाबी सन 1944 में आई फिल्म रतन से मिली। उसके कुछ अरसे बाद जिस कदर मकबूलियत उनकी फिल्म अनमोल घड़ी को हासिल हुई वो उनसे पहले किसी मौसिकार को कभी नसीब नहीं हुई।

0: जाती, क्योंकि लड़की वालों को तो ये बताया गया था कि उनका होने वाला दामाद ड्रेस डिजाइनर है, यानी कि फिल्मों के लिए पोशाकें तैयार करता है।
1: वतन मेरी रिलीज हो चुकी थी, 1944 की बात है, और उससे पहले कई फिल्में आ चुकी थी, इन्हें मैं नौशाद बन चुका था। लखनऊ जब पहुंचा तो मेरी वालदा ने कहा, तुम्हारी शादी जहाँ ठहराई है वो सब इन्हें सूफी कसम के लोग हैं, मजहबी लोग हैं, वो म्यूजिक को बुरा समझते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं। मैंने उनसे कहा है कि तुम दर्जी का काम करते हो। मैं गया भाई शादी के लिए, बारात गई तो इत्तेफाक से उस वक्त तो फिल्म हमारी वहां भी चल रही थी लखनऊ में, तो गली गली वो गाने गाए जा रहे थे, तो हमारी शादी में भी बैंड बजाने वाले जो आ रहे हैं वो मेरे ही गाने बजा रहे हैं और मैं दर्जी बना बैठा हुआ था।

0: अभी आप सुन रहे थे जनाब ताबिर मिर्जा का तहरीर करदा ये फीचर आफताबे मौसिकी नौशाद। नौशाद अली पर फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा आज दिन में 3:30 पर नशर किया जाएगा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत ने मुत्तहिदा अरब इमारात के फुजैरा में हमले की मजम्मत की है जिसमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। भारत ने मगरबी एशिया में अमन बहाल करने के लिए मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया है। वियतनाम के सदर तोलाम आज से भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर रहेंगे। अमरीका ने ईरान के एक मालबरदार बहरी जहाज के हमले के बकिया 22 अहलकारों में से 15 को छोड़ दिया है। वस्ती चीन के हुनान सूबे में आतिशबाजी के सामान के कारखाने में

ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरान से किए गए एक ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई। पिछले महीने नाफिज की गई जंगबंदी के बाद से मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके में ये इस तरह का पहला हमला है, जिससे काफी नुकसान हुआ। वहां के हुक्काम ने ये जानकारी दी है। मालूम हुआ है कि इस वाकये में 3 भारतीय शहरियों को कुछ जख्म आए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अबूजबी में भारतीय सिफारत खाने ने बताया है कि वो मुतासर अफराद की खैर आफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी हुक्काम के साथ राबता कायम किए हुए है। भारत ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में फुजैरा पेट्रोलियम सनती जोन पर हमला नाकाबिले कबूल है, जिसमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। एक बयान में वजारत खारजा ने फौरी तौर से लड़ाई रोके जाने पर जोर दिया है और सिविलियन बुनियादी ढांचे और बेकसूर आम शहरियों को निशाना बनाए जाने की मजम्मत की है। वजारत ने कहा है कि भारत सूरत हाल से निपटने के लिए मुजाकिरात और डिप्लोमेसी की वकालत करता रहा है ताकि मगरबी एशिया में अमन इस्तेहकाम बहाल हो सके। भारत ने बैन अलाकवामी कवानीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज के रास्ते बिला रुकावट जहाजरानी और तिजारत पर भी जोर दिया है। मगरबी एशिया के मुल्कों और इलाकाई तंजीमों ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर ईरान के हमले की मजम्मत की है और कहा है कि इन हमलों से कशीदगी बढ़ने का इशारा मिलता है, जिससे इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की और ईरान के हमलों की मजम्मत की। उधर उर्दून की वजारत खारजा ने एक बयान में इन हमलों को मुत्तहिदा अरब इमारात के इक्तदार आला की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। कतर ने भी इसी तरह का बयान जारी किया है। अरब मुल्कों की लीग और खलीजी तआवुन काउंसिल ने भी ईरान के हमलों की मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को तारीखी और बेमिसाल करार दिया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के अवाम और पार्टी कारकुनों के तहत तशक्कुर का इजहार किया है। चुनाव नतीजों के बाद कल शाम दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकारें 20 से ज्यादा रियासतों में इख्तदार में हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी का मंत्र है अवाम भगवान है और पार्टी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि इसलिए लोग पार्टी में और ज्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के लिए एक नई सुबह का आगाज हुआ है और अवाम ने मुल्क की अजीम जमहूरियत और कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। इधर बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने भी बीजेपी और एनडीए में फिर से अपने एतमाद का इजहार करने पर चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के अवाम के तहत तशक्कुर का इजहार किया। अमरीका में आबाद भारत निजात अमरीकी रहनुमाओं ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है और इसे अवाम की तारीखी हिमायत से ताबीर किया है और इसे रियासत में हुक्मरानी, सिक्योरिटी और तरक्की का एक नया दौर करार दिया है। भारत निजात मुमताज अमरीकी डॉक्टर भारत बराई ने इन नतीजों को रियासत के अवाम की बड़ी कामयाबी करार दिया है और ये इल्जाम लगाया है कि साबिका सरकार ने तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए एक माफिया निजाम कायम कर रखा था। वियतनाम के सदर तोलाम भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आज बिहार में गया पहुंच रहे हैं। उनके हमरा आला सतह का एक वफ्द भी भारत आ रहा है, जिसमें कई वजीर और सरकार के सरकर्दा ओहदेदार निज कारोबारी वफ्द भी शामिल है। वियतनाम के सदर आज बाद में नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। कल राष्ट्रपति भवन में उनका बाजाब्ता इस्तकबाल किया जाएगा। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वियतनाम के सदर तोलाम के साथ वसीतर मौजूदात पर बातचीत करेंगे। इसमें दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई नीज बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। शाम को जनाब तोलाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने ईरान के एक मालबरदार बहरी जहाज के अमले के बकिया 22 अहलकारों में से 15 को छोड़ दिया है। अमरीका ने पिछले महीने इस बहरी जहाज को अपने कब्जे में लिया था। ईरान के परचमबरदार बहरी जहाज तोस्का को ईरान की जनूब मशरकी बंदरगाह चाबहार के साहिल के नजदीक खलीज ओमान में 19 अप्रैल को अमरीकी फोर्सेज ने इसमें सवार होकर इस पर कब्जा कर लिया था।
ایران کی جہاز رانی کو نشانہ بناتے

0: हुए अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी के तहत ये कार्रवाई की गई थी। आबनाए हुरमुज में कशीदगी बढ़ती जा रही है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे को फिर से वार्निंग दी है और फौजी कार्रवाई का दावा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तंबीह की है कि अगर ईरान ने अमरीका के बहरी जहाजों को निशाना बनाया तो उसे संगीन मुजमरात का सामना करना होगा। मुत्तहिद अरब इमारात पर ईरान के हमले की इत्तलात के तनाजुर में उनकी यह वार्निंग सामने आई है। वस्ती चीन के हुनान सूबे में आतिशबाजी के सामान के एक कारखाने में धमाका होने से 21 अफराद की मौत हो गई जबकि 61 जख्मी हुए। बचाव कार्रवाई में 480 से ज्यादा एहलकारों पर मुश्तमिल 5 टीमों को लगाया गया था। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और दूसरे दौर की तलाश की कार्रवाई जारी है। ऑस्ट्रिया ने रूस के सिफारतकारों को जासूसी के इल्जाम पर मुल्क से निकाल दिया है। ऑस्ट्रिया की वजीर खारजा बेट मैनल रेसिंगर ने कहा कि ये सिफारतकार जो पहले ही मुल्क छोड़ चुके हैं मालूमात इकट्ठा करने के लिए सिफारती इमारतों की छतों पर नस्ब एंटीना का इस्तेमाल करते थे। रूसी सिफारतखाने का कहना है कि वह ऑस्ट्रिया के हुक्काम की जानिब से किए गए इस ताजा तरीन गैर दोस्ताना इकदाम को मुकम्मल तौर पर गैर मुनसिफाना खालिसतन सियासी मोहरिकात का हामिल और नाकाबिले कबूल करार देते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में तेल की आलमी कीमतों में कुछ गिरावट आई है जबकि कल इन कीमतों में तेजी के साथ उछाल देखने में आया था। जुलाई डिलीवरी के लिए ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.6% कम होकर $113.77 की सेंट फी बैरल पर आ गई। इधर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत 1.35% कम होकर $105.06 फी बैरल पर आ गई। भारतीय सहाफियों आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा को भारत में साइबर जराइम को बेनकाब करने के एक आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए अहम पुलित्जर इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है। इन सहाफियों को ब्लूमबर्ग के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए मजगूरा इनाम से सरफराज करने का ऐलान किया गया है। प्यूलिट्ज़र प्राइज अमरीका में सहाफत का आला तरीन अवार्ड है जो कोलम्बिया यूनिवर्सिटी की सहाफत के ग्रेजुएट स्कूल के जेर इंतजाम दिया जाता है। रूस की वजारत दिफा ने दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी की शिकस्त की 81वीं सालगिरह के मौके पर यूक्रेन में रवा माह की 8 और 9 तारीख को एकतरफा जंगबंदी का ऐलान किया है। मॉस्को ने खबरदार किया है कि अगर कीव ने यौम फतह की तकरीबात में खिलाफवर्जी की कोशिश की तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। इस ऐलान के जवाब में यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन कल आधी रात से जंगबंदी पर अमल करेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने मुत्तहिद अरब इमारात के फुजैरा में हमले की मजम्मत की है जिसमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। भारत ने मगरबी एशिया में अमन बहाल करने के लिए मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया है। वियतनाम के सदर तोलाम आज से भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर रहेंगे और अमरीका ने ईरान के एक मालबरदार बहरी जहाज के हमले के बकिया 22 एहलकारों में से 15 को छोड़ दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। बेशक खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में ये नगमा अभी आपने सुना प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले और अनवर की आवाजों में है। फिल्म है साथ साथ। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये नगमा भी अपने खेल खेल में फिल्म से सुना। अगली पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में जानी दुश्मन फिल्म से है।

हीरा पन्ना फिल्म का नगमा आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अब सुनिए अमित कुमार और आशा भोसले को फिल्म है बातों बातों में।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हो गया है। तारीख साज प्रोग्राम का मौजू है अल बरूनी।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज मौजू था एल बरूनी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम

आपने सुना अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार को फिल्म थी भूल भुलैया 2, और अब सुनिए शान और साधना सरगम को, फिल्म का नाम है हंगामा।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा था मुझसे शादी करोगी फिल्म से। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से आलमी खबरें सुनिए। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के फुजैरा में हमले की मजम्मत की है जिसमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। भारत ने मगरबी एशिया में अमन बहाल करने के लिए मुजाकरात और सफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया है। वियतनाम के सदर तोलाम आज से भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर रहेंगे। अमेरिका ने ईरान के एक मालबरदार बहरी जहाज के अमले के बकिया 22 अहलकारों में से 15 को छोड़ दिया है। वस्ती चीन के हुनान सूबे में आतिशबाजी के सामान के एक कारखाने में धमाका होने से 21 अफराद की मौत हो गई जबकि 61 जख्मी हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जासूसी के इल्जाम में रूस के 3 सिफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया है। रूस ने इसे सियासी अगराज पर कारफरमा कदम करार दिया है। और भारतीय साफियों आरके आनंद और सुपर्णा शर्मा को साइबर जराइम को बेनकाब करने के लिए अहम पुलिट्जर इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है। अब खबरें तफसील से। फुजैरा आयल इंडस्ट्री जोन में ईरान से किए गए एक ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई। पिछले महीने नाफिज की गई जंगबंदी के बाद से मुत्तहिदा अरब अमीरात के इलाके में यह इस तरह का पहला हमला है जिससे काफी नुकसान हुआ।

0: The BJP has appointed senior party leader and Union Minister Amit Shah as central observer for the election of the leader of the Legislative Party in West Bengal. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has been appointed as the central co-observer in the state, while Union Minister JP Nadda has been appointed as central observer for the election of the leader of the Legislative Party in Assam. Haryana Chief Minister Naib Singh Saini has been appointed as central co-observer in the state. These names were approved by the BJP Parliamentary Board for central observers. In Bihar, 12 people lost their lives in separate incidents of storm, rain and lightning yesterday. 5 deaths were reported from East Champaran district, 4 from Aurangabad and 3 from Gaya district. Chief Minister Samrat Chaudhary has expressed deep grief over the incidents. The India Meteorological Department, IMD, has forecast light to moderate rainfall with thunderstorms, lightning and gusty winds over Madhya Pradesh, Vidarbha and Chhattisgarh during the next 2 days. Parts of Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Gangetic West Bengal are expected to experience similar conditions today. In IPL cricket, host Delhi Capitals will face Chennai Super Kings at Arun Jaitley Stadium this evening. The match will begin at 7:30 this evening. Last night, hosts Mumbai Indians defeated Lucknow Super Giants by 6 wickets at Wankhede Stadium. Chasing the target of 229 runs, Mumbai Indians overhauled the score in 18.4 overs at the loss of 4 wickets. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah resulting in injuries to 3 Indian nationals, calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. US and Iran launch fresh attacks in the Gulf as the two sides wrestle control over Strait of Hormuz. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Jamaican counterpart. Kamina J. Smith calls for stronger economic ties between the two countries. Political activities begin for government formation in West Bengal, Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly poll results. Education Minister Dharmendra Pradhan emphasizes need to transform India's research ecosystem. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीतिक आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार।

0: कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में सम्पन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉ जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसफ विजय की पार्टी तमिलका विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
3: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी नीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। यूडीएफ सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वी डी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
6: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
1: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
7: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
1: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
2: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने अमरीका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की, जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में

0: में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किये। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है एक ही कलाकार। आदाब सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए मेरा खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रैना तंवर, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें होगी उस महान कलाकार से जुड़ी दिलचस्प बातें, किस्से और गीतों की बहार। तो इस आधे घंटे के फिल्मी सफर में बने रहिए मेरे साथ। और आज जिस महान कलाकार की बात होगी वो थे हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हिंट तो मिल ही गया, बस जल्दी से मेल करें हमारे इस ईमेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं रहना अपने शो में आपसे करवाती हूं गेस, यानी कि गीत सुनकर किस कलाकार की आज बातें होंगी वो मेल करके जो हमें सबसे पहले संदेश भेजेगा वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता होगा। तो इंतजार रहेगा आपके संदेशों का, सुने और जल्दी से बताएं कि हम किस कलाकार को आज लेकर आए हैं।

जी हाँ, अभी हमने सुना फिल्म अनमोल घड़ी नूरजहां की आवाज का ये खूबसूरत नगमा। और देखते ही देखते हमारे पास ढेर सारे संदेश आ गए। क्या बात है, मन कर रहा है आज सभी को हमारे फेवरेट श्रोता का खिताब दे दूं। मगर कहते हैं ना, फास्टेस्ट मेल, जैसे हम गेम खेलते हैं फास्टेस्ट फिंगर का, ऐसी मैंने फास्टेस्ट मेल मैसेज जिसने पहले दिया उसका नाम बताना तो बनता है। वो है हमारे आज के फेवरेट श्रोता सुदर्शन मुखी जी, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रसिद्ध संगीतकार जिनकी पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने साज से जादू बिखेरते रहने के बावजूद 67 फिल्मों में ही उन्होंने संगीत दिया। लेकिन कहते हैं ना, आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं नौशाद अली साहब। बेशक फिल्म संगीत देने की गिनती उतनी ना हो, मगर कहते हैं ना, इनकी कौशल, इनके संगीत की जो कौशल थी, इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या बल से कहीं आगे होती है, जो हर दिल पर राज कर जाती है। और ये उनमें से एक प्रसिद्ध संगीतकार रहे। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे हमारे श्रोता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सुनते हैं ये अगला नगमा इनकी प्यारे से गीत के साथ।

जी, नौशाद जी का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में मुंशी वाहिद अली जी के घर हुआ। 17 साल की उम्र में ही वो अपनी किस्मत आजमाने मुंबई कूच गए थे। शुरुआती संघर्षपूर्ण दिनों में उन्हें उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां और उस्ताद झंडे खां और पंडित खेमचंद्र प्रकाश जैसे गुणी उस्तादों की सोहबत नसीब हुई। और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज सिंह जी ने हमें मैसेज किया है और राजेश वर्मा जी ने भी हमें मैसेज किया और सुदर्शन मुखी जी ने तो हमें मैसेज करके सही जवाब दिया। राजकुमार दूदी जी ने भी हमें गांव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार हुडी, प्रमोद कुमार हुडी जी ने, और इसी तरीके से शमशाद बेगम जी हिंगोली महाराष्ट्र से, शाह जी, श्रीमती नंदा बोखड़े, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए। और सुनते हैं हमारा अगला ये नगमा।

हाँ, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आपकी सुन रहे हैं एक ही कलाकार, और हम कलाकार लेकर आए हैं नौशाद साहब जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हमेशा की तरह परिकल्पना करवाती है आपकी दोस्त और होस्ट रैना दवर। दोस्तों, नौशाद जी को पहली बार स्वतंत्र रूप से 1940 में प्रेमनगर में संगीत देने का मौका मिला, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1944 में प्रदर्शित हुई रत्न से, जिसमें जोहराबाई अनबोल वाली अमीरबाई कर्नाटकी, करण दीवान और श्याम के गए गीत बहुत लोकप्रिय हुए। और बस यहीं से शुरू हुआ कामयाबी का एक ऐसा सफर जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। और हमें इसी तरह से बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, जो हम खुश नसीब हैं कि आप सब हमें मैसेज कर रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। चिरमय कुरासिया कालरी से इंद्रभान, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सरोहर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंदी लहरे। और उसी तरीके से हमें जसबीर सिंह जी ने भी मैसेज किया है, अरोड़ा जी ने, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने भी हमें मैसेज किया है, इशक मोहम्मद जी ने भी हमें मैसेज किया है, और आफरीन कौसर, खतीजा बेगम और नीलोफर फातिमा, पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में। और अब हम बता रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं तो एक सॉन्ग तो बनता है।

0: से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ।
1: जी हाँ, हम भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं और देखो हमारे श्रोता भी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि सभी हमें मैसेज कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं और हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है वो भी हमें लिखकर भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमें हीरामणि वर्मा जी भेज रहे हैं, भाटापारा से मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चिरमणि कुरासिया कालरी से, इंद्रभान अनुभव, ऋषभ राम सरोहर सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे ने भी हमें मैसेज किया है। और पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश जी, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघा गुप्ता जी हमें मैसेज कर रहे हैं। और इस तरीके से लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप और गुरनूर सिंह और गुरनाल सिंह और अविराज सिंह जी ने भी हमें मैसेज किया है। धर्मेंद्र छिप्पा जी ने भी हमें मैसेज किया, कपिल छिप्पा, ईशान छिप्पा और पूजा परिहार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही कलाकार आज चर्चा इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं नौशाद जी की, तो अंदाज आन, मदर इंडिया, अनमोल घड़ी, बेजू बावरा, मुगले आजम, दिल लगी, धर्म कांटा, पाकिजा, साज और आवाज, गंगा जमुना, राम और श्याम, मेरे महबूब और ना जाने ऐसी कई खूबसूरत फिल्मों में उन्होंने अपने संगीत का जादू ऐसा बिखेरा कि लोग आज भी झूमने पर ना मजबूर हो जाते हैं।

ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि नौशाद साहब न केवल एक संगीतकार थे बल्कि एक उनमें एक शायर भी बसता था और उनका दीवान आठवां सुर नाम से प्रकाशित हुआ। उनका लखनऊ से बेहद लगाव था, इससे उनकी खुद की इन पंक्तियों से समझा जा सकता है। पंक्तियां हैं, रंग नया है लेकिन घर ये पुराना है, ये कोचा मेरा जाना पहचाना है, क्या जाने क्यों उड़ गए पंछी पेड़ों से, भरी बहारों में गुलशन वीराना है।

और हमारे पास बहुत सारे मैसेज, मेरठ से दर्शन और कविता गौड़ जी का हमें मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप मक्कर जी ने हमें पंजाब से, जलंधर से मैसेज किया है,

स्वर्ण सिंह जी, पंजाबी नावलकर और धर्मेंद्र छिप्पा, प्रकाश वर्मा जी ने हमें मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस वर्मा, निखिल यशस्वी, और उसी तरीके से संदीप मक्कर जी, मन्नत वही गांव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार हुड्डी, प्रमोद कुमार जी, सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन शांतिनगर से, और संदीप मक्कर जी का फिर, और ऋषि कपूर, संजय साहू पोटिया काला दुर्ग से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए। और हमारा समय अब कह रहा है कि अलविदा लेना पड़ेगा। तो 5 मई आज के दिन सन 2006 को इन दुनिया को अलविदा कह गए नौशाद साहब को हमारा शत शत नमन। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे नागरिक बने। घटना स्थल पर घटनाएं पीड़ित की वीडियो ना बनाकर बेहतर रहेगा कि उसकी मदद करें, एक अच्छा काम करें जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट। तो जाते जाते रैना तबर को दीजिए इजाजत, अगले कार्यक्रम किस्सों और गीतों के साथ सुनते रहे आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे तो।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर। अब समय हो हमारे अगले कार्यक्रम, स्पॉन्सर्ड एनसीईआरटी कार्यक्रम उमंग।

3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। सपहर 3:30 आफ्ताब मौसीकी। मारूफ मौसीकार नौशाद अली की बरसी के मौके पर उनके फन और शख्सियत के हवाले से इस फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा आप समाप्त करेंगे। शाम 4

4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये थे एक मुख्तसर तारुफ़ से मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब अमारात के इलाके फुजैरा में हमलों की मजम्मत की है, जिनमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए हैं। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में अमन इस्तेहकाम बहाल करने के लिए मुज़ाकरात और सफारती कोशिशों के लिए कहा है। अमरीका और ईरान ने खलीज में ताज़ा हमले किए हैं, दोनों ही ममालिक आबनाए हुरमूस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉ एस जयशंकर ने जमैका की अपनी मनसब कैमिना जे स्मिथ से बातचीत की। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तर इक्तसादी रिश्तों के लिए कहा। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इख्तला पर मबनी नतायज हासिल करने के लिए भारत के तहकीक से मुतालिक इको निज़ाम को यकसर तब्दील करने की जरूरत पर जोर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब अमारात के फुजैरा में किए गए हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिनमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा है कि शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि भारत मुत्तहदा अरब अमारात के साथ एकजहती का इजहार करता है। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि सभी मामलात बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए बुरम तरीके से हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने इस जरूरत को उजागर किया कि अबनाए हुरमूस से बिना रुकावट और महफूज जहाजों का गुजरना इलाकाई अमन इस्तेहकाम और आलमी सतह पर तवानाई की फराहमी के लिए जरूरी है। कल ईरान की जानिब से किए गए एक ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन में आग लगने की वजह से 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए थे। इससे पहले वजारत खारजा ने भी मुत्तहदा अरब अमारात में किए गए हमले की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अमरीका और ईरान ने खलीज में एक दूसरे पर ताज़ा हमले किए हैं, जिससे आबनाए हुरमूस पर कंट्रोल के सिलसिले में कशीदगी में इजाफा हो गया है और जंगबंदी के मुआहदे को नुकसान पहुंचा है। अमरीकी बहरिया के 2 गाइडेड मिसाइल शिकन हथियार आबनाए हुरमूस को कामयाबी से पार करके खलीज अरब में दाखिल हो गए। यह मिसाइल लगातार और तालमेल के साथ की जाने वाली ईरानी गोलाबारी के बावजूद इस इलाके में दाखिल हो गए, जिससे अमरीका के प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन का आगाज हो गया है। बल्कवामी मालियाती फंड ने कहा है कि अगर मगरबी एशिया में लड़ाई 2027 तक जारी रहती है तो आलमी मईशत को इसके संगीन नतायज का

सामना करना पड़ सकता है, जिनमें तेल की कीमतें तकरीबन $125 फी बैरल तक बढ़ने का अंदेशा है। बिलकवामी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जोरगीवा ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें $100 या उससे ऊपर पहुंच गई हैं और इफ़रात ज़र के दबाव में भी इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ारिजा और डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि तरक्याती तआवुन भारत और जमैका के दरमियान शराकत दारी का एक अहम सतून है। डॉक्टर जयशंकर जमैका की वज़ीर ख़ारिजा कैमिना जॉनसन स्मिथ और दिगर काबीना रकान के साथ अपनी मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि यह बातचीत जामे और ठोस रही, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया गया और तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के नए मौके की निशानदेही की गई। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने बहुत से अहम माहदों पर दस्तखत किए और डिजिटल तब्दीली, सकाफती तबादले, खेलकूद और डिजिटल अदायगियों जैसे शोबों में हाल ही में किए गए मुफाहमत नामों पर मौसर अमल दरामद पर बातचीत की गई, ताकि इस सिलसिले में ठोस नतायज हासिल किए जा सकें। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के शहर किंगस्टन में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में दुनिया की बदलती हुई सूरतेहाल और भारत के रद्द अमल के मौजू पर इजहार ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने आलमी जुनूब, इस्लाह शुदा कसीर जहती निज़ाम और कसीर कुतबी निज़ाम से मुतालिक मामलात पर तबादले ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने मुल्क में तहकीक और इख्तरा का एक मजबूत इको निज़ाम तैयार करने के हुकूमत के अज़्म का एक बार फिर इआदा किया है। आज नई दिल्ली में आईआईटी मद्रास टेक समिट से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने इख्तरा पर मबनी नतायज हासिल करने के लिए भारत के तहकीक से मुतालिक इको निज़ाम को यकसर तब्दील करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तहकीक का काम महज पीएचडी, थीसिस और तालीमी अशातों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके तहत ऐसी ठोस इख्तराआत होनी चाहिए जिनसे समाज को फायदा हो। उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत ने सनत, स्टार्टअप्स और तालीमी इदारों के लिए मुख्तलिफ इकदामात के जरिए मदद देने के मकसद से तहकीक और तरक्की के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि भारत इख्तरा का एक मरकज बनकर उभरा है, जिसमें स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ है। पहले यह तादाद महज चंद सौ थी, लेकिन हालिया वर्षों में यह तादाद बढ़कर 2,50,000 से ज्यादा हो गई है। उमर ख़ारिजा के वजीर ममलकत कीर्तिवर्धन सिंह ने फिलीपींस के माइग्रेंट वर्करों के महकमे के सेक्रेटरी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब सिंह ने बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने मोबिलिटी और माइग्रेशन से मुतालिक मुश्तरका मामलात पर इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। अमरीका में आबाद भारत नजाद अमरीकी रहनुमाओं ने मगरब बंगाल में बीजेपी की कामयाबी का खर मतम किया है और इसे आवाम की तारीखी हिमायत से ताबीर किया है और इसे रियासत में हुक्मरानी, सिक्योरिटी और तरक्की का एक नया दौर करार दिया है। भारतीय सहाफियों आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा को भारत में साइबर जराइम को बेनकाब करने के एक आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए अहम पुलित्ज़र इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है। इन सहाफियों को ब्लूमबर्ग के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए मस्कुरा इनाम से सरफराज करने का ऐलान किया गया। पुलित्ज़र प्राइज अमरीका में सहाफत का आला तरीन अवार्ड है, जो कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के सहाफत के ग्रेजुएट स्कूल के ज़ेर एहतमाम इंतजाम दिया जाता है। कोलंबिया के कुंडिना मार्का सूबे में कोयले के कान में धमाके के बाद कान में काम करने वाले 9 वर्कर्स हलाक और 6 दिगर जख्मी हो गए। ये धमाका ला किस्कुदा कान में हुआ। कान कनिस से मुतालिक एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि ऐसा लगता है कि हादसा मीथेन समेत मुख्तलिफ गैसों के जमा हो जाने की वजह से हुआ है। वस्ती चीन के हुनान सूबे में आतिशबाजी के सामान के कारखाने में धमाका होने से 21 अफराद की मौत हो गई, जबकि 61 जख्मी हो गए।
پاکستان میں گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے سندھ صوبے

0: कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: जरा।

0: ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री रेडियो पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। आफताबे मौसीकी। मारूफ मौसीकार नौशाद अली के बरसी के मौके पर फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनिए।
1: सन 1954 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा ने नौशाद की मौसीकी को ऐसी बेमिसाल बुलंदियों तक पहुंचाया जिसने उन्हें मौसीकी की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। इस फिल्म की कामयाबी से फिल्मों की तारीख का वो मुख्तसर दौर शुरू होता है जिस दौर में फिल्म की मौसीकी कामयाबी की जमानत समझी जाने लगी थी। इस फिल्म ने साबका कामयाबियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज भी इस फिल्म के गाने शायकीन के दिलो दिमाग में महफूज हैं।

0: अपने करियर के दौरान नौशाद ने मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर और सुरैया जैसे गुलकारों से सुरों के इंतहाई उतार चढ़ाव वाले निहायत पेचीदा कलाकारी वाले गाने जिस खूबसूरती से गवाए हैं, उसने फिल्मी मौसीकी को न सिर्फ नए रुझाना से मुतारिफ किया बल्कि नगमगी के मेयारे हुस्न का संगे मील बना दिया।
1: यहाँ पर इस हकीकत का एतराफ भी लाजमी है कि लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, तलत महमूद और सुरैया जैसे गुलोकारों को मुतारिफ कराने का काम और उनके फन को सजाने संवारने का फरीजा भी और किसी ने नहीं बल्कि नौशाद ने ही अदा किया था। और उनकी इस देन के लिए फिल्मी मौसिकी गालिबन हमेशा उनकी मकरूज रहेगी।
2: बेचारे खड़े हुए थे दुबले पतले, हाथ बांधे हुए, तो मैंने कहा भाई कुछ सुनाइए, तो उन्होंने कुछ सुनाया, मैंने कहा कि ठीक है। उस वक्त एक कोरस गाना था हिंदुस्तान के, हमें हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा, ये गाना था। मैंने कहा इसमें कोरस में आप गाइए, 10 रुपए दिए थे कोरस में उनको, गाने गवाए थे, एक लाइन उनसे भी गवाई थी। फिर वो कहने लगे कि साहब वो शहजहां उस वक्त बन रहा था फिल्म, उसमें कुंदन लाल सहगल थे, तो मुझसे कहने मेरी हसरत है कि वक्त का बेहतरीन सिंगर माना जाता है कुंदन लाल सहगल के, एक लाइन इनके साथ अगर गा लूं तो जिंदगी में कहने का मौका मिलेगा कि मैंने इतने अजीम सिंगर के साथ भी गाया। तो उसमें आखिर में एक फकीर गाता आ रहा है, मेरे सपनों की रानी रूही रूही, वो रफी की आवाज।

0: नौशाद ने जिस दौर में मुंबई में काम करना शुरू किया, उस दौर में गानों की रिकॉर्डिंग रात में सुनसान इलाकों के पार्कों और बागों वगैरह में की जाती थी, ताकि शोर या इधर उधर की आवाजें रिकॉर्डिंग में ना आ सके।
1: एक फनकाराना खासियत नौशाद की मौसिकी में ये भी है कि वो गाने के सुरों को अलग अलग सतहों पर रिकॉर्ड करते थे और मंजर की जरूरत के हिसाब से फिल्म में हसबे जरूरत इस्तेमाल करते थे।

0: नौशाद हिंदुस्तानी फिल्मों के पहले ऐसे मौसीकार थे जिन्होंने साउंड रिकॉर्डिंग की तकनीक का तख्लीकी इस्तेमाल इंतहाई कामयाबी के साथ किया। वो गानों को अलग अलग सुरों में सजाते थे और हमेशा इस बात के लिए कोशा रहते थे कि प्लेबैक तकनीक को और मौसर कैसे बनाया जाए। एक और काबिल जिक्र बात नौशाद की मौसीकी की यह है कि उन्होंने पहली मरतबा बांसुरी, क्लैरिनेट, सितार, मैंडोलियन का मिला जुला इस्तेमाल फिल्मों में राइज किया।
1: हमारे कौशिक साहब रिकॉर्डिस्ट थे, अल्लाह बख्शे और नहीं रहे, वो कहने भाई कैसे रिकॉर्ड करोगे, इतने तुम साज लिया है। मैंने घबराइए नहीं, हो जाएगा। तो मैंने कहा ये शूटिंग के स्टूडियो में हम करेंगे रिकॉर्डिंग। तो उन्हें पतरे का साउंड कैसे, ये तो मेटेलिक साउंड आएगा। तो हमने कहा घबराइए नहीं, मैंने कंबल का एक तंबू बनाया वो स्टूडियो का साइज का, और काथा नहीं होता काथा बांध के जैसा कारपेट पूरा बिछाया वहां, और एक कंबल का तंबू बना के उसमें हमने कहा अब यहाँ म्यूजिशियन बैठेंगे। मैंने कहा देखो अभी मेटेलिक साउंड नहीं है तो खराब है, आइडिया अच्छा है। फिर हमने ये तंबू वाला एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि आप ये समझिए, आपको ताज्जुब होगा कि पूरे मुगले आजम की रिकॉर्डिंग हमने इसी तरह तंबू में की, मदर इंडिया की रिकॉर्डिंग तंबू में की।

मुगले आजम की शूटिंग के दौरान एक दिन के आसिफ ने नौशाद से शीश महल के मशहूर सेट वाली इंतहाई पेचीदा अक्सबंदी के बारे में तबादला ख्याल किया। नौशाद ने खुद अपनी आंखों से इस सेट को बनते देखा था और वो बखूबी इस बात से वाकिफ थे कि किस तरह फिरोजाबाद से बुलाए गए माहिर कारीगरों ने एक साल की जाफिशानी के बाद इस सेट को बनाया था। नौशाद ने सोचा, शीश महल के इतने शीशों के ऐन दरमियान जब अनारकली रक्स करते हुए गाएगी तो इस नगमे में एक खास गूंज और खनक आनी लाजमी है।

मुगले आजम के इस गाने में नौशाद ने 100 गुलोकारों की आवाज का इस्तेमाल किया ताकि इस नगमे में कोरस की तकनीक को आवाम के इज्तिमाई जज्बात की अलामत बनाया जा सके।

0: लता मंगेशकर ने इब्तदाई दौर से जिस कदर मेहनत और मुकम्मल वाबस्तगी से नौशाद की जेर हिदायत गाने गाए हैं, उसकी कोई दूसरी मिसाल मिलनी खासी मुश्किल है।
1: फिल्मी नाकदीन का कहना है कि लता मंगेशकर ने जिन फनी बुलंदियों को अपने इब्तदाई काम से ही छूना शुरू कर दिया था, उसमें नौशाद की मौसिकी, उनकी बनाई धुनों और उनकी रहनुमाई का एक अहम किरदार रहा है।
0: दरहकीकत लता मंगेशकर के बेहतरीन उर्दू तलफ्फुज और अदायगी अल्फाज की तहजीब का सेहरा भी नौशाद से कस्ब फैज का समर है, क्योंकि उन्हीं के मशवरे से लता मंगेशकर ने उर्दू जबान सीखी और अपनी गायकी को मेराज फन की लामिसाल रिफतों तक पहुंचाया।

0: नौशाद आमतौर से एक फिल्म की मौसीकी में एक साल का वक्त लगाते थे। कभी कभी तो एक गाने की रिकॉर्डिंग 15 या 20 बार में करते थे। यही वजह है कि 62 साल के तवील अरसे तक दिन रात काम करने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 66 फिल्मों में ही मौसीकी दी।
1: और फिर वो यादगार दिन भी आया जब मौसीकी के मैदान में उनकी लाजवाल खिदमात के लिए उन्हें फिल्मों के सबसे बड़े एजाज यानी दादा साहब फाल्के इनाम से सरफराज किया गया।
0: दादा साहब फाल्के इनाम के अलावा उन्हें पद्म विभूषण, अमीर खुसरो इनाम और संगीत नाटक अकादमी इनाम जैसे लातादात एजाजात से भी नवाजा जाता रहा।

0: 86 साल की उम्र में जब उन्होंने फिल्म ताजमहल के गानों की तर्ज बनाई तो उन्होंने बुजुर्ग तरीन फिल्मी मौसिकार का रिकॉर्ड भी कायम किया था, जो दर हकीकत आज तक कायम है।
1: फिल्म ताजमहल के गानों की तर्ज बनाने के एक साल के बाद यानी 5 मई सन 2006 को जहाने मौसीकी का ये सूरज गुरूब हो गया।

0: एक फिल्मसाज के तौर पर उन्होंने बाबुल, मालिक और उड़न खटोला जैसी फिल्में बनाई,
1: जबकि एक कहानीकार रूप में उन्होंने पालकी और तेरी पायल मेरे गीत जैसी फिल्में लिखी। कहते हैं कि फिल्म बेजू बावरा का बुनियादी तस्वुर भी उन्हीं के जरखेज़ ज़हन की उपज था।

धर्मकांड फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ, मौसीकी नौशाद की थी। और ये अब सुनिए शकील बदायूनी का लिखा हुआ नगमा नौशाद की मौसीकी में, आवाज है आशा भोसले की, फिल्म गंगा जमुना।

अलिया सुनिए पालकी फिल्म की कवाली, मन्ना डे मोहम्मद रफी, आशा भोसले और हम नवाओं की आवाजों में। मौसीकी नौशाद की नगमा निगार शकील बदायूनी।

दर्द फिल्म का नगमा सुन रहे थे सुरैया की आवाज में। शकील बदायूनी का ये लिखा हुआ नगमा था और मौसीकी तरतीब दी थी नौशाद ने। ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में बैजू बावरा फिल्म से।

कन हथियारों को निशाना बना रहे थे, अमरीका की फिजाई फौज ने फिजा में ही मार गिराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कोरिया से इस मिशन में शामिल होने को कहा, जिसके लिए जनूबी कोरिया ने कहा कि वो इस दरखास्त पर गौर करेगा। बैनुल अक्वामी मालियाती फंड ने कहा है कि अगर मगरबी एशिया में लड़ाई 2027 तक जारी रहती है तो आलमी मईशत को इसके संगीन नतीजे का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें तेल की कीमतें तकरीबन $125 फी बैरल तक बढ़ने का अंदेशा है। बैनुल अक्वामी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें $100 या उससे ऊपर पहुंच गई हैं और अफरात ज़र के दबाव में भी इजाफा हुआ है। कोलंबिया के कुंडी नमाका सूबे में कोयले की एक कान में धमाके के बाद कान में काम करने वाले 9 वर्कर्स हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। यह धमाका सिस्कुडा कान में हुआ। कानकनी से मुतालिक एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ऐसा लगता है कि यह हादसा मीथेन समेत गैसों के जमा होने की वजह से हुआ। भारत सूडान दफ्तर खारजा मुशावरत FOC का नौवां दौर कल पोर्ट सूडान में हुआ। वजारत खारजा में मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका के ज्वाइंट सेक्रेटरी और सूडान के उमूर खारजा और बैन अवी इश्तराक के अंडर सेक्रेटरी ने मुशावरत की मुश्तरक सदारत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों मुल्कों ने गुज्त FOC से अब तक के दो तरफा तलुकत में पेशरफ का जायजा लिया और तजारत सलाहियत साजी इंसानी वसाइल के फरोग सेहत तालीम कानकनी जरात और MSMEs जैसे शोबों में ताउन पर तबल ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खर्चा डॉ एस जयशंकर ने आज जमैका के शहर किंगस्टन में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल और भारत का रद्दअमल के मौजू पर इजहार ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने आलमी जुनूब इसलाह शुदा कसीर जहती निजाम और कसीर कुतुबी निजाम से मुतालिक मामलात पर तबादले ख्याल किया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज कहा कि तरक्याती ताउन भारत और जमैका के दरमियान शराकत दारी का एक अहम सतून है। डॉ जयशंकर जमैका की वजीर खारजा केमिना जॉनसन स्मिथ और दीगर काबीना अरकान के साथ अपनी मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। उमूर खारजा के वजीर ममलिकत कीर्तिवर्धन सिंह ने फिलीपींस के माइग्रेंट वर्करों के महकमे की सेक्रेटरी हंस लियो कैकडेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने मोबिलिटी और माइग्रेशन से मुतालिक मुश्तरक मामलात में इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने मुल्क में तहकीक और इख्तिरा का एक मजबूत इको निजाम तैयार करने के हुकूमत के अज़्म को एक बार फिर दोहराया। आज नई दिल्ली में IIT मद्रास टेक समिट से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने इख्तिरा पर मबनी नताइज हासिल करने के लिए भारत की तहकीक से मुतालिक इको निजाम को यकसर तब्दील करने की जरूरत पर जोर दिया। भारत और जापान के दरमियान हिफ्जान सेहत से मुतालिक मुश्तरक कमेटी की तीसरी मीटिंग कल नई दिल्ली में हुई। इस मीटिंग की सदारत सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा और जापान के हिफ्जान सेहत की पॉलिसी के इंचार्ज किमी ओनोडा ने मुश्तरक तौर पर की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि इस मीटिंग से सेहत के शोबे में इश्तराक को मजबूत करने और नई साझेदारी को फरोग देने के दोनों मुल्कों के मुश्तरक आजम का इजहार होता है। पाकिस्तान में गर्मी की शदीद लहर की वजह से सिंध सूबे में 10 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम ने बताया कि कराची के मुख्तलिफ हिस्सों से 5 लाशें बरामद की गई हैं, जबकि दीगर 5 अफराद अस्पतालों में इलाज के दौरान हलाक हुए हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों को लू लगी थी। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने कहा कि कराची में 2018 के बाद कल सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया, जहां दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। महकमे मौसमियात ने इससे पहले कराची और सिंध के कई अजला के लिए लू की वार्निंग जारी की थी। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया।
लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से दिए गए 229 रन के निशाने

0: को मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर्स और 4 गेंदों में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 228 रन बनाए थे। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल में छठे मुकाम पर पहुंच गई है, जिससे इस टूर्नामेंट में इसकी उम्मीदें बरकरार हैं। अगरचे लखनऊ सुपर जायंट्स 9 मैचों में महज 4 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ के दौर से बाहर होने के करीब पहुंच गई है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के इलाके फुजैरा में हमलों की मजम्मत की है, जिनमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में अमन इस्तेहकाम बहाल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के लिए कहा है। अमरीका और ईरान ने खलीज में ताजा हमले किए हैं। दोनों ही ममालिक अब नए हुर्मुज पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में हैं। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने जमैका की अपनी हम मनसब केमिना जॉन स्मिथ से बातचीत की। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तरक्सादी रिश्तों के लिए कहा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस से हिंदी पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत समात फरमाओ सराय की प्रोग्राम झोक माही दी।

ए हई अताउल्ला खान दी आवाज विच गीत ते आखिर विच तुहाकू सुनवेंदी हां ए सुफियाना कलाम आ सजना तेनू अखियां उड़ीकदियां दिल वाजा मारदा आजा परदेसिया वास्ताई प्यार दा चस घिनो।

प्यारी सतिंदर, मैं थोड़े तो कुछ वरे पहला जमया, पर सजे सजे तुसी भी जिस तरह मैनू आई रले हो। हिसाब सामने मेरी एक गल ठहर नहीं सकती, वक्त मेरे वास्ते खड़ा नहीं रहा ते ना ही थोड़े इकलिया वास्ते चलता रहा, पर कुछ इस तरह जापता है कि मैं ते तुसी हाणी हाँ। कुड़ियां छेती जवान हो जांदियां, जिंदगी दी वक्त

प्यारे भगवंत जी, तुहाडी चिट्ठी मिली मेरे लिए जिंदगी दा एक अनोखा तजर्बा सी। अज तक कभी किसी मुंडे ने मेरे सामने अपना दिल नहीं सी खोलिया। तुहाडी चिट्ठी किन्नी दिलचस्प है। दुनिया वेख वेख के रजिया होया एक बंदा, काश कि मैं हुंदी। उफ, मैं किस तरह हुंदी। मैं तो इस होस्टल के कंपाउंड के चक्कर लाने लई पैदा हुई हां। कंपाउंड के अंदर की जमीन मैं मिद मिद के लोहा कर दिती है। इथे तुरदा हूं मेरा अपना शरीर मैनू भारा लगता है। मेरे टूडी के पैर जवान कुड़िया वांग धरती नूं छो के ही उठा नहीं उठ जाते, सगो बुढ़िया वांग कम कम पैंदे ने। चिड़िया घर के पिंजरे विच भी कई जानवर आराम नाल नहीं खलोंदे, सगो पिंजरे विच हर वेले चक्कर लाउंदे रहिंदे ने। मैं बाहर ते निकलदी हां पर ना निकलण वर्गी। पिछलिया छुट्टिया विच मैं शिमले गई ते होटल विच बंद कर दिती गई। माल रोड ते भला पहाड़ किथे ने? पहाड़ ते मैं दूरों वेखे ने। वह अपने पिछे की कुछ लुकाई बैठे सन। मेरे दिल विच उबाल उठता सी कि जाके वेखा कि इन्हां पहाड़ां दे पिछे कीड़े पहाड़ ने, ते फिर उन्हां दे पिछे की है। उत्थे कौन लोग रहिंदे ने? वह की करदे ने? की खांदे ने? की बोलदे ने? विआह किस तरह करदे ने? ते अपनियां इस्त्रियां नाल की जिहा वरताव करदे ने? मेरा कमरा ते उजाड़ सी पर होटल विच ते कोई उजाड़ नहीं सी।

0: खूबसूरत पार्सल कुरियर नूं नाल लैके विक्टोरिया टर्मिनस दे स्टेशन ते उतरिया। ऐसी खूबसूरत जिन्हां दे डल्क सामने टिकट कलैक्टर टिकट मंगन दी थां सुत्ते सिद्ध गेट विचों इक पासे हो जांदे। मैं कई रातां दिन ते दिन रातां कीतियां ने, मैं थां थां क्लबां विच पां पां दे लोकां नूं यारियां लाईयां ने, ते हुण मैं बस खत्म हो गया। कोई नवीं शै लिखण तों कुछ पैदा करन तों वी असमर्थ हां। चंबी दा राज रूह दी मौत है सतिंदर, पर मैं जानता कि मैं की चाहना। यही वह कि इस यरकानी हुई दुनिया नूं अपनी छूह नाल कोई असली रंग विच लिया देवे, पीले नूं गुलाबी बनाए, बच्चे मैनूं प्यारे लगन, कुड़ियां मैनूं वो सकन, मैं पूरे लोकां नाल गल करके खुश हो सकां, कहानियां नावल सिन्ने मैनूं खिंच सकन, मैनूं नकली दी असली टपा मारे ना कि असली दी नकली होण दा शक होए। शैले ने कहा कि समुद्र दियां लहरां धरती नाल टकरा के इस दे गुनाहां नूं धोंदियां रहिंदियां ने। जे करदा है कोई अछूती शायद मेरे नाल लग के मेरे गुनाहां नूं धो देवे, तुहाडा भगवंत।
1: मेरे हानी, एक बार लारी विच बैठ के मैं सियालकोट जा रही सां, विच एक लक्कड़ दा संदूक पिया सी। किसे पुछया इस विच की है, संदूक वाले ने कहा इस विच फिल्म ने, अज रात नूं सियालकोट विखानी है। तुम हैरान हो गई, फिल्म संदूक विच बंद? जिस ड्रामे ने हजारां अखियां कन्नां ते दिलां नूं अपने नाल नाल तोड़ना सी, शरीरां नूं झंझोड़ना सी, इस्त्री मर्दां दे दिलां विच सैकड़े जज्बे जगाने सन, इक वक्री दुनिया विच ले जाना सी, ओह फिल्म संदूक विच किस तरह बंद हो गई? मैनूं इह गल एडी ओपरी लगी कि मैं यकीन ना कर सकी। ओह गल ही अज होई ए। अज तक बंदा मेरे लई लम्मे कद मोटे डौलियां ते सोहनी शकल दा इक हिस्सा सी, पर तुसां अज मैनूं बंदे दे अंदर चाती मरवाई ए, संदूक विच बंद फिल्म कढ के विखाई ए। जी करदा ए इह फिल्म होर वेखां, फिर होर वेखां, ते वेखदी वेखदी बोलण लग जावां, ते फिर बोलदी जावां। मैं तुहाडे नाल किन्नियां गल्लां करनियां ने जिहड़ियां मैं पहलां कदी किसे नाल नहीं कीतियां, जिहड़ियां असल विच पहलां मन विच ही है नहीं सन, ते हुणे जन्मियां ने। मैनूं काल चाहिए काहदी ए, दिल संघ वल आ रिहा ए, पर मैं चिट्ठी ते मुका के ही छड्डांगी। होर मैं की लिखणा ए, तुसां अपनी चिट्ठी विच रब दी गल कीती, मैं जानदी हां रब किथे, जिथे जीवन कणी ए उत्थे ही रब ए। जिस दिन साडी पिंड वाली गुआंढी ने अपने पति दी खड्डी दे नाल अपने गबरू होए पुत्तर लई खड्डी कढवा के पोची ते खुशी नाल फुली कपड़ां विच पूरी नहीं सी आउंदी, उस दिन उसदे अंदर रब पूरे चोबन ते सी। बंदे जांदी विधवा अपनी हार ना मन, पिंडों बाहर निकल के रस्ते विच बैठ जदों बुल्लां ते सुरखी लांदी ऐ ते कज्जल पाउंदी ऐ, तां रब वी उत्थों बहुत दूर नहीं हुंदा। इक कुड़ी जदों डूंघे एतबार नाल किसी मुंडे दी हिक ते सिर रखदी ऐ कि जे रब उत्थे नहीं तां मैं पुछदी आं ओह किथे ऐ। दूजी गल तुहाडे प्यार दी ऐ, इस बारे मैं कुछ नहीं जानदी, पर तुहाडे विच मैनूं डाढ़ी दिलचस्पी ऐ। तुहाडे शरीर नूं कईआं थावां दी हवा ने छोहा ऐ, दूर दूर थावां दे किन्ने ही नजारे तुहाडीआं अखां दे पर्दिआं पिछे किधरे ना किधरे छुपे होए ने, इह सारे तुसीं मेरे लई फिर पैदा कर दिओगे। मैं तुहाडा थकेवा ला देंगी, मेरीआं नाड़ां विच किन्ने खून ने ते मेरे वाल किड्डे काले ने। मैं शामां नूं तुहानूं मोटे विच बाहर सैर करन लै जाया करांगी ते उत्थे तुहानूं कुग्गी अपने बच्चिआं नूं उड़ना सिखांदी विखावांगी, नाले तोतिआं दीआं डारां जिहड़े सारे जनौरां तों चरा के घरां नूं मुड़दीआं ने, पैलीआं विच किन्ने फुल खिड़दे ने ते फिर खिड़े ही रहिंदे ने बगैर इस चिंता दे कि कोई उन्हां नूं वेखण आउंदा है या नहीं। ते फिर असीं वट ते बैठ जावांगे ते सड़क ते घरां नूं जांदे गवाले ते मजदूर लंघदे वेखांगे। सारे गवाले इक्को जिहे लगदे ने ते सारे मजदूर वी, पर तुसीं वक्खरे हो, कुल दुनिया तों वक्खरे, बिलकुल अनोखे। वट ते बैठे बैठे तुसीं मैनूं किसे होर थां दी सैर कराओगे, तुहाडे उत्थों दे देखे दृश, तुहाडीआं कीतीआं गल्लां, तुहाडीआं माणीआं मौजां, तुहाडे कड्डे नतीजे, इह सब मेरे हो जाणगे। मैं किन्नीआं खुशियां देख रही हां, मैं तुहाडे लई कुड़ी लभणी छड्ड दित्ती ए, तुहाडी, सिर्फ तुहाडी।

निष्मजाज पेंड पंगाला जलाफा सलका तो जगतार गिल गुरमीत गिल नाजम गिल सुखमन गिल कमलदीप गिल एस के शर्मा ते जगतार टेलर होरां दी फरमाइश पेंड पक्षी खुर्द फरीदकोट तो सतनाम गिल गुरिंदर गिल गुरलीन ते गिल परिवार पिंड नुकेरिया नेड़े मंडी रोड़ा वाली तो कश्मीर सिंह करनावल सुखजीत सिंह करनावल अनमोल सहजप्रीत रहमत खुशप्रीत करतार सिंह करनावल राणा चख पखी गुरचरण सिंह बराड़ टाणी नथा सिंह सोहन लाल ते सुचा सिंह थोड़ी सब की फरमाइश से चलते अगे सुनते हैं जी सरदूल सिकंदर का गाया ए गीत।

नजराना प्रोग्राम दी आखरी पेशकश सतिंदर सरताज दी आवाज च आखरी गीत पिंड जंडवाला चढ़त सिंह तो फरमाइश कर रहे ने इस गीत लिए राकेश नरेश जगदीश अनिकेत अंश अमन स्नेहा सुमन ते ममता महेश गर्ग सुषमा गर्ग जशन गर्ग मंडी हरजीराम मलोट तो पंचकुला सेक्टर 9 तो फरमाइश आई आशु चुग शिफानी चुग गोविंद चुग टोनी दीवान लव दीवान राधे भाविक ढींगरा हरदीप सिंह जगवीर सिंह ज्वाला सिंह जगसीर सिंह ते जगराज सिंह ए लिखते ने जी पिंड राजपुरा दी पंचायत चो पिंड कहरो जिला तरन तारण पंजाब तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमी रजनी आकाशदीप अनहद ते पुत्रा गुरशबद महेश गर्ग ते जशन गर्ग मंडी हरजीराम मलोट तो थोड़ी सब दी फरमाइश ते नसराना प्रोग्राम दी आखरी पेशकश सतिंदर सरताज की आवाज च एक गीत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,00,000 रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है।
1: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FPR को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32,00,000 किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाई को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज पार्टी विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, NDA के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम का अगला भाग।
1: तो किसान बहन भाइयों, राम राम। एक बार फिर स्वागत है हमारे फोन इन कार्यक्रम। आज हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहेलाइट।
1: किसान बहन भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में। और हमारे आज का कार्यक्रम का विषय है संतुलित उर्वरक उत्पादन और गुणवत्ता दोनों कैसे बढ़ाएं गन्ने में।
2: तो हमारे श्रोताओं को पता है कि हमारा फोन इन कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये विषय उन लोगों के लिए है जो श्रोता हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं या थोड़ी सी देर कर दी है उन्होंने, पर कोई नहीं, उनको बता दें एक बार फिर संतुलित उर्वरक उत्पादन और गुणवत्ता दोनों कैसे बढ़ाएं। और विषय से संबंधित हमारे साथ स्टूडियो में आज आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक। आप प्रभारी हैं गन्ना उत्कृष्टता केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत। और
1: जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक है इंडियन पोटास लिमिटेड में। तो हमारे जो भी किसान बहन भाई हैं गन्ने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप निश्चिंत होकर के फोन कर सकते हैं 0111-2342-1082 और 2342-1083 दोनों नंबरों पर, और गन्ने से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, दिल्ली से बाहर के श्रोता और मोबाइल से कॉल करने वाले श्रोता इन नंबर के आगे 011 जो कि दिल्ली का एसटीडी कोड है जरूर लगा ले। चलिए कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल, आइए चलते हैं उनके पास।
3: किसान भाइयों नमस्कार, एक बार पुनः कार्यक्रम में आपका स्वागत है और डॉक्टर साहब आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है।
4: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
3: तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे गन्ना फसल में संतुलित उर्वरक प्रबंधन की
4: जी,
3: और गन्ना ही नहीं कोई भी फसल है अगर हम लगाते हैं उसमें संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें जो उत्पादन मिलता है अच्छी क्वालिटी का मिलता है।
4: जी जी बिल्कुल।
3: लेकिन अगर उसे हम वैज्ञानिक तरीके से देखें
4: जी,
3: तो किस तरीके से जो अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो उसका अगर हम संतुलित उर्वरक प्रबंधन नहीं कर पाते हैं
4: जी,
3: तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है।
4: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हम यहाँ पर संदर्भ गन्ने के साथ में जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो यदि हम संतुलित उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो हमारे किसान भाई आम तौर पर नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर देते हैं, तो उससे असंतुलन पौधे के अंदर डेवलप होता है, क्योंकि जो यूरिया है ये सेल डिवीजन को बढ़ाता है, पौधे की वनस्पतिक वृद्धि को अधिक करता है। किसान को लगता है कि उसके जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, लेकिन उसके विपरीत प्रभाव क्या पड़ते हैं कि यदि वो उसमें यूरिया का अधिक प्रयोग करता है तो गन्ने की गिरने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दूसरा, वहां पर उसके कीट और रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, और एक एक एक तरीके का प्रकोप, एक तरीके का प्रभाव पौधे के ऊपर दिखाई दे रहा है कि वो ऊपर का वनस्पतिक भाग बढ़ा रहा है, क्योंकि वो नाइट्रोजन दे रहा है, वो सेल एलोंगेशन ऊपर के भाग में वनस्पतिक पार्ट को बढ़ा रहा है। उसी के पैरेलल यदि उसमें असंतुलन बना है तो रूट जोन उसका कमजोर रहेगा और ऊपरी भाग उसका ज्यादा होगा, तो वो पौधा गिर जाएगा और उसकी वनस्पतिक वृद्धि भी फिर उसके बाद रुक जाएगी। और यदि बैलेंस फर्टिलाइजर है तो उसमें उस दशा में क्या होगा कि बैलेंस का मतलब है कि आपने नाइट्रोजन से पौधे की ऊपरी वृद्धि बढ़ाई, फास्फोरस से आपने रूट जोन बढ़ाया, पोटास से आपने उसको ताकत दी, स्ट्रेंथनिंग दी, उसकी सेल्स में मजबूती दी, तो तब वो फिर तीनों प्रकार की चीजें उसको मिली है तो वो निश्चित तौर पर खड़ा भी रहेगा, वृद्धि भी ठीक करेगा और

0: पौधे में किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहेगी। और हम केवल असंतुलन की बात करी हमने कि हमने नाइट्रोजन इस्तेमाल की, फास्फोरस और पोटाश इस्तेमाल कम किए या उतनी मात्रा में नहीं किए, तो निश्चित तौर पर पौधे में गिरने की प्रवृत्ति। और क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो पौधे को अपटेक बढ़ाता है, पानी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे कीट और बीमारियों का भी प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार यदि आप पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने खेतों में तो रोगरोधी क्षमता कम हो जाएगी। दूसरा, क्वालिटी डाउन जाएगी, केन की क्वालिटी। यदि आप अपने खेतों में पोटाश इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसमें दोनों तरीके से गन्ने का वजन भी कम प्राप्त होगा और दूसरा सुगर इंडस्ट्री को रिकवरी भी प्राप्त कम होगी, क्योंकि उसमें सब सॉलिड्स जो उसके अंदर क्रिस्टल बनते हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। अब क्रिस्टल नहीं बनेंगे तो वजन नहीं होगा, वजन नहीं होगा तो गन्ने का उत्पादन उस लेवल का, देखने में फोलियज अच्छा रहेगा लेकिन उत्पादन उस दृष्टि से उस वजनदार स्थिति में वहां नहीं मिल पाएगा।
1: दूसरा, अब मैं बीच में रोकना चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से जी।
1: हाँ, क्या नाम है?
2: शिवराम।
1: अच्छा शिवराम जी, क्या सवाल है आपका?
2: सवाल सर जी ये है जी, अब की बार ईख लगा रखी है जी थोड़ी सी गन्ना।
1: कितना लगा रखा है?
2: कनाल में लगाया जी, शुरुआत करी है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है।
2: पिछली बार लगाया था जी, उसमें कीड़ा हो गया था जी ऊपर तने में
0: जी।
2: उस कीड़े का प्रकोप ज्यादा हो गया जी, वो काबू नहीं आया पिछले साल
0: जी। जी जी, बेसिकली तने में ऊपर के हिस्से में जिसको हम अगोला बेदक या टॉप बोरर बोलते हैं, उसका प्रभाव पिछले 2-3 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में अधिक देखने को मिल रहा है।
2: हाँ जी।
0: और बार बार एक्चुअली क्या स्थितियां बन गई हैं कि हम एक ही प्रकार से हम उसका नियंत्रण करना चाहते हैं, वो भी केवल केमिकल से, रासायनिक से ही हम उसका नियंत्रण। मेरा आपसे आग्रह है कि उसके दोनों तीनों, क्योंकि अभी वर्तमान में आपने किस समय गन्ने की बुआई की थी?
2: ये बुआई करी थी जी अब सरसों काट के।
0: सरसों काट के मतलब मार्च के आसपास लगभग।
2: हाँ जी।
0: अभी मेरा आपसे आग्रह है, अभी पहली पीढ़ी चल रही है, पहली पीढ़ी पूर्ण होने वाली है, उसकी दूसरी पीढ़ी की अब जो शुरुआत होगी तितली से, तो जो हाँ पहली पीढ़ी की सुंडी अभी यदि आपके कल्लों के अंदर हो तो मेरा आपसे आग्रह है उन कल्लों को काट के खेत से बाहर निकाल दें। उससे वो आपके उत्पादन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय है इस समय गन्ने में रूट जोन बन गई है, जड़े बन गई है और आपने मदर सूट हटाया है तो वहां पर एक एपिकल पोर्शन पे एक एंजाइम इकट्ठा होता है जो पौधे की वृद्धि को बताता है, वो हट गया तो उससे जमीन में से ही 3-4 कल्ले 5 कल्ले निकल के आएंगे। आप बिल्कुल पूरे मनोयोग के साथ में मन मजबूत करते हुए ऐसे प्रभावित कल्लों को काटकर खेत से बाहर निकाल के नष्ट कर दे। पहला तो सबसे अच्छा उसका नियंत्रण का उपाय मैकेनिकल यही है। दूसरा, इसके बाद हम केमिकल पे जाते हैं। अब क्योंकि आपका मार्च का बोया हुआ गन्ना है, उसमें टिलरिंग फेज अब मुझे लगता है अब जब शुरू हो गई होगी, वहां पे फुटाव की प्रवृत्ति उसमें आ गई होगी, कल्ले बनने शुरू हो गए होंगे।
2: हाँ जी, हो रहे हैं शुरुआत जी,
0: है ना। हाँ, तो उसमें आपके पास जब एक फेरोमोन ट्रैप और लगाने, जिसको हम किताबी भाषा में फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं, तो एक प्लास्टिक का कीप आता है, उसमें नीचे पन्नी लगी होती है, उसके अंदर इस कीट की मादा की खुशबू होती है ताकि नर अट्रैक्ट होकर वहां पर आ जाते हैं, तो उससे हमें पता लगेगा कि मेरे खेत में दूसरी पीढ़ी कब आ रही है। जब आपके खेत में दूसरी पीढ़ी आने की संभावना शुरू हो जाए, उसी समय नीचे CTPR क्लोरेंटा निलीप्रोल बोलते हैं, उसकी ड्रेंचिंग कर दे, धार बना के डालनी है। एक और छोटा सा निवेदन है कि जब उसको डालें 400 लीटर पानी में 150 ml दवाई का घोल बनाकर, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। पानी की मात्रा विशेष तौर से, और पावर स्प्रेयर से स्प्रे ना करें, जो 500 लीटर के टैंकर हमने बना रखे हैं, हम पूरे पौधे को तर करते हैं, यदि आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं तो निवेदन है कि पौधे के तने के पास धार बनाकर कुंड कुंड में उस दवाई को डाला जाए। यदि फोलियर स्प्रे करेंगे तो उतना अच्छे परिणाम उसके नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत
2: उससे जी। ठीक है
0: जी जी जी, तो ये महत्वपूर्ण सावधानी आप रखेंगे और निश्चित तौर पर आपको आगे उससे कठिनाई कम से कम होगी।
2: अच्छा जी
0: जी,
1: ठीक है शिवराम जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि संतुलित उर्वरकों के जो हमारे फसलों में डाले जाते हैं या गन्ने में जो लोग डालते हैं, तो उसका गुणवत्ता की भी बात आपने करी है
0: जी जी,
1: लेकिन इसका जो हमारे उत्पादन पर
0: जी
1: क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्पादन सीधे सीधे प्रभावित होता है, गुणवत्ता की दृष्टि से भी प्रभावित होता है और क्वांटिटी की दृष्टि से भी प्रभावित होता है। हमें उतना अच्छा उत्पादन दोनों ही श्रेणी में नहीं मिल पाता। और दूसरा, हमारी जमीन का असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से पीएच में भी भारी बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम केवल उर्वरक या संतुलित उर्वरकों का मतलब रासायनिक उर्वरकों से समझते हैं। इसके साथ में अभी

0: जी
1: जी
0: तो बतिया जी, क्या सवाल है आज का?
1: लाल साहब, सारी पंचायत को राम राम। और सवाल है, जो
2: राम राम जी, राम राम
0: राम राम जी।
1: गन्ना अब पिछेटा बोया जा रहा है,
0: जी
1: उसकी उत्पादन क्षमता और उसकी उर्वरकता, उसमें क्या क्या चीज डालें जिससे उसमें सही दाम फसल के मिले, और क्या उसमें मूंग बो सकते हैं फिर फसली खेती के रूप में?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो उसमें उर्वरक प्रबंधन हम क्या करें, और दूसरा उसमें सह फसली के रूप में मूंग की बुआई कर सकते हैं क्या? जी, दोनों ही चीजें आवश्यक है, क्योंकि यदि आप संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप पछेती देर से बुआई में भी गन्ने का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पहला तो मेरा निवेदन यह है कि हम ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डाई या डीएपी से बुआई करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। मेरा आग्रह है, यदि आप डीएपी से बुआई कर रहे हैं, डाई से बुआई कर रहे हैं, तो उसके साथ पोटाश का इस्तेमाल अवश्य करें। यदि अभी तक नहीं कर पाए हैं तो जब आप उसमें गन्ने में मिट्टी चढ़ाएंगे उस समय आप एक बार पोटाश का इस्तेमाल 8 केजी प्रति बीघे या 40 केजी प्रति एकड़ की दर से अवश्य इस्तेमाल करें। उसी के साथ साथ 2 केजी प्रति बीघे की दर से माइक्रो न्यूट्रेंट का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे वेस्टर्न यूपी की अधिकतर भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा 2 आग्रह आपसे और है। एक, आप यदि बेहद अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो कुछ जैविक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की तरफ भी हमें चलना होगा। आप इसके साथ साथ एनपीके कंसोर्टिया और जो हमारे सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं जैसे सागरिका, ऐसे तत्वों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक पैकेज बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपका उत्पादन बेहद अच्छा होगा। और दूसरा, अभी आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि क्या मूंग की खेती हम इसके साथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। यदि हम सह फसली करते हैं तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं मानता हूं, यदि आप दूरी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप दूरी पर गन्ना लगाते हैं तो सह फसली में हमारी गन्ने की फसल पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम दूरी भी ना बढ़ाएं और हम उसमें सह फसली भी करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव, यदि दलहनी फसलों को छोड़ दें तो अन्य फसलें उस पर प्रभाव डाल के जाती है। इसलिए यदि आपने साधारण बोया है तो उसमें मूंग आप लगा सकते हैं, और उससे भी अच्छा विकल्प उसका होगा कि आप मूंग लगाएं और केवल फलियों की तुड़ाई करके खेत से बाहर निकालें, और जो मूंग के संपूर्ण पौधा है वो बायोमास पूरा का पूरा जमीन में दोबारा से जुताई कर दें, तो हरी खाद का भी हमारा काम हो जाएगा और आपको मूंग का एडिशनल इनकम आपको प्राप्त होगी और बेहद अच्छी शुरुआत ही आपकी होगी।
0: जी त्वेत्या जी, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया, और फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो,
3: नमस्कार जी।
0: हाँ नमस्कार जी,
3: मैं सतीश कुमार, डिस्ट्रिक्ट भिवानी
0: जी।
3: सर, फसल चक्र कितने दिन का रखना चाहिए एक में?
0: जी आप अपना थोड़ा रेडियो सेट दूर कर लो या धीमा कर लो।
3: अंदर सर मेरे वाला तो।
0: अच्छा जी, बिल्कुल इनका सवाल वाजिब है डॉक्टर साहब, कि फसल चक्र का भी बहुत बड़ा महत्व होता है उत्पादन में।
2: जी जी जी, और उसको हम किस प्रकार अपने इसमें सम्मिलित करें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप जब फसल चक्र की बात करते हैं तो ऐसा फसल चक्र बनाए जिसमें हमारी दलहनी तिलहनी फसलों का भी समावेश हो। जो भी आप गेहूं धान, हम गन्ने के बाद यदि फसल चक्र में बात करते हैं हमारे किसान भाई साधारण तौर पर, तो वो गन्ना छोड़ते हैं तो गेहूं और धान पर चले जाते हैं, फिर गेहूं धान लगाने के बाद उसके बाद पुनः गन्ने पर आ जाते हैं। मेरा आग्रह आपसे है कि यदि आप गेहूं के बाद गन्ने के बाद अन्य फसल चक्र में आप दलहनी फसलों का और तिलहनी फसलों का समावेश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक 3 वर्षीय या 4 वर्षीय फसल चक्र बनाए जिसमें आपकी दलहनी फसलें भी सम्मिलित हो, तिलहनी फसलें भी सम्मिलित हो, धान्य फसलें उसकी सेकेंडरी है, उसके बाद आप गन्ना ले लेंगे तो भी बेहद अच्छा उत्पादन उसमें होगा। हम समय और परिस्थितियों के अभाव के कारण ही हम गन्ने में सह फसली पर जाते हैं। जब हम फसल चक्र नहीं अपना पा रहे हैं, उस दृष्टि से फसल चक्र नहीं अपना पा रहे हैं जिस दृष्टि से अपनाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पे अब सुझाव दिया जाता है कि सहफसली करें, थोड़ा चौड़ी दूरी पर गन्ना लगाएं, उसके अंदर सहफसली करें, ताकि उसका बायोमास एक सहफसली के रूप में फसल चक्र की दृष्टि से ही वो हमारी जमीन को इनरिच करता रहे। इसीलिए गवर्नमेंट का भी और एक अर्जित अतिरिक्त

0: इनकम के लिए किसानों को सुझाव दिया जाता है कि आप उसमें अन्य फसलें लगा लें। यदि आप अपने स्तर पे फसल चक्र बना रहे हैं तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप उसमें दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें जोड़ते हुए ही उसका बनाने का प्रयास करें।
1: तो डॉक्टर साहब, वैसे जो फसल चक्र है
0: जी,
1: उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है?
0: बहुत अच्छा, मैं उसी चीज को बता रहा हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही ये है कि जब जमीन में हम लगातार एक ही फसल ले रहे हैं तो उसकी जो जमीन से अपटेक करने की नेचर है, पोषक तत्वों को खींचने की नेचर है, वो एक प्रकार की बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम गन्ना उगाते हैं तो गन्ना यदि हमारी जमीन से सल्फर ज्यादा खींचता है या आयरन ज्यादा खींचता है, जब भी हम उसको गन्ना लगाएंगे तो वो उसको ज्यादा ही जमीन से अपटेक करेगा
1: जी।
0: यदि हम उसमें फसल बदल दी, हमने अब की बार उर्द और मूंग उसके फसल चक्र में ले आए, तो ये दलहन वाली फसलें ऐसी है जिनकी जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं और जो नाइट्रोजन, वातावरणीय नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करने का काम करते हैं, ताकि वो जमीन में जब उनका पौधा भी अपना शरीर पूरा कर लेगा उसके बाद भी वे नोड्यूल जमीन के अंदर रहेंगे। जब वो रिलीज होगी धीरे धीरे डिकम्पोज होकर, तो जो अगली फसल उसकी लगाई जाएगी तो उसका उसको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा, ताकि वो न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी वहां पर पौधे को होती रहे। इसीलिए फसल चक्र कई सिद्धांत होते हैं। रूट की डेप्थ के आधार पर भी हम फसल चक्र को आधार मानते हैं कि कुछ कम गहरी जड़े वाली हम फसल लें, कुछ उथली जड़े वाली लें, कुछ दलहनी फसल की लें, कुछ तिलहनी, ताकि सभी प्रकार की फसलों का समावेश उसमें करते हुए वास्तविक फसल चक्र का लाभ तभी मिल पाता है किसान भाइयों को।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने विस्तार से बताया। सतीश कुमार जी को इसका जवाब मिल गया होगा फोन करने के लिए। सतीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सतीश कुमार जी के बाद एक किसान भाई और लाइन पे हैं, डॉक्टर साहब इनका भी सवाल ले लेते हैं।
0: जी जी जी,
1: हेलो
2: जी, नमस्कार सर।
1: हाँ नमस्कार जी,
2: मोहर सिंह बोल रहा हूँ सर। बुलंद शहर सर, मूंग के बारे में बता रहे थे आप डॉक्टर साहब अभी तेवत्या जी को, तो उसकी पैदावार भी अच्छी मिले और खाद के लिए पौधा भी अच्छा मिले, तो क्या करें उसके बारे में?
0: अभी सबसे पहला तो आग्रह ये है, जब भी दलहनी फसल लगाएं, क्योंकि मानसून सीजन, बरसात का सीजन आता है, तो हम सुझाव देते हैं बेड प्लांटिंग करें। यदि आप बेड प्लांटिंग करते हैं, बेड के ऊपर करते हैं, तो दलहनी फसल में पानी का प्रकोप उस पर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि दलहनी फसल की एक विशेषता है कि यदि इसमें जब फ्लावरिंग स्टेज आती है, फूल बनने की अवस्था आती है, यदि उस समय इसको पानी लगाया गया, हम गन्ने को सिंचाई करते हैं उस समय यदि इस पे पानी लगता है, तो ये फ्लावर ड्रॉपिंग करके फिर दोबारा से वेजिटेटिव ग्रोथ पे आ जाती है। तो एक तो पहली सावधानी हमें रखनी है कि जब हम किसी भी दलहनी फसल की बुआई करें, इसीलिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूं, अभी आपने जो हमारे पहले किसान भाई थे मैंने उन्हें भी यही सुझाव दिया है
2: कि, उनको बताइए आपने तेवत्या जी बात कर रहे हैं
0: जी जी जी, कि चौड़ी दूरी पर लगाएं, ताकि वो जो ट्रेंच हमने बनाई उसका जो प्लेटफार्म है ऊपर का, उस पर हम कोई भी सह फसली लेंगे वो सब कामयाब होगी।
2: लेकिन मैंने अलग लगा रखी है मूंग, बिल्कुल गन्ना वन्ना कुछ नहीं है उसके साथ में, अलग है बिल्कुल।
0: बहुत बढ़िया,
2: तो उसके बारे में बता।
0: लगा चुके हैं अभी आप बेसल में? लगा चुके हैं, हाँ, बुआई कर चुके, अब उसमें अतिरिक्त किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप उसमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, और मेन उसका होता है उसमें येलो लीफ डिजीज आता है, पीला पत्ते उसके हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप वेक्टर, उसको एक मक्खी फैलाती है, तो उसे बीच बीच में आप उसका ध्यान रखें, यदि एक दो पौधा कहीं नजर आता है तो तुरंत उस पर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड मीड़ा का आप इस्तेमाल करके उसको एक तो रोकने का प्रयास करें, और यदि प्रारंभिक अवस्था में ग्रोथ अच्छी लेना चाहते हैं तो एक स्प्रे एनपीके का 19-19-19 या 20-20-20 का आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी
2: एनपीके
0: 19-19-19 या 20-20-20 आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट वो इनिशियल ग्रोथ उसकी अच्छी हो जाएगी। बाकी क्योंकि दलहनी फसलें हैं, वो खुद ही नाइट्रोजन को एटमोस्फेयर से अपने एकत्रित करने की पावर उसमें रखती है।
1: ठीक है,
2: यूरिया बिल्कुल ना डालें ना, फिर यूरिया बिल्कुल ना डालें,
0: आवश्यकता नहीं होती वो, क्योंकि केवल इनिशियल स्टेज में बुआई के समय या पहली इरिगेशन के समय ही उसकी ग्रोथ को इनहेंस करने के लिए आवश्यकता होती है। वो आप बुआई कर चुके, आपकी फसल अब बढ़वार पर है, तो इस समय आप यदि उस पर फोलियर स्प्रे कर देंगे तो वो मोर देन सफिशियंट होगा।
1: ठीक है मोहर सिंह जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, ये तो काफी विस्तार से बात रही आपकी मूंग के बारे में
0: जी, जी।
1: लेकिन हम पुनः गन्ने पे आते हैं। अगर गन्ने की फसल में और वो भी संतुलित उर्वरकों की हम बात कर रहे हैं
0: जी, जी।
1: तो अगर इसका हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें
0: जी, जी।
1: तो वैज्ञानिक लोग क्या सलाह देते हैं?
0: बहुत बढ़िया, आप

0: मैं इसी चीज को कंक्लूड करते हुए कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताना चाहूंगा कि किन किन चीजों के आधार पर हम संतुलित उपाय करते हैं। पहला जो मैं भी पहले भी बता रहा था कि सबसे पहले तो मृदा परीक्षण कराएं, सोयल टेस्टिंग में वास्तविक खेत के पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है उसको हम प्रयोग करेंगे। दूसरा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें, मतलब रासायनिक खाद के साथ में जैविक खादें और हरी खाद का भी इस्तेमाल किया जाए, केवल रासायनिक खादों पर ही आश्रित ना रहें। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा, उर्वरक देने का समय जो आप सेलेक्ट करें वो सही समय आप चुनें, सही विधि चुने, क्योंकि विधि यदि आपने अच्छी नहीं चुनी या विधि गलत तरीके से आपने, जैसे अभी तेवतिया जी थे तो हम उसमें डिस्कस हो रहा था कि ब्रॉडकास्टिंग करें या लाइन में डालें, तो बेस्ट होता है कि आप लाइन में डालें, ब्रॉडकास्टिंग से उसको बचें।
1: और कहने का मतलब डॉक्टर साहब, पहले हम ज्यादातर जिक्र करते थे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और अब हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट
0: मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, यही वास्तविकता है कि हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में रासायनिक, जैविक और आपका हरी खाद जो जीवाश्म कार्बन बढ़ाने वाली चीजें हैं उनको सबको सम्मिलित करके इसमें लेकर चलना होगा। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, कुछ जैविक उर्वरकों का भी विशेष ध्यान है, विशेष योगदान रहता है, जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, पीएसबी है, आप उनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें आपको उसका लाभ मिलेगा। और यदि मैं गन्ने की बात करूं, गन्ने की फसल में यदि विशेष प्रभाव की यदि हम बात करें, यदि हम संतुलित एनपीके से गन्ने में क्या प्रभाव मिलेगा, आपको गन्ने की लंबाई अच्छी मिलेगी, मोटाई अच्छी मिलेगी, संख्या अच्छी मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वजन के साथ साथ रिकवरी अच्छी मिलेगी यदि आपने बैलेंस फर्टिलाइजर और वो भी तीनों विधि से दिया। आप अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने सिस्टम में देखेंगे कुछ किसान भाई 100 क्विंटल से ज्यादा का उत्पादन प्राप्त करते हैं एक बीघा में, तो वो संतुलित उर्वरकों का ही प्रयोग कर रहे हैं, जैविक और रासायनिक और आपके हरी खाद सबको मिलाकर।
1: जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो आपके उत्पादन लागत भी कम होगी।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, हमारा फोन इन कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम था और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद।
4: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
2: तो श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्वागत है आपका गजल और कव्वाली के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का आगाज करते हैं पंकज उदास साहब की आवाज में इस गजल के संग।

0: इसी के साथ गजल के इस कार्यक्रम से आपसे इजाजत चाहूंगी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने वजन और माप से जुड़े लाइसेंस को आजीवन वैध करने का निर्णय लिया। आबकारी नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या 3 करोड़ के पार। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। दिल्ली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने वजन और माप से जुड़े निर्माताओं, डीलर्स और रिपेयरर्स के लिए लाइसेंस की वैधता अब आजीवन कर दी है, जिससे बार बार नवीनीकरण की जरूरत खत्म हो जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा सुधार है जो माप तौल के नियमों को आसान और कारोबार के अनुकूल बनाएगा। उन्होंने बताया कि यह सुधार राजधानी की विनियमन अभ्यास 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में नियमों को सरल बनाना और अनुपालन का बोझ कम करना है। श्री सिरसा ने बताया कि इस सुधार के अंतर्गत दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें लाइसेंस देने से पहले एक स्थल निरीक्षण की जरूरत खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस स्व घोषणा के आधार पर जारी किए जाएंगे। श्री सिरसा ने कहा कि एक बार निर्धारित फीस देकर लिया गया लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक उसे नियंत्रक या अधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाकर और भरोसे पर आधारित सिस्टम लाकर जमीनी स्तर पर कारोबारियों को राहत दे रही है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वो आबकारी नीति मामले में बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से पेश होने के लिए वरिष्ठ वकीलों को सहायक वकील एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करेगा। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायकों ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की अदालत में सुनवाई का बहिष्कार किया। उनका कहना था कि न्यायाधीश को मामले से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि उन्हें हितों के टकराव और पक्षपात की आशंका है, लेकिन न्यायाधीश ने स्वयं को अलग करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति शर्मा ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 8 मई तक के लिए टाल दी है। उन्होंने कहा कि पहले इन नेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी। इससे पहले केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक ने न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि वे ना तो खुद अदालत में पेश होंगे और ना ही कोई वकील भेजेंगे। इसका कारण ये था कि न्यायाधीश ने पिछले महीने उनकी स्वयं को मामले से अलग करने की मांग को खारिज कर दिया था। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यायाधीश के बच्चे ऐसे वकील हैं जिन्हें केंद्र सरकार की सूची में शामिल किया गया है और उन्हें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए काम मिलता है, जिस मामले में सीबीआई की ओर से पेश हो रहे हैं। न्यायाधीश ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केवल किसी पक्ष के शक के आधार पर न्यायाधीश खुद को मामले से अलग नहीं कर सकते। एमिकस क्यूरी ये व्यक्ति या संस्था होती है जो मामले का पक्षकार नहीं होती, लेकिन अदालत की मदद के लिए जानकारी या विशेषज्ञ राय देती है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राज्यतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
4: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
1: दिल्ली नगर निगम की उप महापौर मोनिका पंत ने आज एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कालकाजी वार्ड में नागरिक सुविधाओं की समीक्षा और समस्याओं का समाधान करने के लिए निरीक्षण किया। श्रीमती पंत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अग्रवाल धर्मशाला रोड के किनारे अवैध अतिक्रमण को मौके पर ही हटा दिया गया। उन्होंने अनधिकृत स्ट्रीट वेंडिंग और सार्वजनिक स्थानों को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्रीमती पंत ने अतिक्रमण को और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने और किसी भी चूक के लिए जवाबदेही तय करने की बात कही। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज कहा कि दक्षिण दिल्ली के अनेक इलाकों में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीनों को मिली जमीन पर बनी कॉलोनियों को नियमित किया जाए। श्री बिधूड़ी ने इस संबंध में दिल्ली के उद्योग और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से भेंट की। बैठक के दौरान श्री बिधूड़ी ने दिल्ली के जौनपुर में सिंगापुर की मदद से बनने वाली वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov

0: www.radio.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने बताया है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के संपूर्ण खंड के परिचालित होने के बाद नमो भारत ट्रेन ने 3 करोड़ यात्रा का आंकड़ा पार कर लिया है। NCRTC ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में अपनी उत्कृष्ट यात्रा सेवा से नमो भारत ट्रेन ने यात्रियों के विश्वास को लगातार जीता है, जो यात्री संख्या में भारी वृद्धि के रूप में साफ दिखाई पड़ता है। NCRTC ने बताया कि तेज गति के साथ साथ नमो भारत में यात्रा के अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है। इसके लिए 5,650 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
1: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32 लाख किसानों को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज IIT मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल PhD थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
3: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के उपलक्ष्य में आज CR पार्क स्थित मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने इस जीत को भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की जनता का विश्वास विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति में ही है। श्रीमती गुप्ता ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन का विरोध किया था, बंगाल की माताओं बहनों ने उन्हें अपने वोट की ताकत से हराया है।
4: सही मायने में यह मानती हूँ कि जिस नेता ने, जिस जिस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, आज उनको मुंह की खानी पड़ी। चाहे वो DMK के स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, एक एक व्यक्ति जिसने नारी शक्ति का अपमान किया, आज उसको जवाब देना भारी पड़ रहा है। ये जीत महिलाओं की जीत है, माँ काली के आशीर्वाद से बंगाल की जीत है, देश की जीत है, देश के विकास की जीत है, और इस सब के कारण से विकसित भारत का रास्ता प्रशस्त हो रहा है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि इस जीत से बंगाल की विरासत और संस्कृति को आगे ले जाया जाएगा।
5: पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में।
0: चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक झालमुड़ी कार्यक्रम के माध्यम से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय का उत्सव मनाया। इस अवसर पर श्री खंडेलवाल ने कहा कि झालमुड़ी अब केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की विलय का प्रतीक बन चुकी है। श्री खंडेलवाल ने बताया कि यह जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जन भावनाओं के सम्मान और लोकल के लिए वोकल के संकल्प की विजय है।
6: पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है और इस विजय

0: में हम सबका ऐसा मानना है कि झालमुड़ी का अपना एक विशेष महत्व है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकल उत्पादों को बहुत प्रमोट करते हैं। जब वो बंगाल में प्रचार कर रहे थे तो उन्हें झालमुड़ी की दुकान दिखाई दी और वहां जाकर के उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक बहुत छोटे से व्यक्ति से झालमुड़ी मांगी और ममता बनर्जी ने इस झालमुड़ी का उपहास किया और आज इसी झालमुड़ी ने ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर दिया।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और कार्य आधारित धोखाधड़ी में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वे साइबर ठगों के लिए फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने और वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में शामिल थे। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आगे की जांच जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज नई दिल्ली में मातृत्व और शिशु देखभाल संबंधी कानूनों पर एक परामर्श बैठक का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने की। आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस परामर्श बैठक का उद्देश्य मातृत्व अधिकारों का समर्थन करने और सुरक्षित समावेशी तथा उत्तरदायी शिशु देखभाल से संबंधित कानूनी और नीतिगत ढांचों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें तैयार करना है। इसके साथ ही बैठक में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण उपायों पर भी चर्चा की गई। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के विवेक विहार में हुई अग्नि दुर्घटना के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस दुखद घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने भलसवा डेयरी के मुकुंदपुर क्षेत्र में एक खुले नाले में गिरने से हुई बच्ची की मौत पर शोक व्यक्त किया है। इस घटना को अत्यंत दुखद और चिंताजनक बताते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अनुबंध पर रखे जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने छठे ओवर में 2 विकेट पर 36 रन बना लिए हैं। दिल्ली और चेन्नई ने अब तक प्रतियोगिता में 9-9 मुकाबले खेले हैं जिसमें दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले जीते हैं जबकि 5-5 मुकाबलों में दोनों को हार का सामना करना पड़ा है। 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेली जा रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के महिला वर्ग में कल राजस्थान की अंजलि शेखावत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा हरियाणा की कनक ने 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर महिला वर्ग और 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ विमेन्स स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राजधानी में आज दिन के समय धूप के साथ धीमी हवा चली। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है और सुबह तथा दोपहर के समय हल्की बारिश होने की भी आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने वजन और माप से जुड़े लाइसेंस को आजीवन वैध करने का निर्णय लिया। आबकारी नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला लिया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या 3 करोड़ के पार। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हेलो, सलाम, नमस्ते, स्वागत है आपका आपके फेवरेट फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत मालिका में। आज के गीत मालिका कार्यक्रम की इस रोलर कोस्टर राइड में हम करेंगे कुछ मजेदार सी बातें और साथ ही याद करें

हाँ तो देखिए ना, वादे के मुताबिक हाजिर है हम आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर। और दोस्तों, पता नहीं क्यों बस अभी अभी मेरे दिमाग में ना एक शेर की पंक्तियां, लाइंस आ गई, आपको भी सुनवाऊंगी कि किसी ने क्या खूब लिखा है कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौना माशुका रुतबा और खुदा। इसी के साथ मुझे दो लाइनें और याद आईं कि ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म में जब बनी कहता है ना कि मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, तब उसके लहजे में, आंखों में, जज्बे में एक जुनून होता है कुछ करने का, सबसे अलग, सबसे जुदा। लेकिन लेटर इन द सेम मूवी जब बनी को ये रियलाइज होता है कि एम्बिशन अलोन कैन नॉट सस्टेन योर लाइफ, जिंदगी में यू ऑल्सो रिक्वायर कंपेनियनशिप्स, यू ऑल्सो रिक्वायर फैमिली, फ्रेंडशिप्स, एंड यस यू रिक्वायर सम क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस। तो देखिए ना एकदम से कैसे फिल्म का सीन ही चेंज हो जाता है। आइए सुनवाते हैं आपको इसी फिल्म से ये गीत, और उसके बाद करेंगे हम और भी बहुत सारी मजेदार बातें।

अच्छा, अगर आपको कोई ये बताए कि फिल्म सीता और गीता के लिए एक्ट्रेस हेमा मालिनी पहली चॉइस नहीं थी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले उनकी जगह कौन लेगा? सोचिए जरा। हम बताते हैं आपको पूरी सच्चाई। 1972 में आई फिल्म सीता और गीता को डायरेक्टर रमेश सिप्पी सबसे पहले एक्ट्रेस मुमताज के साथ बनाना चाहते थे। वो मुमताज के पास इस मूवी का ऑफर लेकर गए भी, लेकिन कुछ रीजंस से वो ये फिल्म नहीं कर पाई और फिर ये फिल्म आ गिरी हेमा मालिनी जी की झोली में। सीता और गीता में उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा तो खैर मनवाया ही, साथ ही इस फिल्म के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। और ये फिल्म लेखक जोड़ी सलीम और जावेद की शुरुआती सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की कामयाबी के साथ ही दोस्तों इस जोड़ी का इंडस्ट्री में सिक्का जम गया और फिर इस जोड़ी ने हमें दी शोले जैसी फिल्में।

और देखिए ना साथियों, हम लोग चलते चलते आ पहुंचे हैं एक ऐसे लिरिसिस्ट के पास जिनका नाम शायद हम में से कुछ जानते हो और हो सकता है कुछ ना भी जानते हो, लेकिन इनके गाने तो लगभग हम सभी ने खूब सुने होंगे। इनके गाने हिंट दूं आपको, जैसे आज दिन चढ़िया, हायो मेरिया दादिया रब्बा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, मैं बात कर रही हूँ शिव कुमार बटालवी साहब की। तो चलिए आज सुनवाते हैं आपको इन्हीं के लिखे एक ऐसे ही गाने की खूबसूरत सी कहानी। तो हुआ यूं कि शिव कुमार बटालवी साहब पहुंचे हिमालय के बैजनाथ मेले में और वहां उन्हें मिली एक बहुत प्यारी सी लड़की मैना। जैसे पहली ही नजर में वो अपना दिल हार बैठे, एकदम दीवाने से हो गए। 12 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 10 दिनों तक तो उन दोनों की नजरें मिलती रहीं, फूल खिलते रहे, लेकिन 11वें दिन जब मैना आई ही नहीं तो उन्हें ढूंढते ढूंढते शिव कुमार बटालवी साहब ने एक गाना लिखा, या यूं कह सकते हैं कि एक इश्तिहार लिखा, एडवर्टीजमेंट। ये गाना उन्होंने लिखा तो मैना को ढूंढते हुए था, क्योंकि मैना कहीं गुम हो गई थी। लेकिन ये गाना सुनने के बाद हम सभी के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छा गया। सुनिए वही गाना जो उन्होंने लिखा था मैना के लिए।

0: अर्शोताओं, अब बात मसीह करे आजम यानी महान संगीतकार नौशाद साहब की, लेकिन सबसे पहले उनका ये गीत।
1: लागा गोरी गुजरिया से

फिल्म गंगा जमुना में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी साहब को साथियों के साथ। और दोस्तों, फिल्मी जगत में जब भी संगीत निर्देशन की बात होगी ना, तो नौशाद साहब का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्हें मसीकरे आजम यानी कि महान संगीतकार, बॉलीवुड के तानसेन और द मुगले आजम ऑफ म्यूजिक के रूप में भी सम्मानित किया जाता रहा है। और इसका खास कारण ये है कि उन्होंने मुगले आजम, बैजू बावरा और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में शास्त्रीय रागों पर आधारित अमर संगीत दिया।

श्रोताओं, लखनऊ में जन्मे नौशाद साहब ने अपने देश के अलग अलग इलाकों की धुनों और शास्त्रीय संगीत को अपनी सरगम का साथी बनाया। फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार नौशाद साहब को 1981 में दादा साहब फाल्के और फिर 1992 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। फिल्म ताजमहल में उन्होंने अपने जीवन का आखिरी संगीत दिया। 5 मई 2006 को संगीत की दुनिया का ये ध्रुव तारा हमें आखिरी सलाम कह गया, लेकिन उनका संगीत आज भी हम सभी के दिलों में सदा के लिए अमर है।

साथी श्रोताओं, आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं फिल्म निर्देशक, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर और गीतकार गोविंद म्यूनिस साहब को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1929 में उन्नाव जिले के पासाखेड़ा गांव में जन्मे गोविंद म्यूनिस साहब की पढ़ाई कानपुर में हुई। 1953 में मुंबई, जो कि उस समय का बॉम्बे था, आने के बाद पहले सत्येन बोस साहब के असिस्टेंट के तौर पर और फिर डायलॉग राइटर, लिरिसिस्ट और स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पर भी वे बोस साहब से जुड़े रहे। 1971 की फिल्म उपहार और राशि प्रोडक्शंस की कुछ और फिल्मों के लिए भी उन्होंने डायलॉग लिखे, जिसके बाद उन्हें 1982 में नदिया के पार से जुड़ने का भी मौका मिला।

और श्रोताओं, अब हम बढ़ चले हैं अपने कार्यक्रम गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड के अंतिम पड़ाव की ओर। जाते जाते आपको सुनवा रही हूँ एवरग्रीन सिंगर शान की आवाज में ये एवरग्रीन सॉन्ग। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। तब तक के लिए अपनी साथी अपनी मितवा और आपकी अपनी दीप्ति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन

0: क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का। और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर

0: पर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: तमिलनाडु में तमिलिगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: पुदुचेरी में मनातीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। यह सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग

0: शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली सातवें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to 2 more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured 3 internationals. Calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. Political activities intensify for government formation in West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. And in cricket, India retain its top position in ICC Men's T20 rankings. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity.
2: 5,660 crore rupees ka.
3: This project is worth 5,660 crore rupees and consists of 3 components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores
2: tak cotton ka puri supply chain ko maintain karna.
1: The scheme aims to develop high yielding variety seeds that are resistant to diseases and pests while promoting the large scale adoption of modern crop production technologies. The scheme is expected to benefit around 32 lakh cotton farmers and boost cotton production to 498 lakh bales by 2030-31. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. The Minister shared that the scheme aims to provide credit guarantee support to

0: ने बिल्कुल
1: बिल्कुल सभी आपने दुरुस्त फरमाया और ये सांस की तकलीफ आज के दौर में एक संगीन मसला बनती जा रही है और अगर बरवक्त इस पर तवज्जो ना दी गई तो ये मजीद जानलेवा साबित होगी।
0: ये तो खैर आप सही कह रहे हैं।
1: तो सभिया क्यों ना आज की इस गुफ्तगू में हम सांस से जुड़ी बीमारियों और खास तौर पर दमा यानी एस्मा के मुताल्लिक कुछ बातचीत करें।
0: ये तो और भी अच्छी बात है क्योंकि आज का तो ये दिन भी है।
1: बिल्कुल, और ये बातचीत सामिन के लिए सूदमंद भी साबित होगी।
0: बहुत ज्यादा सूदमंद साबित होगी नईम साहब, बहुत ही शानदार ख्याल है आपका। तो सामिन, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि आज हम मना रहे हैं अस्थमा का आलमी दिन और इसी मुनासबत से हम आपको बताएंगे अस्थमा से जुड़ी जरूरी बातें, यानी इस बीमारी की अलामत क्या है, इसकी वजूहत क्या होती है, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है और इसका दुरुस्त इलाज क्या है।
1: बेशक सही कहा आपने सभिया।
0: तो हर साल आज का दिन इसीलिए मनाया भी जाता है सामईन, ताकि इस बीमारी के बारे में लोगों में बेदारी पैदा की जा सके। ये नईम साहब एक ऐसी सूरत हाल है जो हिंदुस्तान में लाखों लोगों को मुतासिर करती है और ये न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हम सभी जानते हैं हर उस दिन जो कि आलमी तौर पर मनाया जाता है, जैसे हम अक्सर कवर करते हैं अपने प्रोग्रामों में कि आज फला दिन है, आज फला दिन है, तो इसका मकसद क्या होता है, किसी खास थीम से इसको मरबूत कर दिया जाता है। और नईम साहब, इस साल का जो थीम है वो है एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड।
1: तो सभिया, इसका मतलब क्या हुआ आम जबान में?
0: मतलब जो एक आम इंसान इसे जानेगा कि ये क्या है, तो भाई सोजिश या फिर सूजन को कम करने वाले इनहेलर्स तक रिसाई हर उस शख्स के लिए फौरी जरूरत है जो इस बीमारी में मुब्तला है।
1: सभी अभी कुछ सही कहा आपने और ये जो थीम या मरकजी ख्याल है इस बार का, इस बात पर जोर देता है कि दमे के मरीजों में ज्यादातर स्कूली बच्चे शामिल हैं, उनको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिलने चाहिए, यानी कि जो इनहेलर्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो उनको जरूर मिलने चाहिए। ये इनहेलर्स अफराद में अस्थमा के अटैक के खतरे को कम करते हैं। एस्मा से होने वाली जो अमवात हैं, आपने देखा होगा इसकी वजह से काफी लोग जो है
0: मौत का शिकार
1: बन जाते हैं, लुकमा अजल बन जाते हैं, तो इस शरह को कम करना भी बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो इन्हीं इसका काम करते हैं,
0: यानी कि जो शरह अमवात है वो कम हो जाती है। तो समीन, दमे का जब अटैक होता है तो इस दौरान फेफड़ों की हवा की नालियों में रुकावट पैदा हो जाती है,
1: सही कहा,
0: जिससे जिसमें ऑक्सीजन पहुंचाने की सलाहियत कम हो जाती है। ये रुकावट मसल्स के सिकुड़ने और दबाव की वजह से होती है और कई बार सूजन भी इसका सबब बनती है, जिससे हवा की नालियों की दीवारें सूज जाती हैं और बलगम या खांसी की वजह से नालियां जो हैं वो बंद हो जाती हैं और हम सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगते हैं।
1: दरअसल सभिया, दमा एक तवील मुद्दती बीमारी है, जिसे हम कह सकते हैं क्रॉनिक डिजीज। उनमें से ये आती है। मुख्तलिफ जराइद में शाया होने वाली रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 26 करोड़ से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हैं और ये बीमारी हर साल 4,50,000 से ज्यादा अमवात का सबब बनती है। और सभी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हिंदुस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग दमे की बीमारी में मुब्तला हैं, जिसकी वजूहत में फजाई आलूदगी, मौसमी तब्दीलियां और अंदरूनी एलर्जी वगैरह शामिल है।
0: अंदरूनी एलर्जी से क्या मुराद?
1: सभी देखिए, अंदरूनी एलर्जी से मुराद ये कि आप घर में जब बावर्ची खाने में खाना बनाते हैं
0: जी
1: तो दाल में तड़का लगता है, छौंका लगता है,
0: बिल्कुल,
1: और उसके बाद आपने देखा होगा जो दमे के मरीज होते हैं उनको एकदम से खांसी उठने लगती है। घर में आप कोई साफ सफाई कर रही हैं, जो एलर्जींस हैं वो आपके सांस के नाली में जाते हैं और सांस की जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है। सभिया, आलमी तौर पर एस्मा का दिन पहली मरतबा 1998 में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्मा यानी जीना के जरिए मनाया गया, ताकि इस बीमारी के बारे में बेदारी पैदा की जा सके और दुनिया भर में इसके इलाज में सुधार किए जा सके। हर साल मई के महीने के पहले मंगल के रोज मुनक्किद किया जाने वाला ये एस्मा का दिन, ये दिन एस्मा की देखभाल से जुड़े चैलेंजेस को भी उजागर करता है।
0: बहुत अच्छी मालूमात दी आपने तो हमें, और यकीनन हमारे सुनने वाले जो हैं वो भी इससे मुस्तफीद हुए होंगे कि कब से ये दिन मनाया जा रहा है।

0: वैसे नईम साहब, हिंदुस्तान में ये बीमारी सेहत के हवाले से एक फिक्र का मौजू बनी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और आज का ये जो दिन है ये बेदारी पैदा करने और एक मौसर इंतजाम

0: के करीब पनयूर में पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज पार्टी की मीटिंग में जनाब विजय को बाकायदा अपना लीडर मुंतखब किया। इधर सबकदोश होने वाले वजीर आला एम के स्टालिन ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हालिया चुनाव नतीजों के बाद वो इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि उनका मानना है कि ताकत के जरिए वोट लूटे गए और पूरे इंतखाबी अमल में धांधली की गई है। आज कोलकाता में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव में उनकी पार्टी हारी नहीं है। उन्होंने चुनाव कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसने भारत की जमहूरी तारीख में एक तारीख बांब रकम किया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान की सख्त नुक्ताचीनी की है। बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें या न दें, मौजूदा असेंबली की मुद्दत कार इस माह की 7 तारीख को खत्म हो रही है। इसके बाद कोई भी इस ऐवान का रुकन नहीं रहेगा। बीजेपी के रहनुमा बिमल शंकर नंदी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी जमहूरियत का मजाक उड़ाने और तातुल पैदा करने में कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि हमारे आईन में इस तरह की नामुनासिब सूरत हाल से निमटने के लिए दफात मौजूद हैं। उधर इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और वजीर आला ममता बनर्जी की जानिब से भवानीपुर असेंबली हलके में वोटों की गिनती से मुतालिक बेबुनियाद और झूठे इल्जामात को वाजह तौर पर रद्द कर दिया है। साउथ कोलकाता के जिला इंतखाबी अफसर की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक यह वजाहत की गई है कि गिनती का पूरा अमल कमीशन के उसूल जवाबित के तहत किया गया। वियतनाम के सदर थुलाम भारत के पहले सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दाखिली उमूर के वजीर ममलुकत नित्यानंद राय ने उनका इस्तकबाल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा है कि उनका यह दौरा भारत और वियतनाम के दरमियान कसीर रुखी और मुतहरिक बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। कल वियतनाम के सदर थुलाम को राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाजाब्ता रस्मी इस्तकबालिया दिया जाएगा। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके साथ वसी तर मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। शाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भी उनसे मुलाकात करेंगी। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज कहा है कि तरक्याती इश्तराक भारत और जमायका के दरमियान शराकतदारी का अहम सुतून है। डॉ जयशंकर जमायका की वजीर खारजा कामिना जॉनसन स्मिथ और दीगर काबिनी अरकान के साथ अपनी मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। भारत ने मर्दों की आईसीसी टी20 दर्जाबंदी में एक मरतबा फिर अपनी सरकर्दा पोजीशन हासिल कर ली है, जिससे क्रिकेट में उसकी शानदार कारकर्दगी का इजहार होता है। भारतीय टीम टी20 आलमी कप के खिताब का कामयाबी के साथ दिफा करने वाली पहली टीम बनी और उसने मार्च में रिकॉर्ड तीसरी मरतबा यह खिताब जीता। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने कपास की पैदावारियत के मिशन के लिए 5,600 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दी है। काबीना ने गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के 2 मजीद यूनिटों की भी मंजूरी दी है। उसने 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने की मुनसिफाना और एजाजी कीमत 365 रुपए फी क्विंटल को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब अमारात के फुजैरा पर हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। और क्रिकेट में भारत ने आईसीसी मर्दों की टी20 रैंकिंग में अपने पहले मकाम को बरकरार रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1170 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। सामिन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है सांस के मुतालिक बीमारियां, वजूहात, बचाव और इलाज। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में इस्तकबाल है आपका।
2: नमस्कार जी।
1: सांस से मुतालिक क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं?
2: सांस की जब हम बात करते हैं तो हम फेफड़ों की बात कर रहे हैं। अच्छा। और फेफड़े से अगर हम बीमारियां देखें तो हम उनको 2 ब्रॉड भागों में डाल सकते हैं। एक तो इन्फेक्शन के कारण, एक जो हम कहते हैं एनवायरमेंट या अपने लाइफ स्टाइल के कारण।
1: जी,
2: अगर हम इन्फेक्शन के कारण कहें तो निमोनिया है, सांस की तकलीफ, जैसे बच्चों में निमोनिया हो जाता है, बुजुर्गों में निमोनिया हो जाता है, छाती की इन्फेक्शन है और टीबी की बीमारी है जो भी फेफड़ों में हो जाती है, जिससे बीमारी फैल भी सकती है। तो इन्फेक्शन एक हिस्सा है जो फेफड़ों में हो सकता है। दूसरा

0: हिस्सा जो हम देखें जिनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें दमे की शिकायत है, ब्रोंकाइटिस है, लंग कैंसर है, आजकल पोल्यूशन के कारण जो सांस में तकलीफ होती है उसके कारण जो सांस की नाली में सोजिश हो जाती है वो बीमारियां हैं, और कई कई और अनकॉमन बीमारियां जैसे फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं, ये सब नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज हैं और ये कुछ हद तक बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है और कुछ आदतें भी हमारी ठीक नहीं है, जैसे स्मोक करना, धूम्रपान करना, वो धुआं जब फेफड़े में जाता है तो उससे भी फेफड़े को नुकसान होता है और उससे भी फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और फेफड़े की बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा, आमतौर पर कहते हैं कि मेरा सांस बहुत फूल रहा है, तो क्या ये भी लंग्स की बीमारी के हवाले से या सांस की बीमारी के हवाले से?
0: तो सांस जो फूल रहा है उसके कारण ये हो सकता है कि आपके बॉडी में, आपके मसल में ऑक्सीजन कम मिल रही है, और इसके अगर हम देखें तो हम तीन ब्रॉड कारण कह सकते हैं। ज्यादातर जो कारण होते हैं वो फेफड़े के कारण, अगर आपके फेफड़े कमजोर हैं तो फेफड़े जो हवा से ऑक्सीजन लेके खून में डालते हैं वो नहीं डाल पाते, लेकिन इसके अलावा अगर ऑक्सीजन खून में आ गया तो जो मसल तक पहुंचना है या जिससे सांस चढ़ सकता है वो ब्लड ने करना है, हार्ट ने करना है। अगर आपका हार्ट कमजोर है तो भी आपको सांस चढ़ने लगेगा, तो चलने पे लोग कहेंगे सांस चढ़ता है, छाती में दर्द होती है जिसको हम अंजाइना कहते हैं,
1: जी जी,
0: वो हार्ट के कारण भी सांस चढ़ सकता है। और महिलाएं में कभी ये होता है कि खून की कमी है,
1: एनीमिया, जिसे
0: एनीमिया है, तो खून कम है तो जो खून से ऑक्सीजन जाता है, जो ब्लड सेल ले जाते हैं वो कम है, तो इसीलिए जब महिलाएं जिनमें खून कम है या जिन लोगों को हीमोग्लोबिन जो कम होता है जब वो तेज चलते हैं तो उनको भी सांस चढ़ने लगता है, क्योंकि उनके हार्ट ठीक है, फेफड़ा ठीक है, लेकिन जो खून की नालियां जो ऑक्सीजन मसल में लेके जाती हैं उसमें खून इतना है नहीं कि वो इतना ऑक्सीजन ले पाए और फिर उनको सांस चढ़ने लगता है।
1: डॉक्टर साहब, ये कैसे अंदाजा होगा कि ये जो प्रॉब्लम है जो सांस फूलने वाली, दिल के हवाले से है या फेफड़ों के हवाले से है?
0: तो इसका एक ये है कि अगर आपको कोई दिल की बीमारी है जैसे हाइपरटेंशन है या और कोई है तो आपका सांस जो है वो दिल के कारण हो सकता है। अगर कुछ और लक्षण है जैसे मान लो किसी को सांस चढ़ रहा है
1: जी,
0: साथ में खांसी भी होती है या सांस चढ़ते समय छाती से आवाज आती है सांस की, वो ऐसे लक्षण है जो कहेंगे कि ये जो सांस चढ़ रहा है ये फेफड़े के कारण है।
1: तो सांस की जो बीमारियां हैं जैसे आपने बताया कि सांस फूलना या और जो फेफड़ों के हवाले से बीमारियां हैं, उनमें सबसे अहम बीमारी यानी कि जिसको आम तौर पर लोग जिसको कहते हैं कि साहब हमें ये प्रॉब्लम है, वो कौन सी है?
0: तो अगर हम इन्फेक्शन में देखें तो दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टीबी है और निमोनिया है, और बच्चों में
1: क्यूरेबल तो है आजकल,
0: ये दोनों क्यूरेबल हैं, और इसलिए इसमें जो हम कहते हैं कि ठीक टाइम पे डायग्नोज हो जाए और दवाई पूरी ली जाए तो पूरा क्योरेबल है। टीबी के इलाज थोड़ा लंबा चलता है लेकिन पूरा से ठीक हो जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये समझने की कि इलाज जल्दी और ठीक करें तो फेफड़े खराब नहीं होंगे। कह रहे हो फेफड़े कमजोर हैं तो अगर इनहेलर ले रहे हैं या कोई नेबुलाइजर ले रहे हैं वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। कई दफा ऐसे होता है कि आपके सांस के कारण आपके फेफड़े की कैपेसिटी कम होती है, जो सांस के मसल हैं जो सांस हवा अंदर बाहर लेते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, तो अगर आप उनको कहें कि एक्सरसाइज करें, योगा भी कर सकते हैं जिससे फेफड़े फूले और फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ेगी तो उससे भी फर्क पड़ेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये है कि आमतौर पर जैसे मौसम बदलता है तो बदलते मौसम में जो सांस की बीमारी वो ज्यादा बढ़ जाती है,
0: बिल्कुल,
1: क्या एहतियात लेनी चाहिए?
0: सांस ठीक रखने के लिए कुछ प्रिवेंशन मेजर जो है बहुत जरूरी है
1: जी,
0: थोड़ा एक्सरसाइज करें, गलत आदतों से बचें, धूम्रपान जो है वो ना करें, सिगरेट या बीड़ी पीने से फेफड़े खराब होते हैं और इसलिए इसको रोकना चाहिए। एयर पोल्यूशन हो तो जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो बाहर ना जाएं क्योंकि उनके फिर फेफड़ों पे असर पड़ने से तकलीफ हो सकती है। जो महिलाएं अंदर खाना बना रही हैं हम ये कहेंगे कि या तो ऐसा चूल्हा यूज करें जिससे धुआं जो है बाहर जाए, स्मोकलेस चूल्हा जो कहते हैं, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो खाने बनाने का जो किचन है वो खुला रहे, क्रॉस वेंटिलेशन हो या उसमें एग्जॉस्ट फैन हो जिससे धूल धुआं ना रहे, वो महिलाओं को भी फायदा होगा और जो बच्चे वहां पे अंदर खेल रहे हैं उनको भी फायदा होगा। तो एक्सपोजर अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें और धूम्रपान बिल्कुल ना करें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरी, आपका आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सामीन को बहुत अहम मालूमात दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मेरी तरफ से भी शुक्रिया।
1: कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से इस प्रोग्राम में आज आपसे मुखातिब थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है,
2: ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। उमर खय्याम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन शायरों में होता है, हालांकि वो बुनियादी एतबार से एक रियाजी दान और साइंसदान थे।

0: उमर खयाम के दौर को और उनके हम असरों की जिंदगी और उससे जुड़े मसाइल को लेबनान के मुसन्निफ अमीन मालूफ ने अपने नॉवल समरकंद में जिस खूबसूरती से कलमबंद किया है वो अपनी मिसाल आप है। अमीन मालूफ ने रुबाइयात के मखतूसे की गुमशुदगी और फिर उसकी बाजियाफ्त का किस्सा सुनाते हुए हमको उस दौर की जिंदगी को जितने करीब से दिखाया है कि हम किसी फिल्म की तरह से उमर खय्याम और उनके दौर को देख पाते हैं। पेश खिदमत है उमर खय्याम और उनकी रुबाइयात की दास्तान का ड्रामाई अक्स जिसे तरतीब दिया है जनाब दानिश इकबाल ने।
1: उमर खय्याम को तो आप जानते हैं, मशहूर फलसफी, साइंसदान, माहिर फलकियात और शायर।

0: उमर खयाम, तुम समरकंद में नाशना नहीं, कम उम्र के बावजूद तुम्हारे इल्मो फजल के पहले ही यहां चर्चे हैं और मदरसों में तुम्हारे गुण गाए जाते हैं। यहां मशहूर है तुमने इस्फहान में इब्ने सीना का एक मुश्किल रिसाला 7 बार पढ़ा और नीशापुर लौटने पर हर्फ बा हर्फ हाफिजे से दोहरा दिया।
1: खय्याम की फिक्रों में अभी कोई कमी नहीं हुई थी। शाफई मजहब के काजी के मुंह से इब्ने सीना का हवाला कोई बहुत काबिले इत्मीनान बात नहीं थी। अबू ताहिर ने कलाम जारी रखा।
0: मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनो। परवरदिगार ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, जहानत, कादिरुल कलामी, सेहत, वजाहत, तलब इल्म और जीने और कुछ करने की ख्वाहिश। तुम्हें मर्दों से सताइश मिलेगी और मैं समझता हूं औरतों की आरजूमंद आहें। मैं समझता हूं कि जब खुदा ने सब कुछ दिया तो उसने खामोशी की दानाई से भी तुम्हें महरूम नहीं रखा, जिसके बगैर ना तो तुम्हारी किसी खासियत की कदरदानी जारी रहेगी और ना उन्हें कायम रखा जा सकता है।
2: तो क्या जो मैं सोचता हूं उसके इजहार के लिए बुजुर्गी का या फिर अपने पीर फरतूत हो जाने का इंतजार करूं?
0: कबल इसके कि वो सब जो तुम सोचते हो उसका इजहार कर सको, तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चे बूढ़े हो चुके होंगे। हम खौफ के अहद में राजों वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे दो चेहरे हों, एक का रुख अवाम की तरफ रखो, दूसरे को अपने खुदा के लिए रखो। अगर तुम अपनी आंखों, कानों और जबान की सलामती चाहते हो तो भूल जाओ कि तुम उनके मालिक हो। इस किताब को अपने पास रखो, जब कभी कोई शेर तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी नौ के जबान तक आ जाए तो उसे रोके रखो। इन औराक पर उसे नकल कर लो और जब नकल कर रहे हो तो इस नाचीज अबू ताहिर को याद कर लेना।
1: मंगोल नस्ल का नसर खान वालिये मावरा उन नहर एक कांसी रंग का देव था जो कारचोबी का लहराता जुब्बा पहने हुए अपने तख्त के सामने खड़ा था। उस पर छोटी छोटी अंदर को धसी हुई आंखें हाजरीन में किसी शिकार को ढूंढ रही थी। जैसे ही वो लोगों को देखता हर इंसान अपने बराबर वाले की आड़ में सरक जाता, अपने पुश्त, गर्दन और कंधों को ढीला छोड़ देता और तूफान के गुजर जाने का इंतजार करता। जैसा कि हर हुक्मरान की समरकंद पर आमद होता था उसे भी जश्न का दिन होना चाहिए था, लेकिन आज माहौल ठीक नहीं लग रहा था।

0: आजिज है, बाहर जा सकते हैं।
1: कई शायर दो उल्टे कदम उठाकर खामोशी से खिसक गए। कतार से सिर्फ एक औरत ही निकली और मुस्तहकम चाल से आगे बढ़ी। उमर खयाम की आंखों में तजस्सुस को तैरते देखकर काजी ने सरगोशी की।
2: ये बुखारा की एक शायरा है, जहां तखल्लुस है। नौ उम्र बेवा है, बदमिजाजी उसका जेवर है।
3: इजाजत है?
0: जरूर पढ़ो।
3: तेरी दुनिया में जंगल है, हरे बागात हैं और दूर तक फैले बयाबां हैं। कहीं पर बस्तियां हैं, पहाड़ों पर उतरते बादलों में रक्स करता है समंदर चार सू, और उसी की हमरही में दो कदम चलती रही हूं मैं। हुजूम रोजो शब में किस जगह सहमी हुई हूं मैं, कहां हूं मैं, कहां हूं मैं, तेरी मंजिल के रास्ते में कहीं ठहरी हूं मैं, कहीं ठहरी हूं मैं।
4: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
2: और अब बारी है मुमताज आलिम और फलसफी शायर उमर खयाम की। उमर खयाम जिनसे नबातात का कोई राज छिपा नहीं और ना ही सितारों की कोई चाल, खयाम आज पेश करेंगे अपनी एक नुमाइंदा रुबाई।
5: है मुद्दते उम्र बस दो रोजा गोया, नदी का सा पानी है कि सहरा की हवा। दो दिन का कभी गम नहीं होता है मुझे, एक दिन जो नहीं आया है, एक दिन जो गया।
0: दो दिन का कभी गम नहीं होता है तुम्हें, एक दिन जो नहीं आया है, एक दिन जो गया। वाह वाह वाह वाह, इनका मुंह जर से भर दिया जाए।
1: उमर हक्का बक्का रह गया, उसको लगा उसे उपकाई आ जाएगी। ये बात काजी अबू ताहिर की तवज्जो में आ गई और वो परेशान हो गया कि कहीं शाह को नागवार खातिर न महसूस हो।
6: बराह मेहरबानी क्या मेरे आका मुझे माफ करेंगे? मैं रोजे से हूं और अपने मुंह में कुछ डालने से आजिज।
0: लेकिन रोजों का महीना अगर मुझसे गलती नहीं हो रही तो 3 हफ्ते पहले ही खत्म हो चुका है।
6: मेरे आका, रमजान के दिनों में मैं नीशापुर से समरकंद का सफर कर रहा था। मैंने इस अहद के साथ उस वक्त रोजे नहीं रखे कि बाद में यह फर्ज पूरा कर लूंगा।
0: क्या तुमने मुझे अपने इनकार की असल वजह बताई है?
6: सिर्फ यही वजह नहीं है।
0: साफ साफ कहो, मुझसे खौफ सदा होने की हाजत नहीं।
6: ये गुर्बत नहीं जो मुझे आपके दर पे लाई है, ये गुर्बत नहीं जो मुझे आपके दर पे लाई है। मैं मुफलिस नहीं कि भूखा हूं पैसे का, आपसे सिर्फ इज्जत चाहता हूं, हालांकि ये बात मैं मुंह से नहीं कहने का।
0: वाह वाह वाह।
1: अबू ताहिर की हालत खराब थी और उसे यकीन नहीं था कि वो वहशी शाह को दोबारा काबू में ला सकेगा। कई दरबारियों ने तो तूफान की आमद से कबल ही वहां से रुखसत हो जाने में आफियत समझी। उमर खयाम ने इस अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए जहान की आंखों को तलाश किया। वो एक सतून से अपनी पुश्त टिकाए खड़ी थी, इस तरह कि चेहरा हाथों में दफन था। क्या यह हो सकता है कि वो उसकी खातिर डर से कांप रही थी? बिलाखिर खान बुलंद हुआ, साबती कदमी से उमर खयाम की तरफ आया, गले लगाया, हाथ थामा और उसे लेकर वहां से चल दिया। उस रात जब खयाम अपने मेहमान खाने की तरफ वापस आ रहा था, जहां छोटी नहरों से घिरे एक बाग में इन दिनों उसकी रिहाइश थी, तो उसने ये सोचकर

0: कुछ पढ़ने लिखने का वक्त कहां रहा है? चिराग साथ नहीं लिया था। उसके रास्ते पर चांद की रोशनी का मध्यम सा उजाला था। जो जो वो काजी के मस्कन से कुछ आगे बढ़ा, उसे बाकायदा टटोल टटोल कर अपना रास्ता तलाश करना पड़ा। खयाम ने अभी बमुश्किल ही अपने कमरे में कदम रखा था कि उसे मीठी मीठी सी सरजनिश की आवाज सुनाई दी।
1: मुझे उम्मीद थी तुम कुछ जल्दी आ जाओगे। अरे तुम खामोश हो, यानी तुम ये यकीन करने से इनकार कर रहे हो कि कोई औरत यूं बेबकाना तुम्हारे कमरे में दराने की जुर्रत कर सकती है।
2: तारीकी में नहीं जान सकता कि तुम कौन हो।
1: वो दरबार में हमारी नजरें मिली थी तो हम दोनों की आंखें चकमका उठी थी, लेकिन खान और दरबारियों की मौजूदगी से तुमने अपनी नजरें फेर ली थी। शायद ये ख्याल आया हो कि एक औरत की खातिर अमीर के खैसो गजब को मोल लेने से क्या हाथ आएगा, वो भी एक बेवा जो जहेज में सिर्फ एक बेबाक जबान और एक उदास माजी ही ला सकती हो। अरे तुम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो। अच्छा खैर, मैं खुद ही बोलती रहूंगी, और यूं भी अब तक सिर्फ मैंने ही कोई कदम उठाया है। जब तुम दरबार से जा रहे थे, मैंने तुम्हारी पूछगछ की और तुम्हारी कयामगा का पता लगाया। हाय, अब कुछ तुम भी बोलो ना, बोलो।
2: मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन शायद कुछ समझ सकूं इसलिए सुने जा रहा हूं। अपने लड़कपन में या उसके बाद भी जब कोई लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई, मैंने कई बार रात को ख्वाब में उसी निगाह को मुजस्सम होते हुए देखा, गोश्त पोस्त में बदलते हुए। लेकिन ख्वाब के बाहर तुम पहली लड़की हो जो यहां मेरे साथ हो।
1: लड़की नहीं, मैं औरत हूं।
2: सिर्फ औरत नहीं, अंधेरे में टमकती हुई एक हसीन मूरत हो, और वो भी एक मजबूत दिल वाली नर्मो नाजुक शायरा।
1: नर्मो नाजुक? हाँ, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुमने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया, मुझे देखा तक नहीं, और यकीनन देखोगे भी नहीं, क्योंकि इससे पहले कि सूरज मुझे दिखा दे, मैं यहां से रुखसत हो जाऊंगी।

0: قبلیو در بالا نقاب بنیویو
1: و اکیلی نقاب چو می بنیو و پس

0: उस लजीज नशीली रात के बाद हर रोज महल में उनकी मुलाकात होती है, लेकिन वो कोशिश करते कि एक दूसरे की तरफ न देखें, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया को दुनिया का सबसे हसीन राज मालूम हो जाए। हर शाम खयाम जल्द से जल्द अपने आशियाने पे लौट आता और अपनी महबूबा का इंतजार करता। किस्मत ने उन्हें चंद रातें ही तोहफे में दी थी।
1: दरवाजा बंद कर दो, हमारी खुशियों की आवाज किसी कान में ना पड़ जाए।
0: ठीक है,
1: कर दो दरवाजा बंद।
0: कर दिया।
1: सुनो, पहले कोई नई रुबाई सुनाओ ना।
2: वो जान जो ताजा जवानी दे दे, वो जान जो ताजा जवानी दे दे, उस जान को भर के यारे जानी दे दे। लाजल्द कि है एक धोखा ये दुनिया सारी, लाजल्द कि है एक धोखा ये दुनिया सारी, हो जाएगी खत्म ये कहानी दे दे। वो जाम जो ताजा जवानी दे दे, उस जाम को भर के यारे जानी

0: आराम थी। शिकरा थोड़ी देर के लिए छोटे भाई की दलील मान गया और चारों नाचार उस वक्त का इंतजार करने लगा जब रमजान खत्म होगा और उसकी फौज की ईद होगी। जब शहर वालों को भाइयों की बहस की हवा लगी और एहसास हुआ कि ईद के दिन से औरतों से जना बिल जबर और मर्दों का कत्लेआम होने वाला है, तो बस यहीं से खौफ अजीम की इब्तिदा हुई। जिना बिल जबर से ज्यादा हतकामेस उसकी नागुजीरियत का एहसास है, यानी हर औरत भाई से जिल्लत इंतजार में मुब्तला थी और मर्द मरने के लिए। दुकानें खाली हो गईं, मर्द कहीं जा छुपे और उनकी बीवी बेटी ने उन्हें अपनी बेचारगी का मातम करते देखा। क्या करें, कैसे फरार हों, किस राह से जाएं? जालिम हर तरफ दनदनाते फिर रहे थे, वो मुसलसल पिए हुए होते और भयानक मजालिम की उम्मीद में दीवाने हो रहे थे।
1: खुदा ने इंसान को बनाकर एक अजीम गलती की है।
0: क्या रमजान में हर शख्स रोजों के खत्म होने और ईद की आमद की ख्वाहिश नहीं करता? पर उस साल वो चाहते थे कि रोजे कभी खत्म ही ना हो, ईद कभी ना आए। जब ईद का चांद नजर आया तो ना कोई खुश हुआ ना मुस्कुराया, पूरा का पूरा शहर ही कुर्बानी का बकरा था। चांद रात जब भले लोगों की हर उम्मीद पूरी होती है, शबे अजाब थी। हजारों खानदानों ने मस्जिदों और औलियाओं की दरगाहों की मुश्तबा अमान में आंसू बहाए और दुआएं मांगी। उस वक्त किले के अंदर दोनों सलजूक भाइयों के दरमियान जबरदस्त बहस जारी थी।
2: मेरी फौज को महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, वो सिर्फ इसलिए लड़ने के लिए आमादा हुए थे कि हम इस मालदार और खूबसूरत औरतों के शहर को उन्हें लूटने देंगे। मैं उन्हें और रोकूंगा तो वो बगावत कर देंगे, लेकिन हमने खुदा का नाम लेकर इस शहर के लोगों से एक वायदा किया था। अभी कब्जे के लिए बहुतेरे शहर बाकी हैं, इस्फहान, शिराज, री, तबरेज और उनसे आगे दूसरे। अगर हम निशापुर के हथियार डालने पर अपने वायदे के बावजूद लूट मचाते हैं तो फिर कोई और दरवाजा हमारे लिए नहीं खुलेगा। कोई और किला बंद शहर अपनी मुहाफिज फौज के साथ जर्रा बराबर भी कमजोरी नहीं दिखाएगा।
3: अगर हम अपनी फौज से ही हाथ धो बैठे और हमारे सिपाही हमें छोड़कर भाग खड़े हुए तो ये जो तुम बहुत से शहरों का ख्वाब देख रहे हो ना, ये कैसे फतह होंगे? वफादार तरीन सिपाही भी आप शिकायत कर रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं।
4: तुम्हारा भाई सही कह रहा है।
5: शराफत बुजदिलों का नकाब है।
4: अरे तुम दोनों भाई जो करो हमें मंजूर है, लेकिन जो करना है जल्दी करो।
5: हाँ हाँ जल्दी करो।
3: सुनो बहुत बातें हो ली, मैं अपने आदमियों से जाकर कहता हूँ कि शहर के साथ जो करना है करें। अगर तुम अपने आदमियों को रोके रखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम और तुम्हारे सिपाही अलग, मैं और मेरे सिपाही अलग।
0: छोटा भाई अचानक उनके दरमियान से उछलकर दूर हो गया और उसने एक खंजर उठा लिया।
4: अरे ऐसा मत करो,
3: तुम अपने बड़े भाई के लिए खंजर उठाते हो तो ये लो, मेरी तलवार भी नियम से बाहर है।
5: खबरदार, कोई कुछ नहीं बोलेगा ना मदाखलत करेगा। जैसा कि सलजूक का रिवाज है, भाइयों को अपना हिसाब खून से तय कर लेने दो।
2: बिरादर, मैं तुम्हें अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी फौज को रोक तो नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने वादा खिलाफी करके अपनी फौज को इस शहर पर छोड़ दिया तो मैं खुद को तो मार ही सकता हूं ना। मैं ये खंजर अपने सीने में उतार लूंगा।
3: क्या?
2: हाँ।
1: फिर क्या हुआ?
0: ये कहते हुए तुगरल बेग ने खंजर का कब्जा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अनी को नीचे अपने सीने की तरफ कर दिया। उसका भाई हिचकिचाया

0: भाई भी तो था। बाजू फैलाकर उसकी तरफ कदम बढ़ाकर आया और देर तक गले लगाए रखा। बड़े भाई ने वादा किया कि वो छोटे की मोहब्बत में शहर से किया वादा निभाएगा। इस तरह मेरा शहर कत्लेआम से बच गया, निशापुर की जान बख्शी हो गई। लेकिन वो शहर उस रमजान के खौफ अजीम को कभी नहीं भूलेगा।
1: वही सलजूक फौज अब यहां आ रही है, नहीं मालूम हम कल होंगे या नहीं, इसलिए चलो मर जाते हैं।
0: क्या?
1: एक दूसरे पर। मुझे यूं प्यार करो कि जैसे ये रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो।
0: वैसे यही बात अगर मैं तुमसे कहूं कि शायद मेरी जिंदगी बन जाए।
1: कहे कि तो देखो।

0: सलजूक फौज ने जंग जीत ली, लेकिन शहर के लोगों के साथ कोई जुल्म या ज्यादती नहीं हुई। सुल्तान जलालुद्दीन मलिक शाह सलजूक ने उमर खयाम को दावत दी कि वह अहम साइंसदानों को इकट्ठा करे और एक साइंसी तजुर्बा गाह कायम करे। सलजूकी हुक्मरानों के दौर में उमर खयाम ने बतौर शायर गैर मामूली शोहरत हासिल की। जब 14 अप्रैल 1921 की शबे तारीख में मशहूर जहाज टाइटैनिक गर्क हुआ, तो उसकी सबसे कीमती चीज एक किताब थी। उमर खयाम दानाए ईरान और तूरान और बकिया जहान की रुबाइयात का एक लौता मुकम्मल नुस्खा। ये थी उस किताब की,
1: उमर खयाम और उनकी रुबाइयात की दास्तान। अभी आपने जनाब दानिश इकबाल का तरतीब करदा ये ड्रामाई अक्स सुना। हिस्सा लेने वाले फनकार थे बाबला कोचर, नीरज शर्मा, अशोक मलकानी, नरेश खन्ना, प्रवीण शर्मा, रजनी शर्मा, गीता वर्मा और सुरेंद्र सागर। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन शादाब अली खान।
2: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामाइन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों को फिल्म थी खानदान। नगमा निगार राजेंद्र किशन, मौसीकार रवि। सुनना चाहती थी पद्मा टाकीज, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और प्रखर शाह। रायपुर अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी और आफिया अंसारी। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद और तबस्सुम। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा बानो और रईसा खातून। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भाविया कुमारी। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्य देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन। नवरंग मार्केट शेगांव महाराज से लक्ष्मण झिंझोर के, रोहिणी झिंझोर के और अभिजीत। कलनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन शर्मा। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। भोपाल से चंपालाल दुबे, अनंत और दर्शित। और जनाब ये मेल है अस्तुपुरा जिला मऊ से मदर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। गणेशपुर गंडुंडवारा से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां और शिफा सिमरन। गांव फरासी सार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। गणेशपुर गंडुंडवारा एट उत्तर प्रदेश से शर्मा परवीन, एम फारूक शेख और बेबी मुस्कान। गांव हांडीखेड़ा जिला से हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से अनंता भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत। नूर महल मैसूर से तमड़ी, बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और फरहत जहानाज। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे और शुभम बेंडे। सलार पहलगाम से कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन।

तमिल इरशाद प्रोग्राम की अगली पेशकश फंटूश फिल्म का नगमा किशोर कुमार की आवाज में सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साहिमा नवाज और हसन नवाज। मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शाह। गंडुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी और मोहम्मद आयान अंसारी। वरुण जलका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे। नाजमंदिल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम और रुबीना वसीम। गांव लोगढ़ ठाकरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से सवर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह और राजदीप सिंह। रहट गांव कैंप अमरावती से श्याम किटे, वंदना किटे और कार्तिक किटे। उत्तमनगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल और भानु प्रकाश के साथ कमला रानी भी हैं। और ये हैं जनाब गिरिडीह बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से हिना साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम। गाडगी नगर यावतमाल महाराज से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। हकीकतपुरा मऊ से मुन्नाबाई सावंकर, पिंकी सावंकर और आर्यन। साईनगर आरबी महाराज से नरेंद्र मिर्गे, प्रियादर्शनी मिर्गे और डॉक्टर प्रियंका काल पांडे। गांव गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफार खत्री। आप सबकी पसंद आपकी नजर है।

आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज में राजेंद्र किशन का लिखा है गीत, जिसे मौसीकी सजाया सी रामचंद्र ने। फिल्म है अलबेला। सुनना चाहते हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। और ये हैं जनाब ले चुका हूं मैं, इनका भी मेल ले चुका हूं। इतनी जल्दी जल्दी दोबारा मेल डाल दी साहब आपने लोगों ने, याद हो रही है। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत और निखिल कांगड़ा। और ये हैं जनाब कादरगंज रोड गंडुंडवारा से शादाब शमशाद, अंदलीप खानम और सारा फातमा शेख। मंजू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, सागर बालूजा और मधु बालूजा। और जनाब गांव जाखोद से शंभुल दयाल खटक, विमला देवी और योगेश कुमार खटक। चंद्रनगर सहारनपुर से आशु नारंग, सोनाली नारंग और उनके अहले खाना। नलेश्वर नगर नरविल महाराज से पीस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले और आशीष मोरकर। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंठी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सरवारा अब्बासी। और जनाब ये हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसा, खतीजा बेगम और मोहम्मद अशफाक। आप सबकी पसंद आपकी नजर है।

और शामिल लीजिए, सुनी मुकेश की आवाज में आवारा फिल्म का नगमा। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबख्श, बेगम राबे शेख, शेख रहीमुन्ना, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, शंकराती चौहान और उत्कर्ष चौहान, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और वर्षा सुमन, और यही जनाब गांव नईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से।

शर्मिदा और अलकमिदा गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता पटियाली रोड गंडुनवाड़ा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी नुसरत बेगम और एजाद कुरैशी शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल आशा सपकाल और विशाल सपकाल और ये जनाब किदवाई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान सबिया जुबैर और अंजुमन खान अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सबिया अनस और रेहान सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ और गंजुनवाड़ा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमरान अनाज और नवाज शेख।

मुजाहमत कर सकते हो। साथ ही इसके तहत फसल की पैदावार से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजियों के वसी पैमाने पर इख्तियार करने को फरोग दिया जाएगा। इन कोशिशों पर रियासी सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों और रियासी जरिए यूनिवर्सिटियों के जरिए अमल किया जाएगा। मरकजी काबीना ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस स्कीम का मकसद क्रेडिट गारंटी ताउन फराहम करना है ताकि कारोबारी इदारे मगरबी एशिया के बहरान के सबब पैदा हो जाने वाली मुख्तसर मुद्दती नकद रकम की फराहमी की कमी को पूरा कर सकें। इस स्कीम के तहत MSMEs को 100% क्रेडिट गारंटी फराहम की जाएगी, जबकि गैर MSMEs और एयरलाइंस सेक्टर को 90% गारंटी फराहम की जाएगी। काबीना ने सन 2026-27 के गन्ने के सीजन के लिए गन्ने की एक मुनसिफाना एजाज कीमत 365 रुपए फी क्विंटल की भी मंजूरी दी है, जो 10.25% की बुनियादी रिकवरी शरह पर मबनी है। जनाब वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से गन्ने की तकरीबन 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जबकि चीनी की मिलों और इससे मुतालिक दीगर सरगर्मियों से वाबस्ता तकरीबन 5 लाख कारकुनों को भी फायदा होगा। मरकजी काबीना ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2 मजीद सेमीकंडक्टर प्रोजेक्टों की मंजूरी दी है, जिसमें मुल्क का पहला कमर्शियल मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले प्रोजेक्ट शामिल है, जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इसके साथ सेमीकंडक्टर की पैकिंग की सहूलियत भी शामिल है। जनाब वैष्णव ने बताया कि मंजूर शुदा तजावीज के तहत तकरीबन 3,936 करोड़ रुपए की मजमूई सरमायाकारी के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट कायम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन प्रोजेक्टों से तवक्को है कि तकरीबन 2,230 तरबियत याफ्ता पेशावर अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। मरकजी काबीना ने आज पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद तरमीमी बिल 2026 पेश करने की तजवीज को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद Act 1956 में तरमीम की जाएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूरशुदा तादाद में 4 का इजाफा किया जा सके। इस तरमीम के बाद भारत के चीफ जस्टिस के अलावा जजों की तादाद मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जजों की तादाद में इजाफे से सुप्रीम कोर्ट ज्यादा मौसर बेहतर अंदाज में काम कर सकेगी, जिससे मुकदमात के जल्द फैसले और फौरी इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजरिया में किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है, जिनमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि शहरियों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि सभी मामला बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए पुरअमन तरीके से हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने इस जरूरत को उजागर किया कि आबनेर हुर्मुज से बिला रुकावट और महफूज जहाजों का गुजरना इलाकाई अमन इस्तेकाम और आलमी सतह पर तवानाई की फराहमी के लिए जरूरी है। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरल में असेंबली इंतखाबात के नतीजे के ऐलान के बाद हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत के बाद रियासत में नई हुकूमत की तश्कील और हब बाजारी की तकरीब के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तवक्को है कि काबीना के नए अराकीन इस माह की 9 तारीख को हलफ लेंगे, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। हलफ बर्दारी की तकरीब में उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह शरीक होंगे। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बने सी जोसफ विजय की तमिलागा वेटिली कजंगम टीवी के रियासत में 22 सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जिसने 108 सीटें जीती हैं। पहली मरतबा इंतखाबात में पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद टीवीके के 9 मुंतखब मेंबरान असेंबली ने चेन्नई के करीब पनीयवार में पार्टी हेडक्वार्टर में कानूनसाज पार्टी की मीटिंग में जनाब विजय को बाकायदा अपना लीडर मुंतखब किया। इधर सुबुकदोश होने वाले वजीर आला MK स्टालिन ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। केरलम में कांग्रेस की क्यादत वाली UDF
حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں غیر رسمی بات چیت کر رہی ہے۔ پڈوچیری اسمبلی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی فیصلہ کن جیت کے ایک دن بعد نئی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں صلاح و مشورہ شروع ہو گیا ہے۔ پڈوچیری میں بی جے پی کے ریاستی صدر وی پی راملنگم کی صدارت میں پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر پر آج بی جے پی کے نو منتخب شدہ

0: सुराना और दीगर सीनियर लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान मनाडी पेट से मुंतखब एमएलए ए नमिसिव्यान को असेंबली में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर मुंतखब किया गया। वियतनाम के सदर टॉम लैम भारत के पहले सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने उनका इस्तकबाल किया। सोशल मीडिया की पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा कि उनका यह दौरा भारत और वियतनाम के दरमियान कसीर रुखी और मुतारिक बामी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। वियतनाम के सदर का यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकत दारी तक वसत देने के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इससे कबल वियतनाम के सदर ने बिहार के बोधगया का दौरा किया, महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। वो वियतनामी मॉन्स्ट्री भी गए जहां उन्होंने मुख्तलिफ मजहबी सकाफती सरगर्मियों में शिरकत की। वजीर खाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि तरक्याती इश्तराक भारत जमैका के दरमियान शराकत दारी का अहम सतून है। डॉक्टर जयशंकर जमैका की वजीर खारजा केमिना जॉनसन स्मिथ और दीगर काबीना अरकान के साथ अपनी मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। भारत ने मर्दों की आईसीसी टी20 दर्जाबंदी में एक मरतबा फिर अपनी सरकर्दा पोजीशन हासिल कर ली है, जिससे क्रिकेट में उसकी शानदार कारकर्दगी का इजहार होता है। भारतीय टी20 टीम आलमी कप का खिताब कामयाबी के साथ दिफा करने वाली पहली टीम बनी और उसने मार्च में रिकॉर्ड तीसरी मरतबा खिताब जीता। इस कामयाबी के साथ भारत 275 दर्जाबंदी प्वाइंट के साथ सरकर्दा पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब रहा। इंग्लैंड की टीम 262 प्वाइंट के साथ दूसरी पोजीशन पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया 258 प्वाइंट के साथ तीसरे मकाम पर रहा। बैन अवी क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक ताजा दर्जाबंदी मई 2025 से खेले गए मैचों की बुनियाद पर की गई, जबकि गुज्तर 2 बरस के मैच 50% के तनासब से रखते हैं। इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने कपास की पैदावारियत के मिशन के लिए 5,600 करोड़ रुपए की रकम की मंजूरी दी है। मरकज ने मुख्तसर मुद्दती नकद रकूमात की फरहमी के सिलसिले में कारोबार को मदद देने के तनाजुर में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी। काबिनर गुजरात में सेवी कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के 2 मजीद यूनिट को मंजूरी दी। उसने 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने की मुनसिफाना और एजाजी कीमत 265 रुपए फी क्विंटल की भी मंजूरी दी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 4 से बढ़ाकर 37 कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजीरा पर हमले की मजम्मत की, जिसमें 3 भारतीय बाशिंदे जख्मी हुए हैं। उसने बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया ताकि पूरे मगरबी एशिया में अमन इस्तेकाम को बहाल किया जा सके। और क्रिकेट में भारत ने आईसीसी मर्दों की टी20 रैंकिंग में अपने पहले मुकाम को बरकरार रखा है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है तमिल इरशाद प्रोग्राम की कुछ और नगमें।

मोहम्मद रफी और मीरबाई कर्नाटकी की आवाज में आप सुन रहे थे बिखरे मोती फिल्म का नगमा। मौसीकार थे वसंत देसाई। सुनना चाहते थे जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट। और ये जना गांव परसोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख, सायरा बानो शेख और करिश्मा शेख। खत्री कॉलोनी नया अंजार कश्य अब्दुल कादर खत्री और विक्रम सिंह जडेजा। ज्ञानेश्वर मंदिर हलनी जिला नांदेड़ से मास्टर एस के पाटिल और मीना रानी पाटिल। जेलो टाइगर छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और बल्लू निषाद। अलीगढ़ से सलीम अख्तर और रेशमा परवीन। छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और मोहम्मद अयूब खत्री। यवतमाल से अनिल उषा बुरांडे और अनुश्री धनश्री बुरांडे। धनोडी तिलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और बीबी आलिया। और ये अगला मेल है जनाब, कहां से ये अगला मेल है, बंडू लोहार पोपलगढ़, देवदास पोपलगढ़ और हरिभाव बिड़वे तालुका नेवासा खुपटी महाराज से। पुराना तालाब नुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमनाज अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी। और चक पांच एमडी पतरोड़ा से मंगल जनागल, रोशनी जनागल और अंकुर जनागल। सलाही सोकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा। और अगला मेल कई देख रहा हूं, कई कई लोग मिल एक साथ कई कई लोग मेल डाल दिए। सिंगोली मीरगंज बरेली से दिशान वारसी, इमरान शेख और अयूब खान। और बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन और अब्दुल्ला आजाद। और समझ लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में टावर हाउस फिल्म का नगमा। बोल असद भोपाली के हैं, मौसीकार रवि, सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। जिला नांदेड़ एताला महाराज से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल और शुभम प्रसाद जायसवाल। वैसे ही ईस्ट मुंबई से मोहम्मद रफी, नहीं माफ कीजिएगा, मोहम्मद शराफत रंगरेज, आसिफ रंगरेज और सादिक रंगरेज वैसे ईस्ट मुंबई से। अच्छा, इन्होंने वैसे लिखा मैसेज, ठीक है। और जनाब आजाद नगर अक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। बागपत वालों का मेल पढ़ चुके हैं। साईनगर आरबी महाराज से नरेंद्र मिर्गे, प्रियादर्शी, ये भी पढ़ चुका हूं मैं, देखिए दोबारा भेज दिया आपने। मानेवाला रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर और अनिकेत। और ये हैं जनाब अश्वानी चुक साहब, आशु चुक भी हैं साथ में और गोविंद चुक हैं पंचकुला सेक्टर 9 से। और ये हैं गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से, सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा और इंदु पार्वती।

नारायण शर्मा गढ़ मोहल्ला महलिंगापुर से ऐनुद्दीन बनहट्टी, मुमताज बनहट्टी और रियाज बनहट्टी, मोहल्ला हलवायन राजकोट शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी और सितारा बेगम, और यहीं सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन और मुज्जू बाबा, रेलवे रोड गंडुनवार से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बेबी फातिमा गाजी।

राहुल नगर अमरावती, सिद्धार्थ गुंडानी, अर्चना गुंडानी और प्रणय प्रसिद्धि। और इस तरह से मुझे लग रहा है मेल दोबारा आने शुरू हुए। काशी कृष्ण कलोनी हाथी से राजू मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। अमीर खुसरो रोड गंडुंडवारा से डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार और भुवन प्रकाश गौतम। और गोविंदपुर सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर और तुषार सिंह।

0: اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام سرخیوں میں
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में. इसके अंतर्गत सुनिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ऐतिहासिक जनादेश और सरकार गठन की तैयारियों पर चर्चा. इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव.
2: देश में हुए चार राज्य और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के नतीजे जो हैं अब हमारे सामने हैं. कल इन सारे असेंबलीज में गणना हुई है. हम आज बात कर रहे हैं दो खास राज्यों की जिनका डिसाइसिव मैंडेट है, एक हिस्टोरिक मैंडेट भी है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु. सबसे पहले पश्चिम बंगाल की यदि बात करें, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि वैसे तो ये अब नंबर्स ऑलमोस्ट फाइनल हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और आज उसके पास 206 सीटें उन्होंने जीती हैं. ये दो तिहाई का बहुमत है उनके पास जिससे वो इंडिपेंडेंटली सरकार वहां बना सकते हैं. तृणमूल कांग्रेस जो अभी तक वहां पावर में थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में, उनके 80 सीटें हैं. एक असेंबली की 294 सीटें हैं टोटल पश्चिम बंगाल में. एक में फाल्टा में जो है इलेक्शन कमीशन ने रीपोल ऑर्डर किया है, वो बाद में होगा कुछ दिनों के बाद. अदिति जी, मैं आपसे दो चीजें जानना चाह रहा था. हम तमिलनाडु पर इसके बाद जाएंगे, हम दोनों ही राज्यों के बारे में बात करेंगे, बट जब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसका क्या मायने हैं इस जीत के बीजेपी के लिए और क्या मायने हैं इस हार के टीएमसी के लिए.
3: देखिए,

0: भाजपा के लिए इस जीत के बहुत बड़े मायने हैं दो वजहों से। पहली वजह ये है कि उनका सारा जो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है वो बंगाल और बंगाल की जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म है उससे जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ की स्थापना हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही आते थे। भाजपा को जो सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल प्लेज और कमिटमेंट सालों साल रहा आर्टिकल 370 हटाना JNK से, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था जिसको भाजपा ने 2019 में पूरा किया। तो एक तो ये, दूसरा ये कि भाजपा की राजनीति में नेशनलिज्म का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब जानते हैं उनके जो आइकॉन्स हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम के लिरिसिस्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हों या श्री अरबिंदो हों, ये सब बंगाल से आते हैं। और हम सब जानते हैं कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो ब्रिटिश ने इसलिए किया था क्योंकि बंगाल की जो नेशनलिज्म की स्पिरिट है उसको तोड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र अपने स्पीचेस में बहुत बार किया है। तो एक तो ये, और दूसरा कारण ये है कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसका सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है हर भारतीय स्टेट में। अगर आप देखें कंपेयर करके, करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश से है जहां से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। अब जब भाजपा यहां जीत चुकी है तो अपने तरीके से इस स्टेट को चला सकती है, और उनकी पहली जीत है बंगाल की हिस्ट्री में, तो इसलिए इसका महत्व है।
1: मैं बंगाल पे फिर आपको लेकर आऊंगा, बट उसके पहले हम तमिलनाडु की भी बात करना चाहेंगे, जहां पर टीवी के जो विजय हैं, विजय जो एक्टर हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने 2024 में ये पार्टी लॉन्च की थी और आज इस चुनाव में उनके पास 108 सीटें आ गई हैं। ये एब्सोल्यूट कंप्लीट मेजोरिटी तो नहीं है, वहां 118 सीटों की दरकार है सरकार बनाने के लिए, 234 सदस्यों की असेंबली है। और डीएमके जो वहां पावर में थी वो 59 सीट्स और AIADMK और उनके एलाइज 47 सीट्स हैं। तो वहां पर जो विक्ट्री है, आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि ये द्रविड़ियन पॉलिटिक्स का कुछ अंत जैसा दिखता है, तो इस राज्य के और इस विक्ट्री का आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है अदिति जी कि ये किस तरह की विक्ट्री है, इसके मायने क्या हैं?
0: देखिए, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और एक टेक्टोनिक शिफ्ट है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। अगर आप 1957 से लेकर आज तक की राजनीति तमिलनाडु में देखें तो दो द्राविडियन पार्टीज ने उसको डोमिनेट किया है। द्राविडियन पॉलिटिक्स क्या है नीला? द्राविडियन पॉलिटिक्स के दो पिलर्स हैं। पहला तो ये पिलर है कि रीजनल आइडेंटिटी, तमिल आइडेंटिटी की ये लोग बात करते हैं, ये एंटी हिंदी इम्पोजिशन की बात करते हैं। तीसरा सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, लार्जली एंटी ब्राह्मणिज्म, एंटी सनातन एंड एंटी जिसको कहते हैं हिंदी पॉलिटिक्स रहती है।
1: पश्चिम बंगाल पे वापस आते हैं और तमिलनाडु पर, दोनों पर ही इनफैक्ट, कि अब दोनों ही जैसा है कि अब एक बड़ा जो घटनाक्रम है वो तो हो गया, इलेक्शंस कैंपेन हो गए, इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ गए, अब है गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सरकार के बनाने की प्रक्रिया। तमिलनाडु में तो एक दूसरा डायनेमिक्स है, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी वहां पर सरकार के पास एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, बट पश्चिम बंगाल के बारे में यदि बात करें तो प्रोसेस चालू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही अनाउंस कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो इसके सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं, साथ ही साथ उनके को ऑब्जर्वर भी हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी जी। तो ये प्रोसेस उन्होंने इनिशिएट किया है। मुझे ऐसा ध्यान आता है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव की रैली में भी कहा था कि यदि हमें मैंडेट मिलता है तो हम 10 मई के पहले सरकार बनाएंगे। तो मेरा आपसे ये समझना था कि क्या किस तरह की प्रोसेस होगी, अब क्या कैसे एक चीफ मिनिस्टर के नाम को फाइनलाइज किया जाएगा, और कौन प्रोबेबल है? शुभेंदु अधिकारी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, क्या वो इसके सबसे प्रबल दावेदार हैं?
0: जी, शुभेंदु अधिकारी इसलिए दावेदार हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 में वो तृणमूल कांग्रेस से आए ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते थे। उन्होंने ममता बनर्जी को दो बार हराया है, 2021 में नंदीग्राम से और अब भवानीपुर से कल दोबारा हराया है। और बीजेपी की जो साइट में एक्सपेंशन चल रही थी एक लंबे प्लान के तहत, उसको बहुत बल शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में दिया है क्योंकि वो टीएमसी की राजनीति को अंदर से अच्छे से पहचानते थे और टीएमसी की राजनीति को तोड़ने के लिए कोई अंदर का स्ट्रेटेजिस्ट जरूरी था। जो काम हेमंत बिस्व सरमा ने भाजपा के लिए नॉर्थ ईस्ट में और आसाम में किया है, वो भी कांग्रेस से आए थे, आपको याद है, वही काम शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से भाजपा में आए उन्होंने सेफरन फोर्सेस के लिए किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के ज्यादा चांसेस।
1: और जैसा कि अब सरकार बनने की प्रक्रिया है तो जो विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद नाम फाइनलाइज होंगे और उस तरह से ये प्रोसेस जाएगा, और मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंस है इस काम में, तभी शायद गृह मंत्री खुद सेंट्रल, और मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता है कि कभी वो शायद पहले एक किसी इलेक्शन में थे, आप बेहतर बता पाए।
0: नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी का अमित शाह जी को वहां सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाना एक सिग्नल देने के इक्वल है लोगों को कि बंगाल उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कितनी ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, क्योंकि अमित शाह पर्सनली लीड कर रहे थे बंगाल कैंपेन को। नीला बाप जानते हैं कि वहां स्टेशन थे, पार्क स्ट्रीट में उन्होंने घर ले रखा था, वहीं रह रहे थे, और उनका वहां रहना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि वो लोगों को ये सिग्नल और ये संदेश देना चाहते थे कि वो बिना किसी भय के बाहर निकलकर वोट करें। और आप जानते हैं कि 90% से ज्यादा बंगाल में जो वोट पड़ा उसका क्लियर बेनिफिट कल भाजपा को देखने को मिला है।
1: तमिलनाडु में जैसा कि हम बात कर रहे थे मैम कि 118 का वहां पर मैजिक फिगर है या सिंपल मेजोरिटी 118 सदस्यों के आने पर होती है, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या एफर्ट होगा टीवीके का? आज टीवीके ने सरकार बनाने का क्लेम भी प्रस्तुत किया है, गवर्नर को लिखा है विजय ने, उन्होंने ईमेल किया है उनको एक पत्र और कहा है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है। और मैं कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स को सुन रहा था जहां उनका कहना था कि कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है, कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं, IUML, CPI, CPIM और VCK, इनके पास 2 विधायक हैं और DMDK के पास 1। तो क्या यहां पर डिले हो सकता है, क्या आपको लगता है ये सरकार आसानी से बन जाएगी?
0: देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति उत्पन्न हुई है तमिलनाडु में। जैसा आपने कहा कि एक्टर विजय, जिनकी सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी है, उन्होंने द्राविडियन पार्टीज को हराकर अब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये जाहिर है। अब उन पर निर्भर है निलाब कि वो किसका समर्थन लेना चाहते हैं, उनको कोई भी समर्थन देने को तैयार होगा, या अन्ना DMK लेड BJP NDA अलायंस भी तैयार होगी, कांग्रेस भी तैयार होगी, और जैसा आपने कहा बाकी दल भी तैयार होंगे। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर विजय NDA अलायंस के साथ जाते हैं तो सेंटर में भाजपा रूल होने की वजह से उनको फायदा हो सकता है गवर्नेंस को आसान करने में। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि विजय की जो राजनीति है वो थोड़ी एंटी BJP, एंटी अन्ना DMK, उन्होंने अपनी रैलीज में भी इन लोगों के खिलाफ बयान दिए थे, तो आसान नहीं होगा इनके साथ जाना। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस, जिसके पास 5 सीटें हैं, एक VCK पार्टी है तमिलनाडु की, उनके पास 2 सीट आई है कल, और CPI के पास भी 2 सीट्स हैं और CPI M के पास भी 2 सीट्स हैं, तो अगर ये चारों इकट्ठे हो जाएं, अपने आप को सेक्युलर ब्लॉक बता रहे हैं ये लोग, ये इकट्ठे होके 11 सीट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और TVK को मेजोरिटी लाइन के पार कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
1: बिल्कुल आदित्य जी, फिर से आपको बंगाल की एक बात पे ले जाना चाहूंगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि मुद्दे बहुत सारे थे वहां, और बंगाल में हमने देखा SIR का बिल्कुल लास्ट समय तक वहां ट्राइब्यूनल्स भी थे, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा है, आपने बॉर्डर का बात किया, पश्चिम बंगाल का, साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल दोनों ही का बहुत लंबा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, इन्फिल्ट्रेशन का इशू रहा है, रिवराइन बॉर्डर्स हैं, कई पोरस गैप्स हैं जो आज भी फेंस नहीं है, तो इसके कारण से ये भी एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी की बात है, 15 साल की MC सरकार थी, नौकरियों की हो, इन्वेस्टमेंट की हो, बिजनेस की हो, सारी बातें हैं। वैसे तो एक ही दिन हुआ है, अभी तो बहुत सारा एनालिसिस फिगर्स का और क्लेम्स काउंटर क्लेम्स का बकाया है, बट आपको क्या लगता है, कैसा आप समझते हैं इसको, कि किस तरह से ये मुद्दे लोगों के दिमाग में और उनके एक्चुअल टर्नआउट पे इफेक्ट किए होंगे?
0: देखिए निलाब, जब इतना बड़ा जनादेश मिलता है किसी पार्टी को तो वो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से कभी नहीं मिलता, हर फैक्टर का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन रहता है। SIR ऑफकोर्स एक फैक्टर था बंगाल में, कोई उसको नकार नहीं सकता है, और हम सब जानते हैं कि 20 लाख के करीब लोग अभी एडजुडिकेशन में हैं, और बहुत सारे जो बोगस वोट्स थे वो हटाए भी गए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है जो बहुत पीरियड्स पे होती रही है और ओवर ड्यू थी, और इसलिए हर जगह हुई है और भी स्टेट्स में हुई है। सेकेंड जो फैक्टर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ गया है, वो महिला सेफ्टी को लेकर जो टेंशन थी महिलाओं के बीच, RG कार में जो रेप केस हुआ था उसमें जो ममता बनर्जी का रुख रहा था, वो सिंडिकेट राज जो है, लोगों को पैसा देना पड़ता है काम करवाने के लिए, उससे भी लोग दुखी थे। एक टीचर स्कैम वहां बहुत बड़ा मुद्दा बना, उससे भी दुखी थे। प्लस जो भाजपा ने इलीगल इमिग्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन की बात कही, और ये भी प्रॉमिस किया कि 6 महीने में सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, इन सब बातों का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। और प्राइमा फेसाइड जब हम डेटा को देखते हैं तो हम ये पाते हैं नीला कि न सिर्फ हिंदू कंसोलिडेशन भाजपा के पीछे नजर आ रही है, महिलाओं ने भी भाजपा को बढ़ चढ़कर वोट दिया है और ट्राइबल वोट भी बहुत हद तक भाजपा को पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट, जो ऐसा माना जा रहा था कि एन ब्लॉक TMC को जाएगा, वो नहीं गया है। तो वो एक विश्लेषण का विषय है।
1: मैं आपसे तमिलनाडु के बारे में भी एक सवाल करना चाहूंगा, बट मैं अंत में पूछता हूँ, हम बंगाल पे हैं तो उसी पे। मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी का था, क्योंकि अब उनको मैंडेट आ गया है, 5 साल सरकार उन्हीं ने चलानी है, आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं आप, क्या प्रायोरिटीज होंगी, बीजेपी ने क्या कमिट किया था, और अब आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से, जिस तरह से अपनी डबल इंजन की सरकार वो कहते हैं, सेंटर में भी है, तो ये भी आरोप था केंद्र सरकार का कि जो कई सेंट्रल स्कीम्स हैं उनको लागू नहीं किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में, तो आप मैनिफेस्टो और जो केंद्र सरकार का अपना पॉलिसी है उसको कैसे देख रहे हैं?

0: किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा अब बंगाल में?
1: देखिए, सबसे पहली बात जो भाजपा करने जा रही है वो प्रधानमंत्री ने कल अपनी विक्ट्री स्पीच में ही कह दिया था। उन्होंने कहा था कि पहली ही कैबिनेट में आयुष्मान भारत स्कीम लागू हो जाएगी बंगाल में। सबसे पहला तो वो वेलफेयर स्टेप हो जाएगा लोगों के लिए। दूसरा, अगर आप प्रधानमंत्री की स्पीच को कल सुने, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कल कि भारत जब गोल्डन एज में था उस वक्त अंग बंग और कलिंग, ये तीन प्रदेश और ये तीन सेगमेंट्स भारत की विकसित यात्रा में बहुत बड़े स्तंभ थे। अंग से मतलब बिहार, बंगाल और कलिंगा ओडिशा। अब इस वक्त एक ऐसा संयोग है कि इन तीनों स्टेट्स में भाजपा की सरकार है। प्राइम मिनिस्टर ने कल ये कहा था कि इन तीनों सेगमेंट्स को हम दोबारा उनकी प्रिस्टीन ग्लोरी, जो प्रीवियस ग्लोरी है, वहां तक लेके जाएंगे, जिसका जाहिर सा मतलब ये है कि इंडस्ट्री को भी लौटाएंगे, इकोनॉमिक रिजुविनेशन करेंगे इन रीजन्स की। क्योंकि आप जानते हैं नीला, कि जो बंगाल है वो इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस होता था ब्रिटिश इन्वेजन के टाइम पर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले इनरोड्स जो भारत में बनाए थे वो कलकत्ता से ही बनाए थे। कलकत्ता के ट्रेडर्स को ही उन्होंने कोल्यूजन में भारत में एंट्री की थी। तो कलकत्ता एक बहुत रिच रीजन होता था हमारे देश का, इतना रिच होता था कि 10.5% भारत की जीडीपी में बंगाल का कॉन्ट्रीब्यूशन होता था, जो आज की रेट में 5% से नीचे चला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा एक तो इलीगल जितने भी लोग हैं उनको डिपोर्ट करेगी, दूसरा यूसीसी कायम करेगी, वेलफेयर पॉलिटिक्स कंटिन्यू करेगी। उन्होंने जितने भी ममता बनर्जी के प्रोग्राम्स चलते हैं, लक्ष्मी भंडार स्कीम वगैरह, उनका डबल अनाउंस किया था फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए। जैसे अगर ममता बनर्जी 1500 दे रही है तो भाजपा ने 3000 का प्रॉमिस किया है, वो सब भाजपा को देना होगा। और मुझे लगता है इकोनॉमिक रिजुविनेशन एक बहुत बड़ा प्लान बीजेपी सरकार का वहां होने वाला।
0: तमिलनाडु पे जाते हैं, टीवी के 2024 की स्थापित की हुई पार्टी है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आम आदमी पार्टी जो न्यूली फॉर्म हुई और उसके बाद तुरंत सत्ता में आई, तो अदिति जी कैसे देखते हैं आप, क्या ये नई पार्टियां एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, वर्किंग विद ब्यूरोक्रेट्स, अफसरों के साथ काम करना, कर्मचारियों के साथ काम करना, तो कैसे देखते हैं आप कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन कर पाएंगी एक नई पार्टी, क्या ये बहुत मुश्किल होता है?
1: नीलाब, अगर आप तमिलनाडु की गवर्नेंस देखेंगे तो ज्यादातर वहाँ ब्यूरोक्रेसी ही सरकारें चलाती आई है, और विजय को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करके, और अपनी सूझबूझ से अगर वो चलेंगे तो तमिलनाडु की राजनीति को अच्छे से चला पाएंगे और गवर्नेंस को भी।
0: इन सारे ही मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपका धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ऐतिहासिक जनादेश और सरकार गठन की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सामिन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1170 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है प्रोग्राम बज़्मे मौसीकी। बज़्मे मौसीकी प्रोग्राम में सामिन आसुनी पंडित विदुर मलिक से रागनट भैरव में ख्याल।

I don't know.

0: बजमी म्यूजिक के प्रोग्राम में सामिन भी आप सुन रहे थे पंडित विदुर मलिक से रागनट भैरव में ख्याल। इसके साथ ही आज का बजमी मौसीकी प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, शब के 12 बजे हैं आलमी खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फ्यूजीरा पर हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय बाशिंदे जख्मी हुए हैं। उन्होंने बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है ताकि पूरे मगरबी एशिया में अमन इस्तेकाम को बहाल किया जा सके। अमरीका ईरान ने खलीज में ताजा हमले किए हैं, दोनों ही ममालिक आप नए हुरमुस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, तरक्याती इश्तराक भारत और जमैका के दरमियान शराकत दारी का अहम सुतून है। रोमानिया के वजीर आजम इली बोलीजैन की हुकूमत पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक के वोट में शिकस्त के बाद गिर गई, जिसके सबब मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। और क्रिकेट में भारत ने आईसीसी मर्दों की T20 रैंकिंग में अपने पहले मुकाम को बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजीरा में किए गए हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिनमें 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि शहरियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि सभी मामले बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए पूरे तरीके से हल किए जाने चाहिए।

सतह पर तवानाई की फराहमी के लिए जरूरी है। अमरीका ईरान ने खलीज में एक दूसरे पर ताजा हमले किए जिससे आपने हुर्मुस कंट्रोल के सिलसिले में कशीदगी में इजाफा हो गया है और जंगबंदी के माहदे को नुकसान पहुंचा है। अमरीकी बहरिया के दो गार्ड्स मिजाइल शिकन हथियार आपने हुर्मुस को कामयाबी से पार करके खलीज अरब में दाखिल हो गए। ये मिजाइल लगातार और तालमेल के साथ की जाने वाली ईरानी गोलाबारी के बावजूद इस इलाके में दाखिल हो गए जिससे अमरीका के प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन का आगाज हो गया है। यूएसएस टुस्टम और यूएसएस मैसन में जिन्हें एपची हेलीकॉप्टर्स और दीगर तैयारों की मदद हासिल थी जब ये अपने रास्ते से गुजर रहे थे तो इनमें छोटी कश्तियों मिजाइलों और ड्रोन से की जाने वाली फायरिंग से आग लग गई। अलबत्ता किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि दिफाई निजाम ने रास्ते में ही तबाह कर दिया। इसी दौरान लड़ाई आपने हुर्मुस से भी आगे तक पहुंच गई है। अमरीकी वस्ती कमान के सरबराह एडमिरल ब्रैडली कोपर ने कहा है कि अमरीकी फौजों ने ईरान की 6 तेज रफ्तार कश्तियों को गर्क कर दिया है। ये कश्तियां आपने हुर्मुस में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा ईरान के क्रूज मिजाइलों को जो अमरीकी बहरिया के मिजाइल शिकन हथियारों को निशाना बना रहे थे अमरीका की फजाई फौज ने फजा में ही मार गिराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कोरिया से इस मिशन में शामिल होने को कहा है जिसके लिए जनूबी कोरिया ने कहा है कि वो इस दरख्वास्त पर गौर करेगा। इसी दौरान ईरान की वजीर खारजा ने खलीजी मुल्कों से कहा है कि उसकी कार्रवाई दिफाई नौयत की है और उन्हें वार्निंग दी है कि अब वो अपने इलाके को अमरीका या इसराइल की तरफ से ईरान खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इस वाक़े में फजूरा की हिकमत अमली की दिफाई अहमियत के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खाजा डॉक्टर एजय शंकर ने कहा है कि तरक्याती इश्तराक भारत जमैका के दरमियान शराकत दारी का एक अहम सुतून है। डॉक्टर जयशंकर जमैका के वजीर खारजा कामिना जॉनसन स्मिथ और दीगर काबिनी अरकान के साथ अपनी मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। वजीर खारजा ने कहा कि बातचीत जामे और ठोस रही जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया गया और ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने के नए मौकों की निशानदेही की गई। वियतनाम के सदर टॉम लैम भारत के पहले सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दाखिली उमूर के वजीर मुल्बिकत नित्यानंद राय ने उनका इस्तकबाल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा है कि उनका यह दौरा भारत और वियतनाम के दरमियान कसीर रुखी और मुतहरिक बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। वियतनाम के सदर का यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को जामे कलीज शराकत दारी तक वसत देने के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इससे कबल वियतनाम के सदर ने बिहार के बोधगया का दौरा किया, महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। वो वियतनामी मॉनेस्ट्री भी गए जहां उन्होंने मुख्तलिफ मजहबी सकाफती सरगर्मियों में शिरकत की। आज वियतनाम के सदर टॉम लैम को राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया दिया जाएगा। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सदर टॉम लैम के साथ वसी तर मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। शाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी उनका मिलने का प्रोग्राम। माइग्रेंट वर्करों के महकमे के सेक्रेटरी हैंस ली कागडेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब सिंह ने बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने मोबिलिटी और माइग्रेशन से मुतालिक मुश्तरका मामलात में इश्तराक पर वसी तर तबादला ख्याल किया। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन और ऐवान नुमाइंदगान के रुकन टकायुकी वाबयोशी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पुरी ने कहा कि मीटिंग के दौरान भारत और जापान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने, महफूज और पायदार तवानाई के मुस्तकबिल के लिए ताउन बढ़ाने

0: की दहाई में टोक्यो में एक नौजवान सिफारतकार के तौर पर गुजारे गए लम्हात को भी याद किया। भारत ने मर्दों की आईसीसी टी20 दर्जाबंदी में एक मरतबा फिर अपनी सरकर्दा पोजीशन हासिल कर ली है, जिससे क्रिकेट में उसकी शानदार कारकर्दगी का इजहार होता है। भारतीय टीम टी20 आलमी कप के खिताब का कामयाबी के साथ दिफा करने वाली पहली टीम बनी और उसने मार्च में रिकॉर्ड तीसरी मरतबा ये खिताब जीता। इस कामयाबी के साथ भारत 275 दर्जाबंदी पॉइंट्स के साथ सरकर्दा पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब रहा। इंग्लैंड की टीम 262 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया 258 पॉइंट के साथ तीसरे मकाम पर रहा। बैन अलाक्वामी क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक ये ताजा दर्जाबंदी मई सन 2025 से खेले गए मैचों की बुनियाद पर की गई है, जबकि गुज़श्ता दो बरस के मैच 50% का तनासुब रखते हैं। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजीरा पर हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय बाशिंदे जख्मी हुए हैं। उन्होंने बातचीत और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया ताकि पूरे मगरबी एशिया में अमन इस्तेकाम को बहाल किया जा सके। अमरीका ईरान ने खलीज में ताजा हमले किए हैं। दोनों ममालिक आबनाए हुरमुस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि तरक्याती इश्तराक भारत और जमैका के दरमियान शराकत दारी का एक अहम सुतून है। रोमानिया के वजीर आजम इली बोलेजान की हुकूमत पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक के वोट में शिकस्त के बाद गिर गई है, जिसके सबब मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। और क्रिकेट में भारत ने मर्दों की आईसीसी टी20 दर्जाबंदी में एक मरतबा फिर अपनी सरकर्दा पोजीशन हासिल कर ली, जिससे क्रिकेट में उसकी शानदार कारकर्दगी का इजहार होता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। क्लासिक की मौसीकी के प्रोग्राम में शामिल ना सुनिए पंडित अनंतलाल और हमनवाओं से शहनाई पर बजाया राग शुद्ध सारंग।

गरम कन्या फिल्म का नाम आप सुन रहे थे सुरेंद्र शर्मा की आवाज में, मौसीकार थे रवि। और आप सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश सितारा फिल्म का नगमा, खुर्शीद की आवाज में, नगमा निगार मुंशी दिल, मौसीकार रफीक गजनबी।

रतन फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे, करण दीवान की आवाज में, नगमनिगार थे डीएन मदोक, मौसीकार नौशाद। आज के आखिरी शो प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जिंदगी फिल्म का नगमा केएल सहगल की आवाज में।

में छोटी कश्तियां मिसाइल और ड्रोन से की जाने वाली फायरिंग से आग लग गई। अलबत्ता किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि दिफाई निजाम ने रास्ते में ही तबाह कर दिया। इसी दौरान ये लड़ाई आपने हुर्मुज से भी आगे तक पहुंच गई है। अमरीकी वस्ती कमान के सरबरा एडमिरल ब्रैडली कूपर ने कहा है कि अमरीकी फौजों ने ईरान की 6 तेज रफ्तार कश्तियों को गर्क कर दिया। ये कश्तियां आप नए हुर्मुज कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थीं। इसके अलावा ईरान के क्रूज मिसाइल के जो अमरीकी बहरिया के मिसाइल शिकन हथियारों को निशाना बना रहे थे, अमरीका की फजाई फौज ने फजा में ही मार गिराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कोरिया से इस मिशन में शामिल होने को कहा है, जिसके लिए जनूबी कोरिया ने कहा है कि इस दरख्वास्त पर गौर करेगा। इसी दौरान ईरान की वजीर खारजा ने खलीजी मुल्कों से कहा है कि उसकी कार्रवाई दिफाई नौयत की है और उन्हें वार्निंग दी है कि वो अपने इलाके को अमरीका इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इस वाक में फुजेरा की हिकमत अमली की दिफाई अहमियत के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। खलीज उमान पर मुत्तहिदा अरब अमारात के मशरक साइड पर वाक़ जो पूरी तरह आबनए हुर्मुज़ से अलग है और अबू धाबी के तेल कुओं से इसकी बंदरगाह तक आने वाली पाइपलाइन की वजह से यूएई ताकाबंदी के बावजूद आलमी मार्केट में कुछ खाम तेल भेज रहा है, जिससे उसने इशारा दिया है कि ईरान इस मुतबादल रास्ते को बंद कर देना चाहता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि तरक्याती इश्तराक भारत जमैका के दरमियान शराकत दारी का एक अहम सुतून है। डॉक्टर जयशंकर जमैका के वज़ीर ख़ारजा कामिना जॉनसन स्मिथ और दीगर काबीना अरकान के साथ अपनी मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बातचीत जामे और ठोस रही, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया गया और ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने के नए मौकों की निशानदेही की गई। वियतनाम के सदर टो लैम भारत के पहले सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने उनका इस्तकबाल किया। सोशल मीडिया के पोस्ट पर वज़ीरत ख़ारजा ने कहा कि उनके दौरा भारत और वियतनाम के दरमियान कसीर रुखी और मुतारिक बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। वियतनाम के सदर का यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकत दारी तक वसत देने के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इससे कबल वियतनाम के सदर ने बिहार के बोधगया का दौरा किया और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। वो वियतनामी मोनेस्ट्री भी गए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती सरगर्मियों में शिरकत की। आज वियतनाम के सदर को राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाज़ाब्ता रस्मी इस्तकबाल दिया जाएगा। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदर टोलाम के साथ वसी तर मामला पर तबादला ख्याल करेंगे। शाम में सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से भी उनका मिलने का प्रोग्राम है। रोमानिया के वजीर आजम इली बोलोजान की हुकूमत कल पार्लियामेंट में एतमाद की तहरीक में वोट में शिकस्त के बाद गिर गई, जिसके सबब मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई। द सोशल डेमोक्रेट जो पिछले माह नापसंदीदा माली कटौतियों के सबब इत्तेहाद से अलग हो गए थे, उन्होंने अहम अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर तहरीक पेश की थी। कानून साजों ने वजीर आजम बोलोजान के खिलाफ तहरीक की हिमायत की। 464 सीटों वाली पार्लियामेंट में तहरीक के हक में 281 वोट डाले गए। नेशनल लिबरल पार्टी के मेंबर बोलोजान ने जून 2025 में ओहदा संभाला था। उनकी हुकूमत को किफायत शहरी के इकदाम और अहम सरकारी असासों की फरोख्त के मंसूबे के सबब इंतहाई नुकताचीनी का सामना करना पड़ा, जिसके सबब असल हुक्मरान इत्तेहादी और सबसे बड़ी पार्टी सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने सख्त मुखालफत की। उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के माइग्रेंट वर्करों के महकमे के सेक्रेटरी हैंस ली कैगडेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब सिंह ने बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने मोबिलिटी और माइग्रेशन से मुतालिक मुश्तरका मामलात पर इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। पेट्रोलियम कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरपर्सन और ऐवान नुमाइंदगान के रुकन टाकायोकी काबायुशी से मुलाकात की।
एक सोशल मीडिया पोस्ट से जनाब पुरी ने कहा कि मीटिंग के दौरान भारत और जापान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने, महफूज और पायदार तवानाई के मुस्तकबिल के लिए ताउन बढ़ाने और जहाजरानी के शोबे में इश्तराक के नए मौके तलाश करने पर तबादला ख्याल किया।

0: किया गया। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत बुलंद अजाइम के साथ जैसे जैसे तवानाई में खुद की पालत की जानिब आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बामी फायदे पर मबनी साझेदारी के वसी मौके पैदा हो रहे हैं। जनाब पुरी ने अपने हालिया दौरे के तजुर्बात भी शेयर किए और 1970 की दहाई में टोक्यो में एक नौजवान सिफारतकार के तौर पर गुजारे गए लम्हात को भी याद किया। भारत ने मर्दों की आईसीसी टी20 दर्जाबंदी में एक मरतबा फिर अपनी सरकर्दा पोजीशन हासिल कर ली, जिससे क्रिकेट में उसकी शानदार कारकर्दगी का इजहार होता है। भारतीय टीम टी20 एलिम कप के खिताब का कामयाबी के साथ दिफा करने वाली पहली टीम बनी और उसने मार्च में रिकॉर्ड तीसरी मरतबा यह खिताब जीता। इस कामयाबी के साथ भारत 275 दर्जाबंदी प्वाइंट के साथ सरकर्दा पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब रहा। इंग्लैंड की टीम ने 262 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन, जबकि ऑस्ट्रेलिया 258 पॉइंट के साथ तीसरे मुकाम पर रहा। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजीरा पर हमले की मजम्मत की, जिसमें 3 भारतीय बाशिंदे जख्मी हुए हैं। उन्होंने बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया ताकि पूरे मगरबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बहाल किया जा सके। अमरीका ईरान ने खलीज में ताजा हमले किए हैं। दोनों ही ममालिक आपने हुरमुस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में है। वजीर खाजा डॉक्टर एजय शंकर ने तरक्याती इश्तराक भारत और जमैका के दरमियान शराकतदारी का एक अहम सुतून बताया। रोमानिया के वजीर आजम इली बोजान की हुकूमत पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक में वोट में शिकस्त में गाद गिर गई, जिसके सबब मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई। भारत ने आईसीसी मर्दों की टी20 रैंकिंग में अपने पहले मुकाम को बरकरार रखा है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शब का एक बजे चाहता है, यहां हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती है। सुबह 9:30 पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
3: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
2: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है।
3: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
2: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल है। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपनी प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। नीति आयोग ने सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में शासन को मजबूत करना, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है। पोर्टल का शुभारंभ नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने किया। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre to factory to fashion to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with the semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet also approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in Supreme Court by 4 from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved three multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinath, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal Assembly elections, The new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. In Tamil Nadu, actor turned politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetrikalagam TVK has emerged as the single largest

गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप लेंगे आनंद पुराने फिल्मी नगमों का। और अभी आपने सुना तू ही मेरी जिंदगी फिल्म से उसका टाइटल ट्रैक मोहम्मद रफी का स्वर था। अगला गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, फिल्म है तीसरा कौन, आशा भोसले की आवाज में, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म तीन देवियां से किशोर कुमार व अन्य साथियों की आवाजों में, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत एसडी बर्मन ने दिया था। अगला गीत पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म उपासना से।
1: सिखला

चलिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शोले से दो बैक टू बैक गीत। ये पहला गीत जो आप सुनेंगे उसे गाया है और संगीत आर डी बर्मन का है।

किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में आपने सुना फिल्म शोले से ये गीत। संगीत आरडी बर्मन का था और बोल लिखे थे जीपी सिप्पी ने। दोस्ती पर ये गीत बहुत ही फेमस है, आप सुनते ही रहते हैं जब भी दोस्ती की बात आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म प्यार ही प्यार से मोहम्मद रफी का स्वर है, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

किशोर कुमार की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म खुशबू से, संगीत आर डी बर्मन का था। अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं जिसमें आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की, संगीत आर डी बर्मन का है, फिल्म खेल खेल में।

0: किशोर कुमार व अन्य साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये पैपी गीत फिल्म कर्ज से। ये फिल्म 1980 में आई थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी गीत के साथ गीत सुनहरे पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी मिली है।
2: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
1: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन SIS से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये आरोपी सार्वजनिक जगहों पर रायसिन नाम के खतरनाक जहर से लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वाशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट USA निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उस पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान ने इन घटनाओं में किसी भी भूमिका से सख्ती से इनकार किया है। ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और हॉर्मूज जल डमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान जारी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity Kapas Kranti with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre to factory to fashion to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet also approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved three multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal Assembly elections, the new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. In Tamil Nadu, actor-turned-politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetri Kalagam TVK has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. The newly elected TVK legislators have formally elected Mr. Vijay as their leader in legislative party meeting at the party headquarters in Panayur near Chennai. Meanwhile, outgoing Chief Minister M.K. Stalin has submitted his resignation to the governor, which has been accepted. The BJP has appointed senior party leader and Union Minister Amit Shah as central observer for the election of the leader of the legislative party in West Bengal. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has been appointed as the central co-observer in the state. Union Minister JP Nadda has been appointed as central observer for the election of the leader of the legislative party in Assam. Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has been appointed as the central co-observer in the state. These names were approved by the BJP in Parliamentary Board for Central Observers. The Election Commission has categorically dismissed as

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर गजल और गीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसमें आप सुनेंगे के एस गोपाला कृष्णन द्वारा बजाए बांसुरी पर राग अभेरी।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने के एस गोपाला कृष्णन द्वारा बजाए बांसुरी पर राग अभेरी सुना। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 मई 2026। सुबह के 4:53 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आप सुन सकते हैं भद्रासन और अश्वथासन के बारे में। 5:20 का वक्त होगा देशभक्ति गीत का।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी, जबकि सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में, तो वहीं 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: गंदी सतवट ए जनेव जी का है ता पांडे खत ना हो टूटे ना मन लगे ना हो जल ना जाए तन सुमान स्नान का जो गल चले पाए चौंकन मुनाया बेचौंके पाया सिखा कंचनाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ चढ़ पिया लतगा गया
1: हल्ला पहला लख चोरिया लख जा रिया

ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹ ਕੱਤੀਐ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ

नं विवेकदानं विसाहदान प्रसादान दानासिरदान नामदान श्री अमृत सार साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगा जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी।

पत दा रखन आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारे गुर धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाने आंदे मान नेताने आंदे तान ने ओटे आंदी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जी आओ सरबत साध संगत नू अपने दारों घरों

सिद्धक परोसा नाम दान बख्शना शुभ पावनावान पूरिया करनिया आप दी दे हाजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: मथे टिका तेर तोती का खाई हाथ छुरी जगत कसाई निर्वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश तां लै पूजे प्राण अपा क्या का कुठा बकरा खाना चौंके उपर किसे ना जाना देखे चौंका गड्डी काड़ उपराए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे वन साडा पिटे तन पिटे फेट करे मन झूठे चुली परे
1: पाहो नानक सच त्याई है सोचो हो वे ता सच पाया।